सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर सन 2026। सुबह के 7 बजने को है। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए श्रोताओं, आपको बताते हैं हमारे केंद्र से आज कौन कौन से कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक धन वैभव और सफलता। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:10 से। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से आज आप सुनेंगे सूक्त 27 का वाचन। भक्ति संगीत 7:20 पर। प्रातः 8 सुनेंगे वतन का राग। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। 8:30 पर कार्यक्रम आमने सामने में आप सुनेंगे युवा कलाकारों से संवाद। कलाकारों में नेहा शर्मा, स्वाति, एम जैन, नेहा, सैयद। 9:00 का समय होगा कार्यक्रम वागर्थ का मुंशी प्रेमचंद पर। आज का कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति के कार्यक्रम का भाग दो। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारियां आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। आज ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा दिन में 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्तान हमारा में आज का शीर्षक नाना फडणवीस। दिन में 11:00 कला कल्लोलिनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विष्णु नारायण भातखंडे की जीवन यात्रा। दिन में 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का 54वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, जिसे आप सुनेंगे अब से रात्रि 10:00 तक निरंतर रेडियो आजाद हिंद से। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।

0: एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो दिन भर लकड़ी काटता और पास के बाजार में उसे बेच आता। उससे जो आमदनी होती उसी से उसका परिवार चलता था। एक दिन की बात है, वो अपने घर में भोजन कर रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने अपने लड़के से दरवाजा खोलकर देखने के लिए कहा कि बाहर कौन है। लड़के ने दरवाजा खोला तो बाहर चार साधु खड़े थे। उन्होंने लड़के को अपना नाम क्रमशः धन, वैभव, सफलता और श्रम बताते हुए कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ खिला दो। लड़का दौड़कर आया और पिताजी को सारी बातें बताईं। लकड़हारे ने चारों साधुओं को आदर सहित अंदर लाने को कहा। लड़का दरवाजे पर गया और चारों साधुओं से आग्रह किया कि वो अंदर आ जाएं। साधुओं ने एक शर्त रखी और कहा, हम में से कोई एक ही अंदर जाएगा और जो भी अंदर जाएगा वो अपने नाम का प्रभाव लेकर जाएगा। लड़का फिर से पिताजी के पास गया और ये सारी बातें उसने अपने पिता को बताई। अब लकड़हारा सोच में पड़ गया कि किसे बुलाया जाए। लकड़हारे की पत्नी सफलता को बुलाना चाहती थी, लकड़हारा स्वयं धन को बुलाना चाहता था। दोनों विचलित से हो गए, वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बुलाया जाए। तभी लकड़हारे के लड़के ने कहा, पिताजी हम लोग तो वैसे भी मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं, तो क्यों ना श्रम को ही अंदर बुलाया जाए। लकड़हारा सहमत हो गया। लकड़हारे का बेटा बाहर गया और उसने कहा कि हम श्रम को अंदर बुलाना चाहते हैं। जैसे ही श्रम अंदर आने लगा, बाकी के तीन साधु भी पीछे पीछे अंदर आने लगे। लड़के ने उत्सुकतावश पूछा, मैंने तो सिर्फ श्रम को बुलाया है, तो फिर आप लोग क्यों अंदर आ रहे हैं। सभी साधु एक साथ मुस्कुराए और जवाब दिया, जहां श्रम होगा वहां तो हम सभी होंगे। कहने का अर्थ ये कि अगर हम सच्चे मन से श्रम करें, मेहनत और लगन से काम करें, तो हमें धन, वैभव और सफलता की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जीवन सौरभ।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। अब समय है कार्यक्रम अक्षय निधि का।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत, देवता हैं आदित्यगण और छंद है त्रिष्टुप।
1: इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नु सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः। तेजस्वी आदित्यगण के लिए जुहू पात्र द्वारा घृत का सिंचन करते हुए हम स्तुतियां करते हैं। मित्रदेव, अर्यमादेव, भगदेव, सर्वव्यापी वरुण देव, दक्ष तथा अंश आदि देवगण हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। इमं स्तोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषंत आदित्यासह शुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः। कुटिलता से रहित अनिंदित आचार वाले, हिंसा न करने वाले व हिंसित न होने वाले यशस्वी आदित्यगण तथा मित्र वरुण और अर्यमा देवगण हमारे स्नेह युक्त स्तोत्रों का आज श्रवण करें। त आदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्संतो भूर्यक्षाः अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति। महान गंभीर दमन करने में समर्थ दुष्टों को दंड देने वाले हजारों आँखों वाले आदित्य देव समस्त प्राणियों के अंतःकरण की कुटिलता व सज्जनता को देखते हैं। इनके लिए दूर में स्थित पदार्थ भी निकट ही हैं। धारयंत आदित्यासो जगस्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्य मृतावानश्च यमाना ऋणानि स्थावर जंगम। सभी को धारण करते हुए ये आदित्यगण संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं। विशाल बुद्धि वाले ये देवगण सत्य मार्ग पर चलने वाले स्तोताओं के ऋणों को दूर करते तथा अन्न जल और धन की रक्षा करते हैं। विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदर्य मन भय आ चिन्मयोभु युष्माकं मित्रा वरुणा प्रणीतौ परि श्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम। हे आदित्यगण, किसी भी प्रकार का संकट आने पर हम आपका सुखदायी संरक्षण प्राप्त करें। हे अर्यमा, मित्र तथा वरुण देवों, गड्ढे वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन की भांति हम पाप कर्मों को छोड़ दें। सुगो ही वो अर्यमन मित्र पंथा अनृक्षरो वरुण साधुरस्ति तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म। हे अर्यमा देव, मित्र देव तथा वरुण देव, आप हमें विघ्नों से रहित सरल तथा सुगमता से जाने योग्य मार्ग से ले चलें। हे आदित्यगण, आप हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कभी नष्ट न होने वाला सुख प्रदान करें। पिपर्तु नो अदिति राजपुत्राति द्वेषांस्यर्यमा सुगेभिहि बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोपस्याम पुरुवीरा अरिष्टाः। हे तेजस्वी पुत्रों वाली अदिति तथा अर्यमा देव, हमें द्वेषकारी शत्रुओं को लांघकर जाने का सुगम मार्ग दिखाएं। हम मित्र देव तथा वरुण देव के संरक्षण में शत्रुओं से पीड़ित न होते हुए सुसंतति सहित महान सुख की प्राप्ति करें। तिस्रो भूमिर्धारयन् त्रिरुत द्योन्त्रीणि व्रता विदथे अंतरेषाम् ऋतेनादित्या महिवो महित्वं तदर्य यमन वरुण मित्र चारु। हे आदित्यगण, तीन भूमियों द्युलोक पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्षलोक को तीन प्रकाशों अग्नि विद्युत और सूर्य सहित धारण करते हैं। ये सभी यज्ञीय व्रतों के पालक हैं। हे आदित्यगण, आप लोगों की महान सामर्थ्य यज्ञ पर ही आधारित है। हे मित्र वरुण और अर्यमा देवो, आपकी महानता सर्वश्रेष्ठ है। त्रिरोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा रिजवे मर्त्याय। सुवर्णालंकारों से अलंकृत तेजवान परम पवित्र निद्रा रहित आंख न झपकाने वाले यशस्वी हिंसा रहित तथा मनुष्यों के हितकारी आदित्यगण तीनों दिव्य शक्तियों को धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के लिए धारण करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत, पहली भक्ति रचना कार्यक्रम की।

यदि मन का भाव सच्चा हो तो हमें किसी पूजा पाठ नियम की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभु प्राप्ति सहज और सुगम हो जाती है।

हे मेरे परमात्मा, मैं ना समझ हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरा ये शरीर, मेरा ये मन, मेरा ये घर, सब कुछ आपका। मेरे जाने अनजाने जो भी पाप हैं, पुण्य हैं, सब कुछ आपके। बस मुझे अपनी शरण दे दो।

हर पल में, हर क्षण में, कण कण में ईश्वर विद्यमान है। उसे देखने की, उसे अनुभूत करने की

भक्ति संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। श्रोताओं, भक्ति संगीत हमारे हृदय में, हमारे अंतस में उतरकर प्रभु की अनुभूति कराता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम अपने परमात्मा के पास ही हैं।

हम संसारी संसार से चित्त लगाते हैं, लेकिन यदि हम अपने आराध्य से, अपने प्रियतम से चित्त लगाएं, तो हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा।

हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन मांगने से भी ज़्यादा कभी कभी हमें मिलता ही है। आइए हम उसका धन्यवाद भी करें।

हम अपने मन के साथ अपनी आत्मा का भी अभ्यास करें कि हमारी आत्मा में भी प्रभु का नाम, उनका स्मरण, उनकी महिमा हर पल चिंतन में रहनी चाहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। श्रोताओं, अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है, सुबह के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, जय जय जय जय भारत जननी, शत सहस्त्र संस्कृति संगमनी, शत श्रुति शत गंधा शत रूपा, शत रस ओ शत परस अनूपा, शत शत शत शत दल संचारिणी, विंध्य हिमाचल शिखर विहारिणी, शत शत शस्य सुशोभित धरणी, खनिज भरित त्रिभुवन मनहरणी, जय जय जय जय भारत जननी, शत सहस्र संस्कृति संगमनी। देशभक्ति की एक भावनात्मक कल्पना रचनात्मक आधार पर करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को राजस्थान में जयपुर अजमेर रेलवे लाइन पर स्थित एक छोटे से गांव धनकिया में अपने नाना के घर पर हुआ था, जो वहां स्टेशन मास्टर थे। संयोग की बात है कि दीनदयाल जी के पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय भी मथुरा जिले में जलेसर रोड स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। लगभग 7 वर्ष की आयु में ही वे अपने माता पिता की वात्सल्य छाया से वंचित हो गए। यहीं से उनके जीवन का संघर्ष भी आरंभ हो गया। उनका पालन पोषण उनके मामा राधा रमण जी शुक्ल के घर पर हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को ध्यान और कर्म में एकाग्र कर अध्ययन की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ किया। अजमेर बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। वे संपूर्ण बोर्ड में सर्वप्रथम आए थे। उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इसके बाद इंटर की परीक्षा भी उन्होंने पिलानी से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और बाद में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनका कानपुर प्रवास ही उनके जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन की पीठिका सिद्ध हुआ। यहीं उनका परिचय भाऊराव जी देवरस से हुआ, जिन्होंने दीनदयाल जी को राष्ट्र समर्पित जीवन जीने का मंत्र दिया, जिसे अंगीकार कर वे एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस तरह राष्ट्र ही उनका आराध्य हुआ, राष्ट्र ही चिंतन और राष्ट्र ही स्वप्न।

बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। बीए करने के बाद उन्होंने आगरा के सेंट जॉन कॉलेज से अंग्रेजी में एमए करने के लिए प्रवेश लिया। पहला साल उत्तीर्ण करने के बाद वे अपनी बहन की बीमारी के कारण अध्ययन जारी नहीं रख सके। 1942 में वे लखीमपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नियुक्त हुए। यहां पर वे एक हाई स्कूल में निःशुल्क अध्यापन का कार्य भी करते थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा और व्यवहार कुशलता से प्रभावित होकर स्कूल के प्रबंधकों ने उन्हें प्रधान अध्यापक का पद देने की इच्छा प्रकट की, किंतु दीनदयाल जी ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। इस बीच दीनदयाल जी ने संघ शाखाओं के विस्तार का संगठन कार्य किया और समाचार पत्र तथा पुस्तक प्रकाशन का साहित्यिक कार्य भी सफलतापूर्वक किया। उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त और जगतगुरु शंकराचार्य नामक दो प्रमुख पुस्तकें लिखीं। इसके अलावा राष्ट्रधर्म मासिक तथा पांचजन्य साप्ताहिक का कुशल संपादन भी किया। इस बीच राजनैतिक उथल पुथल काफी तेज हो गई थी। ऐसे समय में दीनदयाल जी ने देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गंभीर सारयुक्त विचार मंथन किया। वे बचपन से ही संघर्ष में जुटे रहने के कारण कष्ट और सहिष्णुता के बल पर प्रगति करने के लिए संकल्पित थे। परिश्रम, त्याग और लगन उनके जीवन सूत्र बने। देश ही उनका सर्वस्व हुआ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वभाव से अत्यंत सरल थे और आंतरिक रूप से बेहद ईमानदार। उनके जीवन का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक बार पंडित जी रेल से यात्रा कर रहे थे। संयोगवश उसी ट्रेन में सर संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर भी यात्रा कर रहे थे, जिन्हें लोग सम्मान से गुरुजी कहकर पुकारते थे। गुरुजी को ज्ञात हुआ कि पंडित जी भी इसी ट्रेन में हैं, तो उन्होंने संदेश देकर उन्हें अपने पास बुलवा लिया। दीनदयाल जी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में गुरुजी के पास गए तथा एक घंटे उनसे विचार विमर्श कर वापस अपने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में आए और टीटी से बोले, श्रीमान जी, मैंने एक घंटा द्वितीय श्रेणी में यात्रा की है, जबकि मेरे पास तृतीय श्रेणी का टिकट है। अतः एक घंटे का जो नियमानुसार किराया बनता हो वो आप ले लें। टीटी ने कहा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। पर दीनदयाल जी अपनी बात पर अडिग रहे। आखिर विवश होकर उसने अतिरिक्त राशि का टिकट बना दिया। स्टेशन आने पर जब सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित दिखे, तब टीटी को जानकारी मिली कि वे कोई और नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। हमारे देश के सिद्धांत, हमारे आदर्श, भारतवर्ष के सनातन जीवन मूल्य सिर्फ उनकी वाणी और विचार में नहीं थे, वे उनके जीवन व्यवहार में थे।

दीनदयाल जी कर्मयोगी के साथ साथ समाजसेवी कार्यकर्ता के रूप में सर्वत्यागी सन्यासी बन गए। वे गंभीरता से मनुष्य और राष्ट्र से संबंधित हर चिंता पर विचार किया करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य अनेक जन्मजात प्रवृत्तियों के समान ही देशभक्ति की भावना भी स्वभावतः प्राप्त करता है। कभी परिस्थिति या वातावरण के दबाव से ये भावनाएं छुप सकती हैं। इस प्रकार विकसित देश प्रेम के भाव से भरा व्यक्ति अपने कार्यकलाप की प्रेरणा अस्पष्ट या क्षीण भावना से नहीं, वरन अपने स्वप्न, अपनी कल्पना के अनुसार देश का निर्माण करने का स्वप्न रखता है। यदि ये स्वप्न एक होगा तो सभी देशभक्तों के लिए आदर्श भारत का स्वप्न भी एक होगा। उनका विचार था कि बुराई का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं, मनुष्य है। बुरा व्यक्ति अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर उसे बीमार कर सकता है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था या परंपरा किसी न किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा ही शुरू की गई है। इसलिए हमारा ध्यान व्यक्ति की कर्तव्य भावना को जगाने पर केंद्रित होना चाहिए। हम पूंजीवाद और समाजवाद के चक्कर से मुक्त होकर मानववाद पर विचार करें। मानव जीवन के सारे पहलुओं का विचार कर आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग के साधन और व्यवस्था बनाएं। वे कहते थे, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ना। वे गांधी जी के सिद्धांत को बहुत वजन देते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं विशाल उत्पादन चाहता हूं, किंतु विशाल जन समूह द्वारा उत्पादन चाहता हूं। धर्म के बारे में उनके विचार बहुत ही व्यापक और स्पष्ट थे। वो कहते थे, धर्म एक बहुत ही व्यापक विचार है जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। दीनदयाल जी हमारी स्वतंत्रता के विषय में अक्सर कहते कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है अगर वो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। महान राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिक चिंतक और मां भारती को अकुंठित प्रेम करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 25

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आज के इस कार्यक्रम में आप सुनने जा रहे हैं युवा कलाकारों की आवाज।
1: हमें लगता है कि हाँ ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है अगर हमने सोच लिया कि हम हो गए आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, तो हमारी लाइफ की जर्नी यही खत्म हो जाएगी। जब तक हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी एज में जाए, हम सीखेंगे, सीखते ही रहेंगे।
0: जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की है यंग आर्टिस्ट से जो अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं।

जिन कलाकारों से हमने बात की है वो हैं नेहा शर्मा, डॉक्टर स्वाति एम जैन और नेहा सैयद।

0: अब बिना देर किए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने में इन कलाकारों से इनकी बात।
1: मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ।
2: पेंटिंग की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में आप कैसे आई, ये महज एक इत्तेफाक है या बचपन से आप चाहती थी आर्टिस्ट बनना?
1: मैं बचपन से पेंटिंग करती थी और धीरे धीरे उसको अपने एक कहते ना कि अपनी हॉबी में रखा उसको मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपना MA ग्रेजुएशन और मेरा PhD भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही किया, तो मैंने अपना पूरा फील्ड, पूरी चीज़ें अपनी अपने पेंटिंग में ही करी।
2: तो ये सब आपने भोपाल में किया?
1: जी हाँ।
2: तो ये आपका सफ़र कैसा रहा?
1: देखिए, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया क्योंकि देखा उन्होंने कि हाँ काम अच्छा है। फिर मैंने पहले तो इतना नहीं था पता कि इस फील्ड में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, है ना, अपना फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। हमारी फील्ड में बहुत सारे कैंप होते हैं, तो पहले इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। पर जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तब मुझे पता लगा कि इसमें कैंप भी हैं जिसमें ये लोग हमें इनवाइट करते हैं, पे भी करते हैं, हमें पेंटिंग बना के देनी होती है। तो धीरे धीरे करके फिर इस चीज़ में मैं अपने आप को मैंने आगे बढ़ाया और काफ़ी सारे कैंप भी किए हैं, एग्जीबिशन भी करी हैं, ये भारत भवन में हमारा ग्रुप शो।
2: पहली पेंटिंग आपकी कौन सी थी उसको थोड़ा सा याद कीजिए। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, सब बदल गई दुनिया, सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग है ना, उसको भी थोड़ा सा बताइए कितना चेंजेस आए।
1: चेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली क्या था, पहले हमें इतना पता नहीं था कि किस, पहले तो ये होता था कि हमने कोई चीज़ देखी उसे देख के ड्रॉ करते थे। और उसके बाद तो पता चला कि मतलब ये होता है कि आर्टिस्ट के मन की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने पेंटिंग में निकालते हैं। फिर जब धीरे धीरे सबके काम देखे तो समझ आया कि हाँ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने काम को चेंज किया। फिर अभी मैं अपने, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे नारायण, मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। तो उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन पे, उनको लेके और नारायण को लेके मैं पूरे पेंटिंग में आप देखेंगे ना तो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है इसमें पेन से। तो मैं ऐसा मैंने काम शुरू किया। मैं जैसे हमारे भारत भवन में ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे अखिलेश सर हैं, यूसुफ सर हैं, इसके अलावा जब यहाँ कैंप हुए थे विजय आचरेकर सर हुए, मनोज सर हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इन सब का काम देखा। और भी भोपाल के काफ़ी लोग हैं।
2: जो कलाकार होता है, जो वो जो सोचता है वो मन आता है ना। और एक ऐसा भी होता है कि जैसे कोई चीज़ हम सोसाइटी से, समाज से भी लेते हैं जो घटता है, क्या ऐसा भी होता है?
1: हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग उस इंसिडेंट को भी अपनी पेंटिंग्स में इंक्लूड करते हैं, तो ये तो होता है।
2: कोई नया इंसान जो नहीं जानता पेंटिंग को, जैसे कि मैं ही अगर देखूंगा तो जो समझने वाले होंगे वो अलग तरह से समझे, मैं शायद ना समझ पाऊँ। एक नया इंसान जो आके चले जाता है, कोई क्या गायन का हो, चाहे थिएटर हो या पेंटिंग हो, आप जब बनाती हैं तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है? मैं ये नहीं पूछूंगा 8 दिन में बनती है, महीने में बनती है, वो अलग अलग शायद डिपेंड करता हूँ, तो प्रोसीजर उसका क्या रहता है थोड़ा सा वो ज़रूर समझाइए। और एक कलाकार में क्या भावनाएँ आती हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा हम मतलब अपने दिमाग में चीज़ें वो करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कॉपी में हम ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या इंक्लूड करना है। मतलब एक दो दिन तो आप ये मान लीजिए कि हम काम करते भी हैं तो भी हम अपने कॉपी में ही उसको और मेमोरी में जो भी आता है उसको ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हम कैनवस पर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद फिर उन पर कलर्स लगाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे फिर कलर करके फिर वो कंप्लीट हो जाता है। या फिर भी लगता है, मतलब काम तो ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है या कुछ ना कुछ बनाना है, तो वो चीज़ तो रहती है, पर कंप्लीट ऐसे ही करा जाता है।

0: मैं डॉक्टर स्वाति एम जैन हूँ, भोपाल से ही हूँ। एक्चुअली मैं भोपाल की हूँ और मेरा पूरा बचपन और अभी तक सारा टाइम मेरा भोपाल में ही निकला है। भोपाल में मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब मैं हमारे स्कूल में सर थे सचिदा नागदेव सर, उनका काम देखती थी। तब से मेरा बहुत मन था इस फील्ड में आने में, बट मैं साइंस स्टूडेंट थी तो 12th तक मेरा साइंस था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने अपने फैमिली में कहा कि मुझे आर्ट की फील्ड में ही जाना है, मुझे साइंस वगैरह नहीं चाहिए। तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरे कॉलेज ख़त्म किया, एमए किया पीजी करने के बाद। और उस बीच में मतलब बाहर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही, अवार्ड्स वगैरह मिलने लगे तो थोड़ा सा और वो लगा कि हाँ चलो अब मुझे इस फील्ड में ही जाना है। तब से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक चल रहा है।
1: तो ये सफ़र तो आपने 30 सेकंड बता दिया, लेकिन कैसा रहा? काफ़ी चेंजेस जो आ गए हैं कि आपकी साइंस की फील्ड थी, फिर आर्ट में आओ तो रोजी रोटी का वो रहता है कि इसमें तो वो क्या आपके फेवर में इतनी सारी बातें हैं क्या? आप
0: नहीं, फेवर में तो क्या होता है कि लाइफ तो चलती रहती है, अलग अलग सब हर एक आर्टिस्ट की एक अलग जर्नी होती है। जैसे मेरे जर्नी की बात करें तो मैंने जब एमए किया उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया, वो किया, वो कर ही रही थी कि मेरा जॉब, हाँ जी वो मैंने भोपाल से किया, फिर मेरा जॉब लग गया। तो मैंने 2-2.5 साल पढ़ाया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब मेरा थोड़ा सा गैप हुआ। पहले तो सोचा था कि अब शादी हो गई तो अब ये करेंगे वो करेंगे, बट एक लंबा, हाँ एक ठहराव समझ लीजिए, लगभग 10-11 साल का एक लंबा गैप आ गया। उस बीच में मैं अपना घर में काम करती रहती थी बट बाहर नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मेरा जॉब लगा। मैंने 5 ईयर्स जॉब किया, घर से बाहर निकलना था, लोगों से मिलना था, वो सब किया जी, सब भोपाल की बात है। तो वो किया, उसके बाद मुझे कहीं लगने लगा कि अब मुझे लोग जानने लगे हैं, फिर से पहचानने लगे हैं, बट मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। एक लाइफ हो गई कि घर और स्कूल, बस उसके अलावा कोई तीसरा कुछ नहीं था। तो मैंने अपना जॉब छोड़ा और फिर मैं पूरे की पूरी तरह से आर्ट की फील्ड में जी। कहीं ना कहीं मन में एक घुटन सी होने लगी थी कि मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने अपना स्कूल का जॉब छोड़ा और उसके बाद फ्रीलांस करना शुरू किया और कर रही हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम से मिलती है, कभी होता है कि हमारे कुछ काम किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, तो वो हमारे लिए बोल के भी जाते हैं, बट ये है कि हम उससे और नई चीज़ें सीखते हैं, हमें लगता है कि हाँ ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमने सोच लिया कि हम हो गए आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, तो हमारी लाइफ की जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एज में जाएँ हम सीखेंगे, सीखते ही रहेंगे।
1: आपने कहा ना, एक बात मुझे याद आई, आपने कहा कि आपका जो काम रहता है तो कभी ऐसा भी होता होगा जो काम आपको बहुत पसंद है वो लोगों की समझ में नहीं आता होगा, और जो आपको कमज़ोर लगता है?
0: हाँ होता है, कई बार लगता है कि मुझे लगता है ये काम तो मेरा बहुत सबसे फेवरेट काम है, सब है, लेकिन सामने वाले को लगता है अरे यार इसमें तो ये नहीं है वो नहीं है, और जो काम मैं डर रही होती हूँ लगाने में उसकी लोग तारीफ करते हैं, तो वो एक अलग फ़र्क पड़ जाता है सबकी, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग है, उनकी सोच अलग है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है किसी को कोई चीज़ पसंद आती है।
1: जब आप शुरुआती दौर में और फिर इतने लंबे टाइम में, वो कौन से आर्टिस्ट थे जिनको आप देख रही थी, उनके काम को देखती थी, उनसे आप इंस्पायर होती थी, उन लोगों के नाम ज़रूर लीजिए।
0: हाँ जी, बेसिकली जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे लाइनिंग का काम बहुत पसंद है, बारीक काम, तो मैं मधुबनी आर्टिस्टों को देखती थी, मानव संग्रहालय में उनके वर्कशॉप्स होते थे, उस समय एक यशोदा देवी जी करके आए थे, तो उनका काम मैं देखती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था और लाइनिंग वाले काम में मुझे बहुत मज़ा आता है, जितना बारीक काम होगा उतना मज़ा आता है। तो उनको देखा, मधुबनी में थोड़ा काम किया, फिर उसको करते करते धीरे धीरे मैंने अपना एक स्टाइल निकाला, फिर मैंने अपना धीरे धीरे काम निकाला और काम करना शुरू किया।
1: अच्छा, तो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जो आपने एक पेंटिंग बनाई तो कितने दिन का, वैसे डिपेंड करता है लेकिन फिर भी एक अपन बीच में लेके चलते हैं, तो पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, उन आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, और जब तक वो चीज़ कम्प्लीट नहीं हो जाती, मतलब आपका काम कम्प्लीट नहीं हो जाता?
0: देखिए, जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे जो काम है उनमें आपको सब कामों में टेक्सचर का ज़रूर दिखेगा, मुझे टेक्सचर्स बहुत पसंद है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई काम बहुत जल्दी करना होता है तो हम उसे 3-4 दिन में भी ख़त्म करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमें कहीं एग्जीबिशन के लिए काम करना और ऐसा है कि अपने हमें तुरंत, हाँ तो वो उसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम रहता है।
1: तो अगर आप लोगों को बस चले तो आप आराम से करें।
0: हाँ, मैं तो फिर सोच सोच के, क्या होता है ना, कोई काम हम जब करते हैं तो फिर हम उसको बैठ के दूर से देखते भी हैं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या ठीक लग रहा है कि और क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही। कई बार होता है हमने कुछ बनाया बट हमको वो चीज़ बाद में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको फिर से नए सिरे से करते हैं।
1: आज भी शायद अब हो सकता है बदल गए लोगों की सोच कि इसमें पैसा नहीं होता, तो एक हॉबी है, एक साइड में लेके चलिए। तो ये क्या आपके साथ भी हुआ था, और इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं क्या, खास करके सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में?
0: हाँ, नहीं, वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। खुद को भी कई बार लगने लगता है, ये फीलिंग आती है कि यार हम मतलब काम करते जा रहे हैं बट कुछ बिक नहीं रहा है, कुछ सेल नहीं हो रहा है और पैसा नहीं आ रहा। और ये फील्ड ऐसी है जिसमें खर्चा बहुत है, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए आपको खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो होता है कई बार, बट फिर कहीं मन में लगता है कि ठीक है, हो सकता है आज हमारा टाइम नहीं है, कल हमारा टाइम आएगा। जब हमारा टाइम आएगा तो हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाएंगे और शायद हमारा काम भी सेल होगा। तो वो चीज़ भी होता है कई बार, दिमाग में आता है
1: बट
0: हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फिर लगता है कि अगर इस तरह से सोचते रहेंगे कि खाली सेल करना है तो हम अपना वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो फिर वो हो जाता है कि ठीक है चलो अभी हम अपना काम करते जाएंगे। बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
1: जो नए लोग आना चाहते हैं इसमें इस पेंटिंग की फील्ड में, उनसे आप क्या कहेंगी?
0: देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी आर्टिस्ट की फील्ड में आना चाहता है तो वो कम से कम एग्जीबिशंस में जाए, लोगों का काम देखे। जितना वो देखेगा उतना उसको सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिस, मतलब आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जल्दबाजी में आप चाहोगे कि आपको फेम मिल जाए और उसके पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको लोग पूछ रहे हैं, बट जब लोग देखेंगे कि ये तो खाली ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, इनका काम में कुछ वो नहीं है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, आपका खुद का मन ही ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है कि आप जितना लोगों को मिलोगे और जितने आर्टिस्टों का काम देखोगे, आपके दिमाग में उतने आइडियाज़ आएंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सबसे मेन काम है कि आप देखो, जितना देखोगे उतना सीखोगे, वो चीज़ है।
1: एक क्वेश्चन रह गया था जो मेरे दिमाग में था, आर्ट जो है, चाहे वो सिंगिंग हो, थिएटर हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका होना चाहिए एक आर्टिस्ट। तो आप ऐसा समझती हैं क्या कि पेंटिंग करने के लिए आपको थोड़ा थिएटर भी हो, सिंगिंग?
0: तो बहुत ज़रूरी, वो क्या होता है ना, जब आप किसी आर्ट से जुड़ते हो तो आप दूसरे आर्ट से अपने आप ही जुड़ जाते हो। अगर आप पेंटिंग करते हो, आप उस समय म्यूज़िक सुनते हो तो आप म्यूज़िक की फील्ड से जुड़ जाते हो। आप थिएटर देखते हो, आप जैसे हम गैलरी में आते हैं और गैलरी में हमारे जैसे एग्जीबिशन और यहाँ पे वो भी आते हैं, प्ले वगैरह भी होते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे उनसे जुड़ते ही चले जाते हैं। मुझे यहाँ भारत भवन जब से मैंने आना शुरू किया तो मुझे प्ले देखने का बहुत शौक हुआ है, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स, डांस के प्रोग्राम्स, तो उन सब फील्ड से हम अपने आप ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनको लेके काम भी करते हैं अपने काम में, हम वो चीज़ें भी।
1: अब ये जो ज़माना इतना बदल गया तेज़ी से AI, और उससे क्या कोई आप समझती हैं कोई ख़तरा है या टेम्प्रेरी चीज़ है?
0: देखिए, ये तो है तो टेम्प्रेरी चीज़, और ये खतरा हमारे लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए खतरा है, क्योंकि वो आज तो AI से और कॉपी वर्क करके गूगल से ढूंढ के बना लेंगे, कर लेंगे, बट कल क्या? कल लोग वर्क आजकल ये सारी चीज़ों से, जैसे वो देख के बना रहे हैं तो सामने वाला जो देखने आ रहा है उसे भी कि ये चीज़ वहाँ पे है, तो उसे समझ में आएगा, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीसरी बार में उसे समझ में आ जाएगा कि ये सारा कॉपी वर्क है, तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
1: अच्छा, फिर वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे जैसे आपने किया
0: जी, क्योंकि कर ही नहीं सकते। वो मेरे मन के अंदर का है, उसको सोच के मैंने बनाया है
1: जी,
0: बिल्कुल वो तो है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे उस चीज़।
1: चलिए, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगी नए बच्चों से?
0: नए बच्चों को यही बोलूँगी कि AI ये सब चीज़ें ठीक है, सर्च करो, देखना बहुत अच्छी बात है, बट उसको कॉपी मत करो। आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी फेम चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, वो ही नहीं, उसमें उनकी गलती नहीं, उनके पेरेंट्स की गलती है, वो खुद अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि वो एकदम से फेमस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप सबकी सुनो लेकिन करो अपनी मन की, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना देखोगे, जितना सीखोगे, उतना ही वही चीज़ काम आएगी।
1: कि पॉसिबल है कि खाली कला के क्षेत्र से कमाई हो सके और रोजी रोटी चल जाए लोगों की, या ये साइड बाय साइड ही चलेगा?
0: देखिए, कई सब हर एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो सिर्फ खाली कला से ही कमा रहे हैं और खा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये आर्टिस्ट की के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत पे भी थोड़ा तो है। आपको बिल्कुल है कि आपको आर्ट की फील्ड में डालना जाना ही है, तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आप पेंटिंग बना के एग्जीबिशन करके ही आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्ट की फील्ड में आजकल कमर्शियल आर्टिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपका आर्ट का काम हो सकता है, ग्राफिक्स है, बहुत ऐसे काम है जिसमें आप अपने कला को यूज़ कर सकते हैं और कैरियर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बन के ये आप कर सकते हैं, आप अलग अलग उसमें आपको पता चलता है। पहले तो ये था कि बस आर्टिस्ट हो गए तो लोग पहले मना करते थे कि नहीं नहीं आर्ट की फील्ड में नहीं जाना, इसलिए क्योंकि बस उस समय यह था कि भाई सिर्फ आप पेंटिंग बना रहे हो और बेच रहे हो। बट आजकल बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं धीरे धीरे, तो बहुत सारे ऐसी हैं कि आप उसमें अपना काम कर सकते हैं।
1: ये आपने अच्छी बात बोली मैम, चलिए थैंक यू।

0: मेरा नाम नेहा सैयद है। मैं एक सेरेमिक आर्टिस्ट हूँ और सेरेमिक में सूफीज्म पे मैं काम करती हूँ।
1: मैं थोड़ा सा सेरेमिक का आपने जिक्र किया, तो सेरेमिक की फील्ड में आप कैसे आ गई?
0: मैं सीखकर तो अपने ग्वालियर से ही आई थी। मैंने यहाँ के प्रैक्टिस स्टार्ट की और मुझे गाइडेंस जरूर मिलता रहा सबका, तो उनके गाइडेंस में फिर मैंने नए नए ग्लेजेस एक्सप्लोर करे और बहुत सारी चीज़ें मैंने नई करने की कोशिश की जो कि ग्लेज में। फिर मैं बाहर भी बहुत सारी एग्जीबिशंस मैंने कर चुकी है बाहर, और पोटस मार्केट भी मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ।
1: अच्छा, तो सेरेमिक आर्टिस्ट लोग तो नहीं समझते क्या है
0: सेरेमिक, उनको ऐसे बताना पड़ता है। जैसे बहुत से लोग तो जानते हैं कि सेरेमिक क्या होता है, जैसे कई लोगों को नहीं पता होता तो उनको बताना पड़ता है। चीनी मिट्टी जो होती है उसका ही एक रूप है ये, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है, तो इस तरह से मैं उन्हें बताती हूँ। और मेरी जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो आर्टिस्ट का ही रहा है। तो मेरे नाना जी इंग्लैंड में रहे थे कई साल, तो उनको आर्ट फील्ड बहुत पसंद आती थी, वहाँ पे स्कल्पचर्स वगैरह जो देखते थे। तो उनका कहना था कि एक भी कोई बच्चा है वो कुछ आर्ट में करे। तो जो पहले हम लोग टेराकोटा मिट्टी से कुछ भी बनाते रहते थे, तो फिर पापा को लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है आगे।
1: हाँ,
0: बचपन से जब मैंने कुछ मिट्टी में बनाया तो मुझे कई अवार्ड स्कूल टाइम में लगे, और ट्वेल्थ में भी मुझे कई अवार्ड मिले, पेंटिंग में भी मिले। तो मैं पेंटिंग भी करती थी और स्कल्पचर भी। फिर मैंने स्कल्पचर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैंने ग्रेजुएशन

0: ये बनता कैसे है?
1: सेरेमिक तो देखिए एक तरह की क्ले है, तो क्ले को मैं किसी भी चीज़ का साँचा या मैं टूल्स भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर अपने फिंगर्स से ही पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ और उसी से उसका शेप वगैरह और नीचे का जो स्कल्ट होता है उसका पूरा फॉल वगैरह मैं पेपर के थ्रू देती हूँ कि उससे उसमें अच्छे से फॉल आ जाए। और जैसे मैंने ये मोबाइल बनाया, बुक्स बनाई, तो ये भी सारी फ्री हैंड, मैंने कोई मोल्ड वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। और बनने के बाद में हम एक फायरिंग करते हैं जो 800 टेम्परेचर तक जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मजबूती आ जाती है उसमें। उसके बाद में फिर हम इस पर ग्लेज करते हैं, जो भी कलर्स मुझे करना होता है, फिर हम दोबारा से इसको फायर करते हैं। उसमें लगते हैं 8 से 10 घंटे, तो वो 1200 टेम्परेचर तक जाता है। उसके बाद में उसमें जो चमक आती है, जो इफ़ेक्ट आता है, उसके बाद में आता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें वो प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है।

आज के इस कार्यक्रम आमने सामने में आप सुन रहे थे युवा कलाकारों से बातचीत। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वागर्थ, और आज वागर्थ में बात होगी मुंशी प्रेमचंद जी की व्यंग रचना मोटेराम जी शास्त्री की। मुंशी प्रेमचंद के नाम और उनके साहित्य से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने भारत की जीवंत लोक संस्कृति को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण कहानियों और उपन्यासों की रचना की। उनका साहित्य हमारे जीवन के आसपास ही घूमता सा लगता है। मुंशी प्रेमचंद ने कुछ व्यंग्य भी लिखे जो बड़े ही चुटीले और विषय के ऊपर सीधे प्रहार से करते लगते थे। तो आज हम आपको वागर्थ में उनकी एक व्यंग रचना सुना रहे हैं, मोटे राम जी शास्त्री। ये व्यंग झोला छाप चिकित्सकों पर बेबाकी से टिप्पणी करता है।

0: पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। वे अधिकारियों का रुख देखकर काम करते थे। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में उन्होंने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी उन्होंने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में उन्होंने एक नई तदबीर सोची। घर में जाकर धर्मपत्नी जी से बोले,
1: अरे इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। अरे इतने दिनों विद्या दान करने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं?
0: मोटेराम की धर्मपत्नी चिंतित होकर बोली, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए कि नहीं?
1: अरे तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करे या कुछ भी कहे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं, मगर जन्म भर पेट ही जलाया तो क्या किया? अरे भाई संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। सुनो, मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है।
0: वैद्य कैसे बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है तुमने?
1: अजय वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं है। आज ही अपने नाम के आगे भिषकाचार्य बढ़ा लूंगा। अजय कौन पूछने आता है कि आप हैं कि नहीं, और किसी को क्या गरज पड़ी है कि जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड लगवा लूंगा, उस पर ये शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के रोगों की चिकित्सा की जाती है। दो चार पैसे का हड़ बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए तो इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा, उसमें लंका मद्रास रंगून कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। वे मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। हैं? अरे जनता को क्या पड़ी है कि वो इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य कैसी चलती है।
0: लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी?
1: अरे फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो मर नहीं जाते। मेरा तो कहना यह है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वैद्यकों को बिना मांगे यश मिलता है। पांच रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश तो मुझे ही मिलेगा ना। शेष चार जो मर गए मेरी निंदा करने थोड़े ही आएंगे। देखो भाई, मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कभी तो बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा, उसमें जहाँ तहाँ दो चार कविता भी जोड़ दूंगा, और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने रोगी फंसते हैं। ये ना समझो कि मैं इतने दिन केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सभी सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी, सोने से।
0: अब मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, ना अब वो अभिलाषा ही है। पर ये तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, फिर कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे और दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो तुम।
1: प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राखी भस्म है, रसायन है, बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतलें हों, इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि अपने आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है तो तुम जानती हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पार पा सके। आखिर इतने दिनों तक घास नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे आए जाए करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे, उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आएंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य की करूंगा। अरे तुम देखती तो जाओ।
2: पर मुझे तो डर लगता है कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न चले जाए, न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो बस लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे।
1: तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता?
2: इसीलिए कि तुम वहां भी धूर्तता ही करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वो क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके, सिर पटक पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से ही मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं।
1: आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा?
2: किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 कवित्व सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो?
1: अरे मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादाओं को भी नहीं पता होंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, 5 रुपए, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे कि ये कोई बहुत बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती?
2: इतनी देर में तुमने एक बात तो मतलब की कही।
1: क्या?
2: मगर एक बात समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर चलना पड़ेगा हमें।
1: अरे क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वो धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं, मैं रोगी को जांचे बिना उसकी चिकित्सा करूंगा ही नहीं। कहूंगा मैं जब तक रोग को भली बातें पहचान न लूं उसकी दवा नहीं कर सकता, नहीं तो दवा बेअसर रहेगी।
2: अब मैं तुम्हें मान गई, अब चलेगी तुम्हारी वैद्य की, और अब मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं रहा। साथ ही ये मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। और इसी तरह साल भर गुजर गया। भिष्काचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लेखनी चल गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी गीत सुनाते, हंसाते और बल कारक औषधियां खिलाते, और जिन्हें पुष्टि कारक औषधियों की विशेष चाह रहती उनकी तारीफ के वो पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का वो रंग जमा कि लखनऊ में वो ही एकमात्र विशेष चिकित्सक थे। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन रईसों में उनकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने वो समझते ही नहीं थे, मगर उनकी पत्नी उन्हें बराबर समझाया करती थी कि रानियों के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। लेकिन भावी तो होकर ही रहता है, कोई लाख समझाए, पर पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से पीड़ित थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी क्षण भर के लिए भी उन्हें अपने पास से हटने नहीं देना चाहती थी। पंडित जी के पहुंचने में जरा भी देर हो जाती तो वो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य ही उनके दर पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केंचुल बदली थी, तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता पहनते। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दन दनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर भी रखवा दिया। भला रानी साहिबा अपने मसीहा की बात कैसे टाल सकती थी। मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। कितने में कई आदमी सोटे हाथ में लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ले ली और किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यूं तो पंडित जी भी दमखम वाले आदमी थे, एक गुप्ती हमेशा ही अपने साथ रखते थे, पर जब धोखे से कई आदमियों ने धर दबोचा तो भला वो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते तो कभी उसका। हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा,
1: हाय हाय मर गए,
3: अरे इस दुष्ट की नाक काट दो,
4: इसके मुंह में कालिक और चूना लगा कर छोड़ दो।
1: अरे सरकार,
5: क्यों वैद्य जी, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिक लगवाओगे?
1: हाय हाय मर गया, और चाहे जो कुछ करो नाक न काटो भाई,
4: अब तो फिर इधर नहीं आएगा।
1: बोल के भी नहीं सरकार, हाय मर गया,
5: आज ही लखनऊ से रफूरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा।
1: सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे।
4: अच्छा भाई, सब कोई से पांच पांच लात लगाकर छोड़ दो।
1: अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो,
5: तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ,
2: पंच लत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी, मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है, मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त होने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठा कर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी गई कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते करहाते लकड़ी टेकते हुए घर में घुसे और धम्म से चार पाई पर गिर पड़े। तभी उनकी पत्नी ने उनसे पूछा,
6: क्या हुआ जी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया?
1: हाय भगवान, मर गया।
6: कहाँ दर्द है? इसी मारे मैं कहती थी कि बहुत रबड़ी न खाओ, लवण भास कर ले आऊं तुम्हारे लिए।
1: हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी दुष्टा के कारण तो ये मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया।
6: हाँ। ये कहो ना कि पिट कर आए हो। हाँ, पिटे तो हो, अच्छा हुआ, हो तो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे मेरी।
1: हाय हाय, अरे तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी है, मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। हाय किसी से क्या कह, किसी से कह दे ठेला वेला ले आवे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण नहीं बचेंगे।
6: नहीं नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ, कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे तुम वहां पर। हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझ गई, वैद्य बनूंगा मैं। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर नहीं भूलोगे तुम ये बात। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें मार पड़ रही थी तब रानी कहाँ थी? तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा भी नहीं की।
1: हाय हाय, अरे वो दुष्टा तो भाग गई, उसी के कारण क्या जानता था ये हाल होगा, नहीं तो उसका इलाज ही क्यों करता मैं।
6: वो तो तुम तकदीर के खोटे, कितनी अच्छी वैद्य की चल गई थी तुम्हारी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया, सत्यानाश। आखिर फिर वही पढ़ोनी करनी पड़ेगी ना, तकदीर के खोटे हो तुम।
2: और प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर नहीं आता था। पंडित जी पड़े हुए कराह रहे थे।
1: भगवान मर गया।
2: और उनकी पत्नी सामान लदवा रही थी। अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की एक व्यंग रचना मोटे राम जी शास्त्री का वाचन सुन रहे थे। वाचन स्वर थे इलाशंकर गुहा, कंचन राजानी, जवाहरलाल शाह और अमित कुंदानी के। साउंड इंजीनियर अमित कुंदानी। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: मैं दरखास्त करूंगी कि हमारे जो नौजवान सिंगर हैं जान, उनको स्टेज में आने के लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इसको आशीर्वाद कीजिए।

थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 90s की बात ही अलग थी राइट। आप लोगों को 90s का कुछ और सुनना है, कुछ सुनाए? आवाज नहीं आ रही, ऊपर वालों की आवाज नहीं आ रही, कुछ सुनना है 90s का? अब नीचे वालों की बोलते, कुछ सुनना है 90s का? ओके लेट्स गो। और जिन जिन को ये गाना आता है प्लीज साथ में गाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर सामने काफी लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे होठ हिला रहे, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है।

थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इस नेक्स्ट गाने के लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं गाने में? हाँ, क्योंकि ये गाना मैं अकेले गाऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं आप सबके साथ गाऊंगा तो मज़ा आएगा, और मुझे चाहिए कि आप लोग भी इन्जॉय करें। तो सब अपने फ़ोन के टॉर्च लाइट पहले ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये माहौल हम बनाने वाले हैं कैसा। और ये गाना आप सब जानते हैं तो साथ में गाएंगे।

0: thank you so much. Thank you so much. And again, a huge round of applause because Kavita ma'am is back.
1: अभी अच्छा ये गीत गाने से पहले मैं अपने बहुत बहुत अच्छे में हमारे बॉम्बे के उम्दा आर्टिस्ट जो बहुत बढ़िया बहुत सालों से सबसे पहला जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी वो कम से कम 40-50 साल से तो लक्ष्मीकांत प्यारलाल के साथ हैं हमारे सुरेश यादव जी हवा हवाई हो खुदा गवाह हो सारे जो ओरिजिनल पीसेस इन्होंने बजाए हैं और हमारे यहाँ पे हैं चिराग पंचाल जी जो बहुत सालों से ये भी ये लोग सब आशा जी पता नहीं बहुत छोटे लता जी के साथ नहीं शायद बजाए होंगे बहुत कम उम्र सुरेश यू हैव प्लेड विद लता जी तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ बजाए हैं चिराग जी आप चिराग जी आशा जी के साथ बजा चुके हैं नहीं लता जी के साथ नहीं बहुत छोटे हैं आप है ना बहुत बाद में आए कोई बात नहीं और अमित भंवर जी हैं बहुत अच्छा ये भी बॉम्बे से और बहुत सालों से मेरे रिचर्ड मित्रा जी को जो गिटार में है इनको जानती हूँ मैं ये इतने छोटे थे जब मन्ना दा के साथ इन्होंने बजाना मतलब शुरू किया और तब मैं मन्ना दा के साथ ड्यूएट्स गाती थी हम लोग पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं मन्ना दा का ब्लेसिंग मिला और फिर जतिन ललित जी के असिस्टेंट रहे हैं और जतिन ललित के जो पीसेस सुनते हैं गिटार के पीसेस सब इन्होंने बजाए हैं और जो पीछे छुपे हुए हैं सुरेश अय्यर जी ये बहुत अच्छा बेस गिटार बजाते हैं प्रसाद कुलकर्णी राजा कुलकर्णी राजू जी सबके साथ और आजकल के नौजवान आर्टिस्ट सुनिधि चौहान सबके साथ बजा चुके हैं तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ और उसके बाद हैं हमारे संतोष भुटाल जी और इनको कौन नहीं पहचानता आप बताइए गिरीश विश्वास जी को ये तो अभी वर्ल्ड फेमस हैं और ढोलक में क्या हाथ है इनका आप सुनेंगे आज बोले चूड़िया में आप इनका ढोलक में हाथ सुनेंगे बहुत अच्छा बजाते हैं और इनके जो अंकल थे इनके अंकल विजय इंदौरकर जी इंदौर के विजय इंदौरकर जी वो इनके अंकल हैं और वो विजय इंदौरकर जी रिचर्ड हम लोग सब मन्नादा के साथ घूमते थे हाँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यंग संकेत हम साथ प्रोग्राम्स करते रहे सो नाइस टू हैव यू ऑल थैंक यू साउंड में हमारे बॉम्बे के परीक्षित जी हैं तो ये जो आप गाना सुन रहे हैं म्यूजिशियंस को सुन रहे हैं हमको सुन रहे हैं इनकी मेहनत होती है और हम इनको तंग करते रहते हैं कि मॉनिटर्स में ये बढ़ाओ कीबोर्ड बढ़ाओ इसकी आवाज़ बढ़ाओ पर वो सुनते रहते हैं बेचारे हमारा काम करते रहते हैं और आपको भी खुश करते रहते हैं थैंक यू परीक्षित एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग

0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, दिन के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा में।

आइए श्रोताओं, सबसे पहले चलते हैं मानव संग्रहालय। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में हिंदी पखवाड़ा के तहत कविता पाठ हुआ। प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में 24 सितंबर को ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विशेषता इसमें ये रही कि इसमें निफ्ट भोपाल के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। काव्य प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में समा बांधा। आयोजन संस्थान के निदेशक अखिल सहाय और वरिष्ठ सहायक निदेशक प्रभाष कुमार झा के नेतृत्व में हुआ और साथ ही साथ कवि संदीप द्विवेदी भी यहां पर उपस्थित रहे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता को भाषा सीखने के लिए लिहाज से कारगर बताया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर कविता सृजन एवं पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थान के कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। प्रतिभागियों ने दिनकर की रचनाओं के साथ अपनी मौलिक कविताओं का पाठ भी किया। राष्ट्रप्रेम, संस्कृति और सामाजिक विषयों को प्रस्तुत किया गया।

दूसरी तरफ पहली महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष मंच पर जीवंत हुआ। यामिनी कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी और दृष्टिमन रंगकला एवं समाज कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में नाटक हाँ मैं सावित्रीबाई फुले का एकल मंचन किया गया। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की पूर्व छात्रा और छिंदवाड़ा मूल की रंगकर्मी रेणुका बर्मैया द्वारा लिखित निर्देशित एवं अभिनीत इस एकल नाटक ने सावित्रीबाई फुले की जीवन गाथा को प्रदर्शित किया है। 1848 में पुणे के भिलेबाड़ा में देश के पहले बालिका विद्यालय में जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ उनके संघर्ष को इसमें दिखाया गया। मंचन में बताया गया कि कैसे रूढ़िवादी समाज द्वारा कीचड़, पत्थर और गोबर फेंके जाने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का हथियार बनाया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना, उनकी क्रांतिकारी कविताएं और 1897 में प्लेग महामारी के दौरान एक बच्चे को बचाते हुए अपने प्राण न्योछावर करने तक के सफर ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।

अब जानकारी देते हैं आगामी कार्यक्रमों की। शांति और सहअस्तित्व पर आधारित संस्कृत नाटक नागांधम का मंचन किया जाएगा। आयोजन लिखंदरा आर्ट सोसाइटी एवं सीनेकारी के तत्वाधान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत रंगमंडल 26 सितंबर को इसके द्वारा आयोजन किया जाएगा। नाटक का निर्देशन नाट्यशास्त्र की विदुषी डॉक्टर संगीता गुंदेचा ने किया है। प्रस्तुति भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र की शास्त्रीय रंग परंपरा पर आधारित है, जिसमें बोधिसत्व जीमूत वाहन के चरित्र के माध्यम से त्याग, करुणा, अहिंसा और प्राणी मात्र के कल्याण के मूल्यों को दर्शाया गया है। हिंसा और संघर्ष के दौर में शांति और सहअस्तित्व का संदेश देने का इसमें कृति प्रासंगिक है। संस्कृत नाट्य परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए रंगमंडल का गठन किया गया।

दूसरी तरफ शब्द और संवाद का अनोखा संगम मंच देखने को मिलने वाला है 26 सितंबर को नाटक कनुप्रिया के द्वारा। लिंक रोड नंबर 2 शिवाजी नगर में अध्ययन भवन में कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। आयोजकों ने बताया कि ये राधा और कृष्ण के अनवरत संवाद प्रेम स्मृति और प्रश्नों के इर्द गिर्द बुनी गई है। क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी की प्रस्तुति में धर्मवीर भारती द्वारा लिखित रचना को नए नाट्य रूपांतरण और निर्देशन के साथ मंच पर उतारा जा रहा है। आलेख परिकल्पना और निर्देशन नीति श्रीवास्तव का है। तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बता रहे थे हमारे भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ कौन कौन सी हो चुकी थी और होने वाली हैं। आप इनमें सम्मिलित हो सकते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: 18वीं शताब्दी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि अवध, अयोध्या और नागपुर से लेकर कर्नाटक तक वे छल और बल के सहारे बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाने की हर संभव कोशिश में जुट गए। उनकी ललचाई नजरें समृद्ध और शक्तिशाली मराठा शासन पर भी गड़ी हुई थी, लेकिन लगभग 3 दशकों तक फिरंगियों की हर चाल को अपनी चतुराई से जिस महान राजनीतिक कुशल प्रशासक और प्रखर नेता ने कदम कदम पर नाकाम किया, उसका नाम था बालाजी जनार्दन भानु, जिसे इतिहास नाना फडणवीस के नाम से जानता है। आज से लगभग 269 वर्ष पूर्व सन 1772 ईस्वी को नाना का जन्म हुआ। उनके पिता जनार्दन पंत मराठा शासन में फडणवीस के अत्यंत शक्तिशाली पद पर नियुक्त थे। 30 मार्च सन 1756 ईस्वी पेशवा बालाजी बाजीराव ने कोंकण पर चढ़ाई कर दी। अपनी विशाल सेना के साथ वे 14 वर्षीय बालाजी जनार्दन भानु को भी अपने साथ ले गए। इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध का ये प्रत्यक्ष अनुभव आगे चलकर नाना के बहुत काम आने वाला था। इन्हीं दिनों अचानक नाना के पिता जनार्दन पंत का निधन हो गया। फडणवीस का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता था। पेशवा ने फैसला किया,
1: हमारे फडणवीस जनार्दन पंत का निधन हो गया है और उसका एकमात्र पुत्र बालाजी जनार्दन भानु यानी हमारा प्यारा नाना अभी अल्प वयस्क है।
2: किंतु नियम के अनुसार फडणवीस का पद वंशानुगत होता है और नाना अभी कच्ची उम्र का बालक है।
1: लेकिन समझदारी और अपना दायित्व तो भली भांति निभाने में वो किसी वयस्क से कम नहीं है। कोंकण के युद्ध में हम उसके साहस और बुद्धि चातुर्य को स्वयं परख चुके हैं।
2: वैसे तो हम भी उसके हौसले के कायल हैं, उसकी होशियारी के कायल हैं, किंतु परंतु
1: में समय व्यर्थ करने से बेहतर है दिवंगत जनार्दन पंत के स्थान पर उनके पुत्र बालाजी जनार्दन भानु को पेशवाई के फडणवीस पद पर आसीन किया जाए। नाना
2: जी। श्रीमंत।
1: बेटे, कभी इस आसन पर तुम्हारे पिता बैठा करते थे, आज से फडणवीस के इस आसन पर, उनके इस स्थान पर तुम बैठा करोगे। आज से तुम नाना फडणवीस के नाम से जाने जाओगे। हमें विश्वास है नाना, तुम ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगे।
0: पेशवा के विश्वास का मान रखते हुए नाना फडणवीस ने मराठा शासन की समृद्धि में अपना जबरदस्त योगदान देना आरंभ किया। साथ ही अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में भी नाना ने गहन रुचि लेना आरंभ कर दिया। यही कारण था कि पेशवा ने श्रीरंगपट्टम की ऐतिहासिक यात्रा में नाना को विशेष रूप से अपने साथ ले जाना आवश्यक समझा। श्रीरंगपट्टम से लौटे एक वर्ष भी ना बीता था कि नाना को गहरे संताप से गुजरना पड़ा। उनके इकलौते बेटे का अल्प अवस्था में निधन हो गया। विषम दुख से पार पाने के लिए नाना अपनी शोक संतप्त पत्नी और माता के साथ गोदावरी तट पर बसे पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पर निकल पड़े।
3: नाना साहब, पेशवा ने मुझे आपके पास भेजा है। वे जानना चाहते हैं आपकी तीर्थ यात्रा कब तक पूर्ण हो जाएगी।
4: हमारी इच्छा यहाँ से गंगा जी की ओर जाने की है।
3: क्या यहाँ से गंगा जी? लेकिन पेशवा तो
4: क्या? पेशवा कुशल से तो है।
3: जी, पेशवा कुशल पूर्वक है नाना साहब, पर शायद आपको सूचना नहीं मिली, ईरान से अहमद शाह अब्दाली भारी फौज लेकर देश की उत्तरी सीमा तक आ पहुंचा है।
4: ओह!
3: और दिल्ली के मुगल बादशाह ने पेशवा से फौजी मदद मांगी। पेशवा अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के साथ आपको उस हमलावर से मोर्चा लेने पानीपत भेजना चाहते हैं। बताइए उन्हें क्या उत्तर दूं?
4: यही कि पेशवा की आज्ञा सरमाथे है, मातृभूमि की रक्षा का पुण्य किसी तीर्थ यात्रा के पुण्य से कम नहीं। मैं इसी घड़ी पेशवा से मिलने चल रहा हूँ, चलो।
0: सन 1761 के पानीपत युद्ध में सदाशिवराव भाऊ की मराठा सेना को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसी वर्ष पेशवा बालाजी राव 24 जून को स्वर्ग सिधार गए। सतारा के राजा छत्रपति ने दिवंगत बालाजी के पुत्र माधव राव को विधिवत पेशवा घोषित किया और बालाजी राव के भाई रघुनाथ राव उर्फ राघोबा को अव्यस्क माधव जी का संरक्षक बना दिया। राघोबा बेहद महत्वाकांक्षी था, वह स्वयं पेशवा की गद्दी पर आसीन होना चाह रहा था। वो तुरंत ही अपने इस अभियान में जुट गया।
5: पेशवा का पद संभालने वाले में योग्यता होनी चाहिए, राजकाज और सेना संचालन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। बोलो, मुझसे ज्यादा युद्ध का अनुभव माधवराव में है क्या? क्या सोचकर सतारा के छत्रपति ने माधवराव को पेशवा की गद्दी सौंप दी? क्या आप इतने विशाल मराठा साम्राज्य की बागडोर एक नौसिखिए नादान नासमझ बच्चे के हाथ में सौंपना उचित समझते हैं, जबकि ना उसे शासन के कामकाज की समझ है और ना युद्ध का रत्ती भर अनुभव? वाह, क्या खूब! इतनी विशाल, इतनी महान पेशवाई और उसका संचालन किसके हाथों में? एक 17 साल के मासूम माधवराव पेशवा और दूसरे कुल जमा 19 बरस के नाना फडणवीस के हाथों में। मराठा साम्राज्य ना हुआ, बच्चों का खेल बन गया।
0: रघुनाथ राव किसी भी कीमत पर पूना की गद्दी हथियारा चाहते थे, लेकिन उनकी इस इच्छा के आगे एक बड़ी रुकावट थे पेशवा माधवराव के बाल सखा और अत्यंत विश्वास पात्र नाना फडणवीस। दांव पेच भिड़ाकर नाना को फडणवीस के पद से हटा दिया गया, किंतु नए पेशवा माधवराव को जैसे ये सूचना मिली, उन्होंने पूरी सख्ती के साथ इस कार्रवाई को निरस्त करते हुए नाना को फिर से फडणवीस के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे रघुनाथ राव तिलमिलाकर रह गए।
5: देखो, इसे कहते हैं लड़कपन। माधवराव ने बिना आगे पीछे सोचे केवल अपनी बचपन की दोस्ती निभाने के लिए हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उस कल के छोकरे नाना को फिर से फडणवीस बनाकर हमारे सर पे लाद दिया। बोलो, अब इसे क्या कहोगे? हाँ,
6: बचपना, जिद, बालहट और क्या।
5: मान गए हम तुमको नाना। ऊपर से मासूम और भीतर से इस कदर सयाना। यकीनन अपने बचपन की दोस्ती का वास्ता दे देकर, वफादारी और हमदर्दी का दम भर भर कर, और उससे भी ज्यादा मेरे उचित विरोध को बगावत का अनुचित रंग देकर इस नाना ने फिर से फडणवीसी हासिल कर ली है। और यही नहीं, पहले से कहीं ज्यादा अख्तियारात भी हासिल करने में कामयाब हो गया। ये चतुर चालाक नाना।
6: ज्यादा अख्तियारात मतलब?
5: पेशवा राज अब से सब आमदनी और खर्च की पूरी जांच पड़ताल वही करेगा।
6: बाप रे,
5: जितने घपले हुए हैं, जितने घोटाले हुए हैं, उन सब की नए सिरे से जांच करेगा, वो भी बहुत सख्ती से।
6: ये क्या हो रहा है राव साहब, इस तरह तो हम कहीं के ना रहेंगे।
5: कच्ची गोलियां नहीं खेली है हमने। बहुत भारी पड़ेगा नाना को हमारे मामले में टांग अड़ाना। छक्के ना छुड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी रघुनाथ राव नहीं।
7: अरे पेशवा बना है तो पेशवा की तरह व्यवहार भी तो करना सीखना चाहिए माधवराव को। इस तरह आंखें बंद कर कर पूरा पूरा विश्वास कर बैठना ना समझी है। नादानी, मूर्खता, बेवकूफी। अरे मैं कहता हूँ अब्बल दर्जे का गधा बना ही है।
6: क्या गजब करते हो राव साहेब, पेशवा को गधा कह रहे हो?
7: इस नाना फडणवीस के मारे आजकल दिमाग बहुत गड़बड़ाया रहता है। बताए हमारे भतीजे साहब माधवराव पेशवा उस नाना को फडणवीसी से ऊंचा ओहदा देने की फिक्र में है।
6: तो क्या उठाकर पंत प्रधान बना देंगे? हैं?
7: मत मारी गई है माधवराव की। कुछ भी बना सकता है, कुछ भी। बताओ, हमारे सामने वो कल का छोकरा, वो हमारे देखते देखते फडणवीस बना दिया गया और हम मर गए थे।
6: बताओ भाई, अब उसी नाना फडणवीस को पंत प्रधान बनाए दे रहे हैं। अरे आप क्या मर गए हो?
7: फिर बकवास।
0: और वास्तव में रघुनाथ राव की आशंका सही निकली। नाना फडणवीस के दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अद्भुत कार्य कुशलता ने पेशवा माधवराव को पहले ही प्रभावित कर लिया था, और बाद में जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई, नाना फडणवीस ने उसे जिस कर्मठता से निभाया, इसे देखते हुए 10 वर्ष की अवधि में पेशवा ने उन्हें फडणवीस से पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री बना दिया। तो अंग्रेजों ने इसे अपने विस्तारवाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा। मराठा साम्राज्य को किसी भी तरह कमजोर करने की तरकीबें अमल में लाने का सिलसिला शुरू हो गया।
8: एक तरीका तो वही है जो हम हमेशा यूज करता है। साउथ में हैदर अली भी हमारा दुश्मन होता, उधर में निजाम आपको हमारा साथ देता है। आई थिंक इन मराठास को कमजोर करने के लिए इन तीनों को आपस में लड़ा देते हैं।
9: हाँ, गुड आइडिया। ये तीनों का झगड़ा हो गया, वो इस पे अटैक करेगा और वो उस पे अटैक करेगा। और हम तीनों में से जो भी हमारा हेल्प मांगेगा उसका टेरिटरी में अपना फौज खुसेड़ेगा। मदद का बदला में हम ट्रीटी करेगा। एक बार हम जिसका टेरिटरी में घुस गया तो वहां से बाहर नहीं जाएगा, वहीं जम जाएगा।
8: हमारा मैन पॉलिसी यही होता। यू सी दोज मराठास, निजाम एंड हैदर अली, ऑल दीज थ्री आर बिग पावर्स। अगर ये तीनों कभी यूनाइट हो गया तो साउथ से हमको उकार फेंकेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टिक टू दिस पॉलिसी। तीनों को आपस में बिड़ाते रहो, एक को दूसरा का खेला भड़काते रहो। कभी इसका कंडा पे हाथ रखो, कभी उसके कंडा पे।
9: यस,
8: तीनों आपस में फाइट काटा काटा एक दिन जरूर कमजोर हो जाएगा। हम उसका कमजोरी का फायदा उठाएगा और तीनों पर कब्जा कर लेगा।
9: यस, वेरी गुड आइडिया। और हमको वेस्टर्न कोस्ट में अपना अड्डा मजबूत करने को मांगता है।
8: यस,
9: मराठास के पास में शास्ती का आइलैंड है, वो सही का एरिया है एंड गुजरात का बहुत बड़ा एरिया है। कोई बहाना से हम मराठास को फंसाना मांगता, उनको कोई ट्रीटी में उलझाना मांगता, फिर बदला में 18 एरिया कैसा भी तरीका से अपने कब्जे में करने को।
8: आई एग्री। एक और बात, ये मराठा बहुत एम्बिशियस लोग हैं। दे वांट टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी। ये लोग अपने टेरिटरी को बढ़ाना मांगता है।
9: ओह यस, अर्लियर दे अटैक्ड बंगाल एंड ओनली फ्यू इयर्स बैक दे कैप्चर्ड द होल पंजाब रीजन बाय डिफीटिंग द अफगान्स। आई थिंक इसको अब दूसरा रीजन की तरफ बढ़ने से रोकना मांगता, इसको अपने ही रीजन में फंसा देना मांगता।
8: Yes, उसका वास्ते हमको मराठास में फूट डालना मांगता, मराठास को आपस में लड़वाना मांगता।
9: Oh, don't worry, I have an idea. माधुराव पेशवा का एक अंकल है, रागोबा। रागोबा is damn ambitious to become पेशवा himself. I am sure we can use this रागोबा as our secret agent in Maratha's stronghold. This Raghuba is the man who chased the Afghans from Indian territories.
8: I see. Bahadur hai.
9: Aur dagabaz bhi hai. His lust for power knows no end.
8: Good. Very good. Hamara waste bahut sahi aadmi hai.
0: Aur angrez apne iradon mein kamyab rahe. Raghuba se unki saant-gaant ho gayi. योजना के मुताबिक राघोबा ने अपना पांसा फेंका।
5: मुझे इस बात की पक्की खबर मिली है कि निजामुल मुल्क हम पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है।
10: निजामुल मुल्क? नाना, राघोबा काका क्या कह रहे हैं, सुना तुमने?
4: हमले की मुझे तो कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। हो सकता है राघोबा को किसी ने गलत सूचना दे दी हो।
5: गलत सूचना? और मुझे देगा? मेरा अपना विश्वास पात्र आदमी, मुझे तो इसकी कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। और तुम क्या समझते हो नाना, मैं हर किसी की बातों में आ जाऊंगा? बेबुनियाद बातों पर पेशवा से चर्चा करने बैठ जाऊंगा? देखो नाना, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मोर्चों पर पेशवा राज के दुश्मनों को शिकस्त दे चुका हूं मैं। और जितनी आप दोनों की उम्र है, कुल मिलाकर उससे कहीं ज्यादा बरस बिता चुका हूं पेशवा सेना में, और वो भी एक सेनापति की हैसियत से। स्वर्गवासी बालाजी बाजीराव पेशवा ने बड़े विश्वास के साथ मुझे पंजाब फतह करने भेजा था, इसलिए नहीं कि मैं उनका सगा भाई था, बल्कि इसलिए कि उन्हें मेरी उस क्षमता पर पूरा भरोसा था जो दुश्मन की हर हलचल को हवा के रुख देखकर ही भांप लेता था। मैंने भी उनके भरोसे को कभी झुटलाया नहीं, हर बार सच करके दिखाया। खूंखार अफगानों की तूफानी चाल से बढ़ती बेशुमार फौज को अपनी उसी क्षमताओं के बल पर पंजाब की धरती से उखाड़ कर फेंक दिया। पंजाब को इस महान पेशवा राज का एक हिस्सा भी बना दिया। कितने दुख की बात है कि जिस पेशवाई की खातिर मैंने कभी अपनी जान को जान ना समझा, आज उसी पेशवाई के हाथों मेरी सारी क्षमताओं, अनुभवों, वफादारियों को इस कदर सरसरी तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है और सिरे से खारिज भी किया जा रहा है।
1: राघोबा काका, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है।
5: तो फिर कैसा है आखिर? क्या मैं अकारण ही निजाम पर हमले का आरोप लगा रहा हूं? क्या बिना किसी ठोस वजह से पेशवा राज को युद्ध की आग में धकेलना चाहता हूं मैं?
1: नहीं, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा काका साहेब। हमें आपकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है।
5: है ना? तो फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुंबई में अंग्रेज गवर्नर जनरल से तुरंत संधि कर लो।
4: संधि? कैसी संधि और भला क्यों?
5: इसलिए कि निजाम की ताकत बहुत बड़ी है। संधि करने पर अंग्रेजों से हमें पूरी फौजी मदद मिल जाएगी।
4: और बदले में क्या देना होगा उन्हें?
5: कुछ ज्यादा नहीं, केवल वसई और शास्त्री के इलाके।
0: और राघोबा के इस तरह जोर देने पर पेशवा माधवराव को अंग्रेजों से संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ना तो निजाम हमला करने वाला था और ना संधि की शर्तें पूरी होने वाली थी। बहरहाल इस बिला वजह की संधि का एक बुरा नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को पेशवा के दरबार में घुसपैठ करने का मौका मिल गया। पेशवा दरबार की एक एक खामी और खूबी से वे भली भांति परिचित हो गए। राघोबा के रूप में उन्हें घर का एक भेदी मिल ही चुका था। इसी मोहरे को आगे कर राजनीति की बिसात पर अगली चाल चली गई। पेशवा दरबार में फूट के बीच बोने में अंग्रेज इस हद तक कामयाब हो गए कि पेशवा माधुराव अपने काका राघोबा की हरकतों से बेहद तंग आ गया। मजबूर होकर उसने राघोबा को कैद करवा डाला, लेकिन जल्द ही राघोबा फिर मुक्त कर दिया गया। 18 नवंबर सन 1772। रहस्यमय परिस्थितियों में 28 वर्षीय पेशवा माधोराव की मृत्यु हो गई। विशाल वटवृक्ष की भांति फैले हुए पेशवा साम्राज्य की जड़ें मानो हिल गई। माधोराव की कोई संतान नहीं थी। मृत्यु से पहले उसने अपने छोटे भाई नारायण राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राघोबा से प्रार्थना की कि नए पेशवा के रूप में नारायण राव की हर संभव सहायता करे।
9: वेल राघोबा, अब तुम नारायण राव का घरचन बन गया। पहले माधोराव रूल किया, अब नारायण राव रूल करेगा और तुम एक के बाद एक इन लोगों का खिदमत करेगा। It's so sad.
5: आपने सही फरमाया। कल के छोकरे जो मेरे सामने नंगे घूमते थे, एक के बाद एक पेशवा की गद्दी पर बैठे जा रहे हैं, और मैं वो राघोबा जिसकी बदौलत पेशवा सल्तनत पूना से पंजाब तक फैल गई, और मैं हर बार महज इन छोकरों का सरपरस्त बनकर रह गया। नहीं, ये अपमान अब मैं और नहीं सहूंगा। पेशवा की गद्दी पर अब मैं ही बैठूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हर कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं।
9: ओह यस, तुम सरीखा बहादुर, तुम सरीखा क्लेवर होशियार आदमी। पेशवा का गद्दी पर सबसे ज्यादा तुम्हारा हक बनता है राघोबा।
5: और अपना वो हक मैं लेकर रहूंगा। बस आप लोग मेरी मदद करते रहिए, फिर देखिए ये रघुनाथ राव क्या गुल खिलाता है।
0: और वाकई पेशवा पद की हवस में राघोबा ने बड़ा भयानक गुल खिला डाला। मासूम नारायण राव के खिलाफ साजिश रचकर एक दिन उसे भी मौत की नींद सुला दिया और साथ ही साथ राजधानी पुणे में भयंकर अराजकता फैला दी। लूट खसोट और आगजनी का दौर चल पड़ा। इस अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए राघोबा ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में नाना फडणवीस साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए परिस्थिति पर काबू पाने में सफल रहे। पेशवा साम्राज्य के 12 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक संगठन आनंद फानन में खड़ा कर दिया गया, जिसे 12 भाई के नाम से जाना गया। नाना ने इसके जरिए सतारा में बैठे छत्रपति पर जबरदस्त दबाव बनाकर राघोबा का पेशवा पद पर आरूढ़ होना निरस्त कराया और साथ ही दिवंगत नारायण राव के बेटे सवई माधव राव को पेशवा घोषित करा दिया। बौखलाए हुए अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनवाने के लिए मराठा राज्य पर हमला बोल दिया, लेकिन नाना ने बड़ी वीरता से मुकाबला करते हुए उन्हें करारी शिकस्त दी।
3: अंग्रेजों को मजबूर होकर नाना से सुलह करना पड़ी, जिसे इतिहास में पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर इस संधि का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने के लिए सर उठाया। इस बार नाना ने उन्हें बड़गांव में बुरी तरह पराजित करते हुए उनके सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिए।
11: नाना फड़नवीस हमको दो दो बार बुरी तरह शिकस्त दिया है, एंड यू नो अब वो फ्रेंच एम्बेसडर सेंट ल्यूबिन को पुनः इनवाइट किया है, हमारा खिलाफ फ्रेंच फौजों का मदद लेने को मांगता है। नो नो नो नो, हम ये टॉलरेट नहीं करने को सकता। राघोबा, व्हाई यू आर साइलेंट, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं हो?
5: क्या बोलूं सर, इस सारे फसाद की जड़ वही नाना फड़नवीस है। जब तक वो मौजूद है

0: शाह की रजामंदी से एक भव्य और शक्तिशाली राज्य संघ कायम कर डाला। आखिरकार अंग्रेजों ने हार मानकर सालबाई की प्रसिद्ध संधि पर दस्तखत कर दिए।
1: ऑफ कोर्स हमने सालबाई का ट्रीटी पर दस्तखत कर दिया, बट नो उसको मानने को नहीं सकता। हम मौका देखकर फिर कोई नया चाल चलेगा। एज यू नो मराठा एम्पायर का चार लोग बहुत मजबूत है, अंडरस्टूड? ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले एंड गुजरात का गायकवाड़ ब्लैडी, ये चारों पूना का पेशवा का वफादार लोग है। एक बार इनको अपना साइड में मिला लिया तो समझो पेशवा का पावर मिट्टी में मिल जाएगा।
0: अंग्रेजों का ये सोचना एक तरह से सही भी था। जिन चार मजबूत खंभों पर पेशवा साम्राज्य टिका हुआ था उनमें से किसी एक का भी कमजोर होने का सीधा अर्थ था मराठा साम्राज्य का पराजय। अंग्रेजों ने किसी तरह माधवराव सिंधिया को अपने पक्ष में कर लिया। उसकी महत्वाकांक्षाओं को इस कदर जगाया कि वो मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय पर हमला कर बैठा। नाना से भी उसका मनमुटाव हुआ, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों से ही मिले एक के बाद एक धोखों ने उसकी आंखें खोल दी। इसी दौरान निजाम ने मराठों के खिलाफ हथियार उठा लिया। नाना के नेतृत्व में मराठा फौजों ने उसे करारी शिकस्त दी। सन 1795 में खरडा की लड़ाई के बाद शांति स्थापित हुई, लेकिन तभी पेशवा माधवराव ने आत्महत्या कर ली। एक बार फिर पेशवा की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। साथ ही अंग्रेजों के बहकावे में आकर इंदौर का होलकर माधवजी सिंधिया से भिड़ गया। कभी अपनी एकता और संगठित शक्ति के लिए जाने जाने वाला मराठा मंडल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। गायकवाड़ और भोसले अंग्रेजों के इशारों पर मराठा मंडल से अलग हो चुके थे। नाना ने आने वाली विपत्ति का अंदाजा लगाते हुए माधवजी सिंधिया से कहा,
2: माधवजी
3: जी,
2: अंग्रेजों को इस साम्राज्य में पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्हें पैर रखने की जगह मिल गई तो सारा देश खतरे में पड़ जाएगा।
3: मैं आपकी बात से सहमत हूं नाना साहेब, लेकिन क्या किया जाए। मराठा मंडल के जिन चार स्तंभों पर देवा की रक्षा का दारोमदार था, अंग्रेज उसमें सेंध लगा चुके हैं। दूसरों की क्या कहूं, खुद मैंने भी उनके बहकावे में आकर सम्राट शाह आलम पर हमला कर डाला। एक तरह से उन्हें बंदी बनाकर वारन हेस्टिंग्स के हौसले बढ़ा दिए। कल तक जो अंग्रेज मुगल सम्राट के आगे सिर झुकाते थे, उन्हें खिराज देते थे, आज सम्राट की खुलेआम अवहेलना करते हैं, उन्हें खिराज देना बंद कर चुके हैं।
2: मुगल सम्राट भारत की एकता का प्रतीक है। इन बुरी परिस्थितियों में हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। तुम मेरा संदेश लेकर जाओ, मुगल सम्राट को हर सहायता का आश्वासन दो। यही नहीं बल्कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर जोर डालकर सम्राट को पहले की तरह खिराज अदा करने पर मजबूर करो।
0: लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही हालात ने तेजी से करवट बदली। पूना में राघोजी का बेटा बाजीराव छलकपट से पेशवा की गद्दी पर आसीन हो गया। उधर माधवजी सिंधिया रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हुए। नाना फडणवीस को अंग्रेज पहले ही अपना जबरदस्त शत्रु मानते थे, और इन बदले हुए हालात में उन्हें सुनहरी मौका मिल गया कि अपने रास्ते के इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर डाले। निकम्मा और घोर विलासी बाजीराव पेशवा तो पहले ही उनके हाथों कठपुतली बना हुआ था। अंग्रेजों के शह पाकर खुलेआम नाना को तरह तरह से अपमानित और प्रताड़ित करने पर आमादा हो गया। उसके आदेश पर नाना को कैद कर लिया गया। हर ओर से हताश और निराश नाना फडणवीस ने आखिर 13 मार्च सन 1800 में अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। नाना फडणवीस एक कुशल प्रशासक और कुशल योद्धा होने के साथ ही अत्यंत दूरदर्शी थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण वे प्रबल झंझवातों के बावजूद मराठा साम्राज्य और पेशवाई की आजीवन सुरक्षा करने में कामयाब रहे थे। अपनी अदम्य राष्ट्रभक्ति, राजनीतिक सूझबूझ और अद्भुत दूरदर्शिता के लिए नाना फडणवीस इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।
4: और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रही बल्कि शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और ख्याल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा, आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। ये परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, गमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब ना रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और ना आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वरलिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वरलिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी। अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वरलिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने इस जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया, जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भातखंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है, उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
0: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उस उसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है, गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: इसी विचार के साथ कला कल्लोलिनी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूं आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूं वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: फिर से अनूप भट्ट हास से हनाद होवे, फिर से अनूप

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: दार्जिलिंग और अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने पर स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। इधर मुर्शिदाबाद के अकाल पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए अखंडानंद जी की अथक कोशिश का समाचार पाकर स्वामी जी ने बड़े हर्ष पूर्वक अपने शिष्य स्वामी नित्यानंद व ब्रह्मचारी सुरेश्वरानंद जी को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। स्वामी जी अल्मोड़ा से प्रोत्साहन देकर पत्र लिखने लगे, यहाँ तक कि वे खुद वहाँ जाने के लिए अधीर उठे, परंतु चिकित्सक गण तथा उनके शिष्यों के निषेध के कारण वे वहाँ न जा सके।
1: इसी समय एक घटना घटी। मुर्शिदाबाद में राहत कार्य के लिए धन की कमी हो गई। कलकत्ते की महाबोधि सोसाइटी ने उस कार्य के लिए किंचित धन 150 रुपए दिया, पर बाद में उन लोगों ने दावा किया कि ये कार्य सोसाइटी के नाम पर परिचालित हो। इस विषय में दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद हुआ और स्वामी जी को इसकी सूचना दी गई। तब इसके समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिख भेजा,
2: हुजूर लोगों के नाम की ज्वाला में क्या गरीब जन सूख कर मरते रहेंगे। सारा नाम महाबोधि लेना चाहती है तो लेने दो, गरीबों का उपकार होने दो। कार्य भली भांति चल रहा है, उत्तम बात है।
0: ऐसे आखिरकार महाबोधि के नाम पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी रामकृष्णानंद तथा दक्षिण भारत के कुछ भक्तों ने पर्याप्त धन एकत्र करके भेज दिया। अन्य स्थानों से भी पैसे आ गए, अतः रामकृष्ण मिशन के नाम से ही कार्य परिचालित हुआ।
1: कलकत्ता रामकृष्ण मिशन का कार्य भली भांति चल रहा था। स्वामी रामकृष्णानंद जी भी मद्रास में प्रचार कार्य में काफी सफलता प्राप्त कर रहे थे। स्वामी अभिदानंद जी और शारदानंद जी का इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य भली भांति चल रहा था। ये सब समाचार पाकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर से नवीन उत्साह के साथ कार्यारंभ करने के लिए व्यग्र हो उठे।
0: क्रमशः उनका अल्मोड़ा से विदा होने का दिन निकट आ पहुंचा। उनकी विदाई का समय आसन्न जानकर स्थानीय नागरिकों ने उनका व्याख्यान सुनने का आग्रह किया। इधर अल्मोड़ा में रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इंग्लिश क्लब में उन्हें व्याख्यान देने का अनुरोध किया, परंतु छोटे से क्लब भवन में 100 से भी अधिक श्रोताओं के लिए स्थान बना पाना असंभव जानकर ऐसा ठीक हुआ कि सामान्य जनता के लिए स्थानीय जिला स्कूल के प्रांगण में एक हिंदी तथा 2 अंग्रेजी में भाषण हो और क्लब में एक अलग व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हो।
1: हिंदी का व्याख्यान सुनने के लिए नगर के अनेक गणमान्य और सुशिक्षित लोग उपस्थित हुए थे। स्वामी जी को हिंदी में भाषण देने का अभ्यास नहीं था और ऐसी शंका भी उठी थी कि सामान्यतः वे जिन गंभीर विषयों पर आवेगपूर्ण पर मर्म स्पर्शी व्याख्यान दिया करते थे, हिंदी भाषा के माध्यम से भी क्या ऐसा करना संभव हो सकेगा। परंतु स्वामी जी ने मंथर गति से व्याख्यान देना आरंभ किया और शीघ्र ही विषय के गुरुत्व के आकर्षण से भाषा के अक्षमता के ऊपर उठ गए और अपनी सुललित ओजस्विनी शैली में सहज ही बोलते गए।
0: ये व्याख्यान 27 जुलाई को हुआ और विषय था वैदिक उपदेश, तात्विक और व्यवहारिक। जिन लोगों के मन में ये धारणा थी कि स्वामी जी शायद इस नवीन परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकेंगे, उन्होंने भी उनका ये प्रांजल तथा धारा प्रवाह भाषण सुनकर ये स्वीकार किया कि शक्तिमान पुरुष असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों के मन में संदेह था कि हिंदी भाषा गंभीर विषयों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी नहीं है, उनका संदेह भी दूर हुआ। इतना ही नहीं, किसी किसी ने तो ऐसा भी कहा था, उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि हिंदी भाषा में भी ऐसी शक्ति है जिनके आधार पर इस भाषा की और उन्नति करके उसे ओजपूर्ण व्याख्यान देने के उपयुक्त बनाया जा सकता है।
1: 28 जुलाई को इंग्लिश क्लब में होने वाले व्याख्यान में वहां के समस्त अंग्रेज उपस्थित थे। गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल पुली ने सभापति का आसन अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हैमिल्टन, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर क्रेसी, उनकी पत्नी, कर्नल हैरिसन की पत्नी श्री और श्रीमती हिर्षा, श्री और श्रीमती लार्किन, श्री और श्रीमती मैकफर्सन, मिस्टर स्प्राई, लाला बद्री शाह, चिरंजी लाल शाह, ज्वाला दत्त जोशी तथा स्वामी जी के अन्य अनेक मित्र एवं अल्मोड़ा के प्रमुख नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे।
0: इस व्याख्यान के प्रारंभ में स्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न जनजातियों में अपने अपने कबीले के देवता की उपासना का प्रचलन हुआ, उन देवताओं की पूजा से आरंभ कर वे लोग कैसे वेदों की उपासना तक जा पहुँचे। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप और शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर वे आत्म तत्व पर विचार व्यक्त करने लगे। फिर उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पाश्चात्य प्रणाली किस प्रकार ब्रह्म जगत से जीवन के समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान ढूंढती है, जबकि प्राच्य के लोग ब्रह्म जगत में अपनी समस्याओं का समाधान न पाकर अंतर जगत में उनकी खोज करते हैं।
1: उन्होंने कहा कि हम ही यानी भारत ही इस अंतर जगत की खोज प्रणाली की आविष्कारक है। यही इस जाति की विशेष संपत्ति है और एकमात्र इसी प्रणाली की सहायता से धर्म और आध्यात्मिकता का हमने आविष्कार कर उसे समग्र जगत को सौंप दिया है। और भी अग्रसर होकर स्वामी जी आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध और स्वरूपतः दोनों का एकत्व समझाने लगे। कुमारी हेनरिएटा मूलर उक्त सभा में उपस्थित थीं। उन्होंने बताया था,
3: तब थोड़ी देर के लिए ऐसा बोध हुआ मानो भाषण करता उनकी वाणी श्रोता खान एवं उनमें व्याप भाव राशि सब मिलकर एक हो गए हों, मानो मैं तुम वह यह आदि का भेद लुप्त हो गया था। जो विभिन्न लोग वहां एकत्र हुए थे मानो उन कुछ क्षणों के दौरान आचार्य देव के शरीर से निकलने वाली आत्मा ज्योति के प्रभाव में डूबकर मंत्र मुक्त बैठे रहे। उस समय क्षण भर के लिए मानो समस्त भेद भदी तथा व्यक्तिगत वैशिष्ट लुप्त हो गया, नाम रूप लुप्त हो गया, एकमात्र चेतना सत्य का ही अस्तित्व रह गया जिसमें वक्ता वाक्य श्रोता मिलकर एक हो गए।
0: तीसरा व्याख्यान 31 जुलाई को हुआ जिसमें लगभग 400 शिक्षित लोग उपस्थित थे और सभी लोग स्वामी जी के भाषण पर मुग्ध हो गए। दार्जिलिंग तथा अल्मोड़ा में वहां के जलवायु के स्वाभाविक गुण, मित्रों की देखभाल और विश्राम के फलस्वरूप स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। संभव है और भी विश्राम करने से उसका कुछ स्थायी फल होता, परंतु जिन स्वामी जी ने लोक कल्याण को अपना प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य बना लिया था उनके लिए लंबे समय तक चुप बैठना संभव न था। अल्मोड़ा से नीचे उतरने के काफी काल पूर्व ही उन्होंने 14 जून के पत्र में स्वामी अखंडानंद को लिखा था,
2: मैं शीघ्र ही पहाड़ से समतल पर उतर रहा हूँ। मैं वीर हूँ, रण क्षेत्र में ही मरूंगा। यहाँ पर्दा नशीन औरत के समान बैठे रहना क्या मुझे शोभा देता है?
1: वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना तो कभी भी उनके लिए संभव नहीं था। हमने देखा है कि इस काल में भी वे नव प्रतिष्ठित केंद्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखते थे। इन दिनों कौन कौन से कार्य चल रहे थे इसका आभास देते हुए उन्होंने 23 जुलाई को मिस नोबल भगिनी निवेदिता को सूचित किया था,
2: कार्य प्रारंभ हो गया है। इस समय अकाल निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। कई केंद्र स्थापित हो गए हैं और अकाल सेवा प्रचार तथा सामान्य शिक्षा का काम चल रहा है। कार्य यद्यपि अभी तक छोटे स्वरूप में ही चल रहा है, तथापि जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है उन्हें आवश्यकतानुसार काम में लगाया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्य क्षेत्र हैं। एक जन को कोलंबो भी भेजा गया है।
0: उसी पत्र के अंत में उन्होंने लिखा था,
2: कुछ दिनों बाद ही मैं नीचे मैदानों की ओर जा रहा हूँ और वहां से इसी पर्वत के पश्चिमी खंड की ओर जाऊंगा। जब मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंडक पड़ने लगेगी तब मैं देश भर में व्याख्यान देते हुए दौरा करूंगा, देखूंगा कि कितना काम किया जा सकता है।
0: स्वयं प्रचार कार्य में व्यस्त रहकर भी वे चाहते थे कि साथ में संगठन का कार्य भी चलता रहे, इसलिए 30 जुलाई को अल्मोड़ा से उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी को लिखा था कि वे अनाथ बालकों की सेवा में लग जाएं। इसी पत्र में उन्होंने ये भी सूचित किया था कि आगामी सोमवार 2 अगस्त को वे अल्मोड़ा से चल पड़ेंगे।
2: यहाँ पर साहबों के बीच मैंने अंग्रेजी में एक भाषण तथा स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में मेरा ये प्रथम व्याख्यान था, परंतु सबको बड़ा अच्छा लगा। आगामी शनिवार 31 जुलाई को स्थानीय लोगों के लिए एक और भाषण अंग्रेजी में होगा। यहाँ पर एक बड़ी सभा स्थापित की गई है। भविष्य में कितना कार्य होता है ये देखना है। सभा का उद्देश्य है विद्या तथा धर्म की शिक्षा देना। सोमवार को बरेली के लिए प्रस्थान करना है, उसके बाद सहारनपुर, फिर अंबाला, वहां से संभवतः कैप्टन सेवियर के साथ मसूरी जाऊंगा। तदुपरांत थोड़ी ठंड पड़ते ही वापस लौटकर राजपूताना आदि स्थानों को जाना है।
1: देवलधारा और अल्मोड़ा से विदा लेने के पूर्व और भी दो एक घटनाओं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। सर्वप्रथम हम स्वामी जी द्वारा स्वयं कथित एक प्रेत अथवा दैवी घटना का विवरण देते हैं। इसका स्थान काल ज्ञात न होने पर भी ये अनुमान है कि ये घटना देवलधारा के ही निकट कहीं घटित हुई है। घटना यूं है, स्वामी जी एक बार हिमालय में भ्रमण करते हुए रात बिताने को एक गांव में ठहरे हुए थे। संध्या के बाद खूब ढोल बजने की आवाज सुनकर गृह स्वामी से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव के किसी आदमी पर देवता चढ़ा है।
0: कौतूहलवश वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर लाल करने के बाद उसे उस व्यक्ति के अंगों से लगा रहे हैं तथा उसके बालों से भी छुआ रहे हैं, परंतु उसका कोई अंग या बाल जलता न था और न ही चेहरे से किसी पीड़ा का भाव व्यक्त होता था। उसी समय गांव का मुखिया स्वामी जी के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए। सबके अनुरोध पर स्वामी जी को उस प्रेताविष्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ा। जाते ही उनके मन में उस कुल्हाड़ी की जांच करने की इच्छा हुई। कुल्हाड़ी उस समय तक काली हो चुकी थी, तो भी छूते ही उनका हाथ झुलस गया और असहाय पीड़ा होने लगी। इस पर उनकी तर्क युक्ति सब लुप्त हो गई। उस पीड़ा के साथ ही उन्होंने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रखकर थोड़ी देर जाप किया।
1: आश्चर्य की बात है कि इसके 10-12 मिनट के भीतर ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गया। परंतु स्वामी जी स्वयं इस घटना की मीमांसा नहीं कर सके। वे अपने गृह स्वामी के साथ वापस लौटे और रात के 12 बजे बिस्तर पर लेट गए, परंतु हाथ की जलन और इस अद्भुत घटना की कोई व्याख्या न सोच पाने के कारण उन्हें उस रात नींद नहीं आई।
0: अल्मोड़ा की एक अन्य प्रमुख घटना थी सुप्रसिद्ध देशभक्त नेता श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त के साथ उनकी भेंट। काफी काल पूर्व एक बार श्री रामकृष्ण के आदेश पर अश्विनी बाबू श्री रामचंद्र दत्त के घर पर ठाकुर के समक्ष ही नरेंद्र नाथ से बातें की थी, परंतु उस दिन नरेंद्र के सिर में दर्द होने के कारण ज्यादा बातचीत न हो सकी थी। इस पर अश्विनी बाबू ने कहा था, रहने दीजिए, फिर किसी दिन बात होगी। श्री ठाकुर की इच्छा थी कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जुड़े और वो पूरी हुई 12 वर्ष बाद 1897 ईस्वी के मई या जून अल्मोड़ा में। अश्विनी बाबू ने लिखा है,
4: श्री राम कृष्ण की इच्छा पूरी तो होनी थी, इसलिए 12 साल बाद वो पूरी हुई। स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वो दिन कैसे आनंद से कटे थे, कभी उनके यहां, कभी मेरे यहां, और कभी निर्जन पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई।
0: अश्विनी बाबू उन दिनों अल्मोड़ा में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि स्वामी जी भी वही निवास कर रहे हैं, परंतु उनका पता किसी को ज्ञात न था। अश्विनी बाबू के रसोइये ने एक दिन बताया कि नगर में एक अद्भुत साधु आए हुए हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और घुड़सवारी करते हैं, अतः वे उनकी खोज में बाहर निकल पड़े। वे मकान के पास पहुंचकर भी समझ नहीं सके कि स्वामी जी ठीक किस मकान में रहते हैं, और लोगों से पूछने पर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में बंगाली साधु के बारे में पूछने पर एक राहगीर ने बताया, तो आप घुड़सवार साधु के बारे में पूछ रहे हैं, वो देखिए वे घोड़े पर चले आ रहे हैं, उधर के मकान में रहते हैं। अश्विनी बाबू ने दूर से ही देखा कि गैरिकधारी सन्यासी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक अंग्रेज द्वार खोलकर बाहर आए और घोड़े की नकेल पकड़कर भीतर चले गए। इसके बाद स्वामी जी घोड़े की पीठ पर से उतरे।
1: थोड़ी देर बाद अश्विनी बाबू ने वहां पहुंचकर एक युवा साधु से पूछा,
4: नरेंद्र दत्त है क्या, उनसे मिलना है।
5: नहीं, यहाँ नरेंद्रनाथ नाम का कोई नहीं रहता।
6: हाँ हाँ आइए, मैं यहाँ हूँ।
4: नमस्कार, आपको शायद याद नहीं, श्री राम कृष्ण देव के आदेश पर मैं आपसे कलकत्ते में मिलने गया था। पर बात नहीं हो पाई थी आपसे।
2: आओ आओ आओ, पहले गले तो मिलो। मुझे सब याद है, उस दिन मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाया था।
4: स्वामी जी, इतनी सालों पुरानी बात।
2: ये क्या, आपके लिए मैं स्वामी जी कब से हो गया? मैं तो अब भी वही नरेन हूँ। ठाकुर मुझे जिस नाम से पुकारते थे, वही मेरे लिए परम संपदा है। आप भी मुझे उसी नाम से पुकारिए।
0: उस मुलाकात के बाद दोनों में कई विषयों पर बातचीत हुई। धर्म, वेदांत, राजनीति, समाज, सभी विषयों पर दोनों ने चर्चा की।
4: आपने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके लाखों लोगों के प्राणों में आध्यात्मिक चेतना जगाई है। क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत की मुक्ति कैसे होगी?
2: आपने ठाकुर से जो कुछ सुना है, उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। धर्म ही हमारे जीवन का सार सर्वस्व है, और सभी प्रकार के सुधारों को साधारण जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें धर्म के माध्यम से ही लाना होगा। इसके विपरीत कुछ करने का प्रयास मानो गंगा को गोमुख की दिशा में पुनः धक्का देकर एक नवीन मार्ग से प्रवाहित करने के समान अव्यवहारिक होगा।
4: परंतु दूसरे राजनैतिक दल जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी आस्था नहीं है?
2: नहीं, मेरी आस्था नहीं है, पर हाँ, बिल्कुल नहीं से थोड़ा अच्छा है। फिर सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए उसे हर तरफ से धक्के देना अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने अब तक आम जनता के लिए क्या किया है? आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि मात्र दो चार प्रस्ताव पास कर देने से ही स्वतंत्रता मिल जाएगी? नहीं, मेरी इसमें आस्था नहीं है। पहले जनसाधारण को जगाना होगा, उन्हें पेट भर भोजन मिले तो वे स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे। यदि राजनीतिक दल उनके लिए कुछ करते हैं तो उनको मेरी सहानुभूति प्राप्त होगी। इसके साथ ही अंग्रेजों में जो गुण हैं, उन्हें भी हमें अपनाना होगा।
4: धर्म से आपका तात्पर्य क्या किसी मत विशेष से है?
2: ठाकुर ने क्या किसी सांप्रदायिक मतवाद का प्रचार किया था? बल्कि उन्होंने वेदांत को ही सर्वांगीण धर्म बताया है, इसीलिए मैं भी उसी का प्रचार करता हूं। परंतु मेरी दृष्टि में धर्म की सार बात है शक्ति। ऐसा धर्म जो हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वो चाहे उपनिषद का हो या गीता का अथवा भगवत का, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। शक्ति ही धर्म है, तथा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है।
4: अच्छा बताइए, मेरे लिए क्या करना उचित रहेगा?
2: सुना है कि आप शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं, वही सच्चा कार्य है। आपके भीतर एक महान शक्ति कार्य कर रही है, और जो ज्ञान दान हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कार्य है। परंतु ध्यान रखिएगा कि जनसाधारण में मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा का ही प्रसार हो, उसके बाद चाहिए चरित्र निर्माण। वज्र के समान दृढ़ बना डालिए। बंगाली युवकों की अस्थियों से ही वो वज्र तैयार होगा जो भारतीय दास्तां की बेड़ियों को चूर कर डालेगा। क्या आप मुझे कुछ योग्य लड़के दे सकेंगे? तभी तो मैं पृथ्वी को अच्छी तरह हिलाकर जा सकूंगा।
0: उन्हें वज्र के समान युवा शक्ति की तलाश थी, तभी तो वे बोले।
2: और जहां कहीं भी राधा कृष्ण के कीर्तन सुनने को मिले, वहां दाएं बाएं अच्छा चाबुक चलाइए। पूरा राष्ट्र सड़कर ध्वंस हुआ जा रहा है, जिनमें जरा सा भी आत्मसंयम नहीं, ऐसे लोग इन सब गानों में मतवाले हो रहे हैं। थोड़ी सी भी अपवित्रता रहते, इन सब में निहित उच्च आदर्शों की धारणा नहीं की जा सकती। ये क्या बच्चों का खेल है? हम लोग काफी काल से नाचते कूदते रहे हैं, अब इसे थोड़ा विराम देने में हर्ज नहीं। इसी बीच देश थोड़ा शक्तिशाली बन जाए, और फिर सर्वहारा तथा उसी तरह के लोगों के पास जाकर कहिए, तुम ही लोग तो राष्ट्र के प्राण हो। तुम्हारे भीतर ऐसी असीम शक्ति विद्यमान है जो दुनिया को उलट सकती है। उठो, बंधन को तोड़ फेंको, और सारा संसार तुम्हें देखकर विस्मित रह जाएगा। उनके बीच जाकर स्कूल खोलिए और उनके गले में जनेऊ डाल दीजिए।
4: नरेन, आपके जलपान का समय बीत रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सच है कि जब मद्रास के ब्राह्मणों ने वेद प्रचार का अनाधिकारी बताया था, तब आपने कहा, तो हे मद्रास के ब्राह्मणों, आप लोग भी अधम हैं।
2: हाँ,
4: आपके समान एक धर्म प्रचारक तथा संयमी व्यक्ति द्वारा ऐसा कहा जाना क्या उचित था?
2: ऐसा कौन कहता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने उचित किया था। उन लोगों की अभद्रता देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए ऐसी बातें निकल पड़ी। उसके बाद मैं भला कर ही कह सकता था, परंतु अपने पक्ष का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं।
4: नरेन, एक बार गले लग जाओ भाई। आज आपका मान मेरी दृष्टि में सर्वोच्च हो गया। आज मैं समझ गया कि क्यों आप विश्व विजय हुए हैं और क्यों ठाकुर आपको इतना स्नेह करते थे।
0: अल्मोड़ा से चलकर स्वामी जी भीमताल आए। वहां एक दो दिन रुककर वे 9 अगस्त को बरेली पहुंचे। वहां वे श्री प्रियनाथ बाबू के बंगले पर रुके थे। वहां वे अधिकतर युवकों और छात्र समुदाय के साथ संपर्क स्थापन करते रहते थे।
1: शरीर अस्वस्थ रहने के कारण स्वामी जी को भय था कि वे इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, अतः उन्हें अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की जल्दी हो रही थी।
0: बरेली का कार्य समाप्त करने के बाद 12 अगस्त को रात 11 बजे के ट्रेन से वे अंबाला गए। वहां उनके एक सप्ताह निवास के दौरान श्री तथा श्रीमती सेवियर शिमला से आकर उनसे मिले। यहां पर उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहने के कारण सभी लोग खुश थे और स्वामी जी भी नगर के संभ्रांत लोगों के साथ आनंद पूर्वक विविध

0: भोजन के बाद पेट में दर्द होने के बावजूद संध्या के बाद उन्होंने एक छोटी सी सभा में उपस्थित होकर वहां 1.5 घंटे तक हृदयग्राही भाषण दिए थे। तदुपरांत रात को वे निराहार ही रहे। 16 अगस्त को लाहौर कॉलेज के एक प्राध्यापक ने एक फोनोग्राफ लाकर स्वामी जी से उसमें व्याख्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने वैसा ही किया।
1: इस व्यस्तता के बीच भी 19 अगस्त को सुबह वे हिंदू मुसलमान सौहार्द के प्रतीक हिंदू मोमेडन स्कूल का परिदर्शन करने गए थे। फिर भोजन उपरांत उन्होंने श्यामाचरण मुखोपाध्याय आदि सज्जनों तथा संध्या के बाद आर्य समाजी वकील द्वारकानाथ के साथ वार्तालाप किया। कुल मिलाकर उनके अंबाला के दिन बड़े ही आनंदमय तथा व्यस्तता से परिपूर्ण थे। वहीं से अंतिम दिन 19 को उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था,
2: इस समय मैं धर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ। निरंजन, दीनू, कृष्णलाल, लाटू तथा अच्युत अमृतसर में रहेंगे।
0: श्रीमती ओलीबुल की भारत आने की इच्छा को जानकर स्वामी जी ने उसी दिन उन्हें भी एक पत्र लिखा। जैसा कि कुमारी मैकलाउड के सम्मुख उन्होंने भारतीय जीवन का वास्तविक रेखांकन करते हुए उन्हें सावधान कर दिया था, तथापि आगमन के लिए सादर आमंत्रण भी भेजा था। यहाँ भी उन्होंने वही करते हुए लिखा,
2: सोच लीजिएगा कि आप लोग मानो अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों में जाने के लिए निकली हैं। उसके बाद यदि देव योग से कुछ उत्कृष्ट मिल जाए तो उसे आशा से अधिक उपलब्धि समझिएगा।
1: 20 अगस्त को सुबह उन्होंने सेवियर दंपत्ति के साथ धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अमृतसर में 4-5 घंटे ठहरकर उन्होंने टोडरमल नामक एक बैरिस्टर के यहाँ विश्राम किया। धर्मशाला में वे सेवियर दंपत्ति के साथ मात्र 7-8 दिन रहे। बाद में वहां से लौटकर उन्होंने अमृतसर में 2 दिन बिताए और 31 अगस्त को मेल ट्रेन से रावलपिंडी की यात्रा की। अमृतसर में 2 दिन निवास के दौरान उन्होंने सिखों के मंदिर देखे और मूल राज आदि प्रमुख आर्य समाजी नेताओं के साथ विविध विषयों पर चर्चा की। रावलपिंडी स्टेशन पर डॉक्टर भक्तराम के भाई बग्घी आदि लेकर उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु रावलपिंडी में उनका रहना न हो सका। शारीरिक अस्वस्थता बढ़ जाने के कारण वे तत्काल ही सेवियर दंपत्ति के साथ तांगे में मरी के लिए रवाना हो गए। उनके अन्य संगी भी इक्के में सवार होकर यथा समय वहां पहुंचे और वे सभी लोग वकील हंसराज के मकान पर ठहरे। यहाँ के बंगाली निवासियों ने एक दिन उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, जिसे स्वीकार करके स्वामी जी उन लोगों के घर गए और भजन एवं उपदेश सुनाकर सबको कृतार्थ किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। दिन के ठीक 12 बजे हैं। अब हमारी दोपहर कालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
3: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती

मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं बघेली लोक संगीत। प्रस्तुत कर रही हैं शीला त्रिपाठी।

आज मैं बारिश से संबंधित कुछ चुने हुए बघेली लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बघेली लोकगीतों में सबसे पहले मैं अपनी प्रस्तुति हिंडुली से करूंगी। हिंडुली गीत बारिश जब शुरू होती है तो गांव में महिलाएं जो है धान का रोपा लगाती हैं, उस समय सब मिलकर गाती हैं। मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

अनुसार श्रावण मास में झूले डालने की प्रथा है और हमारे बघेलखंड में भी झूला डलता है और हम झूला गीत गाते हैं। उन्हीं झूला गीतों में से एक झूला गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

हमारे ग्रामीण परिवार में वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है और बारिश के दिनों में केवल घर में महिलाएं ही रहती हैं। तो जो महिलाओं के ऊपर गुजरती है बारिश के दिनों में, खपड़ैल मकान रहते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगा।

शंकर के जितने भी रूप हैं उनमें सब में विविधता पाई जाती है, उतनी शायद अन्य किसी देव में नहीं पाई जाती। लोग परंपरा माने भगवान भोला और माँ गौरा के रूप में अपने अपने रूप में किस तरह से प्रकट करता है, आइए सुनते हैं इस श्रृंगार समा

बोनी के बाद बोने के समय किसान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बारिश होगी तभी हरियाली आएगी और हमारा अन्न फलेगा और फूलेगा। गाय को चारा नहीं मिलेगा तो गाय के बछड़े को दूध भी नहीं मिलेगा। तो मेवा जी, आप बरसों ने धरती नीबजे, दुनिया में होवे सुवकाल, मेवल राजा आप बरसों तो धरती नीबजे।

राखी का त्यौहार आते ही बहनें अपने पीहर को जाने के लिए खुशी और उल्लास के साथ तैयारी करने लगती हैं। उसी खुशी का वर्णन इस गीत में प्रस्तुत है। सुनो हो सहेली ओ अलबेली, सावन महीनो आयो महाराज, बीरज के राखी बांधांगा।

जब सावन के झूले गांवों में बंद जाते हैं तब सब सखियां मिलकर झूला झूलने जाती हैं। झूला झूलते समय उसे जब डर लगता है और डर और घबराहट को हम इस गीत में प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल हैं, ओ सहेली झूला चढ़े तो डर लागे वो मन दूरो दूरो भागे वो।

शादी के बाद ससुराल में जब लड़के को झूला झूलने के लिए उसकी सखियां बुलाने आती है, तब उसे ये संकोच होता है कि झूला झूलने की इच्छा कामना को वो अपने सास ससुर को कैसे बताए, कैसे कहें कि मुझे झूला झूलना है, मस्ती करना है, खुशियां लेना है। तो नदियां किनारे झूले बांधे हो कि सैया हमारी झूलवाने आजे हो, तो आई झूला गीत।

बरसात के बाद जब चारों ओर हरियाली छाती है तब पूरी धरा हरियाली से श्रृंगारित हो जाती है। हर तरफ हरा भरा माहौल होता है। हो हरियाली आंगन छाई धरती माता को श्रृंगार, धरती माता को श्रृंगार आता जाता की मनवार। अंतिम प्रस्तुति के साथ ये गीत प्रस्तुत है।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने शीला त्रिपाठी से बघेली लोक संगीत सुना और सोनी पवार और उनकी सखियों का बुंदेली लोक गायन। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, इजाजत दीजिए प्रमिला को, नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी आहुति। जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे पैदा हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधेश्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूति ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी, वे मृत्यु की घड़ियां गिन रही थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के 7वां बच्चा लड़की हुई थी। मां बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थीं। घर में कोई बड़ा आदमी ना होने के कारण मां की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे, उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहां थी। पंडित राधेश्याम जी एडवोकेट, अपनी मां और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं न जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की मां पूर्ण स्वस्थ होकर बच्ची समेत अपने घर चली आई और उसी दिन राधेश्याम जी की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वे भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा पर उनका अत्यंत प्रेम था। वे अपने चिन्ह स्वरूप जो छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी, वही राधेश्याम जी का जीवन आधार था। वे कहते थे कि इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति की पूजा करते हुए ही अपने जीवन के शेष दिन बिता देंगे।

जिस हृदय मंदिर में वे एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति की स्थापना कर चुके थे, वहां पर किसी दूसरी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते थे। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर वे बहुत कम आते, अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती, उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी उसमें सदा ताला पड़ा रहता है। उस कमरे में वे उस दिन से कभी न गए थे जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वो संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते, कचहरी जाते, वहां भी जीना लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती उनका काम 25 में ही कर देते। गरीबों के मुकदमे में बिना फीस के ही खड़े हो जाते, सोचते रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है, किसी तरह जीवन को ढकेल ले जाना है। तात्पर्य ये कि जीवन में उन्हें कोई रुचि न रह गई थी। दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर किसी को अधिक कहने सुनने का साहस ना होता। अतएव सभी ये समझ चुके थे कि राधे श्याम जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनकी माता ने भी अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वे टस से मस न हुए। अंत में वे अपनी इस इच्छा को साथ लिए इस लोक से विदा हो गईं। इसके कुछ ही दिन बाद राधे श्याम जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था, सामने से एक तांगा निकला। न जाने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर घिसटता हुआ चला आया। एक 7-8 साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराए हुए अपने दो सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे, फिर अपने भाई को उठाने लगी। राधे श्याम जी ने देखा और दौड़ पड़े, बालक को उठाकर झाड़ने पहुंचने लगे। राधे श्याम के एक मित्र जगमोहन, जो राधे श्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे, बालिका को संबोधन करके बोले, कहां जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वहीं अम्मा के पास जा रही थी, कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधे श्याम जी की सोई हुई स्मृति जाग उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को उसमें बिठाकर उसे रवाना करके राधे श्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात ही बात में राधे श्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई ये किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बतलाया, वो पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। पढ़ी लिखी, गृह कार्य में कुशल और सुंदर होने पर भी धनाभाव के कारण अभी तक कुंवारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपये माहवार पर एक ऑफिस में नौकर हैं। बड़ा परिवार है, 50 रुपये में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता होगा। फिर लड़की के विवाह के लिए 2-3 हजार रुपये कहां से लाएं? कान्य कुब्जों में तो बिना हरौनी के कोई बात ही नहीं करता। कष्ट में ही है बेचारी, लड़की सयानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो बांधते नहीं बनता। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे श्याम जी का हृदय आतुर हो उठा, किंतु तुरंत ही मनोरमा की स्मृति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधे श्याम को जैसे कोई भूली सी बात याद आ गई। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए बोल उठे, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। राधे श्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ लिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। तुम क्या कहते हो राधे श्याम, है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बिचारी को कोई योग्य वर नहीं मिलता। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहे? राधे श्याम उदासीनता से बोले, भाई लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी करते हैं। उसके माने ये थोड़ी है कि फिर कोई विवाह करता ही नहीं। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है फिर आएगा। रंज किसे नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े बन जाना पड़ता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, यही ना 35-36 साल की, बस
जीवन भर तपस्या करने की बात है। बिना स्त्री के घर जंगल से भी बुरा रहता है। ब्रजेश की मां 4 ही 6 दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। राधे श्याम बोले, ये कोई बात नहीं जगमोहन, घर से तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। जिस दिन मनोरमा का देहांत हुआ, घर मेरे लिए घर ही नहीं रह गया। बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं। अम्मा थी तब तक तो कोई बात ही ना थी, पर अब बच्चे की कुछ देखभाल नहीं होती। नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूं तुम ही सोचो। परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा है। राधे श्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बाहर आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाली का पर्दा डाल दिया गया। उस घर में फिर से नुपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर्ग्रहणी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्य कुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधेश्याम मुग्ध थे। कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित हो उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था, वे पूर्ण सुखी थे। राधेश्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के ही लिए, किंतु उस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधेश्याम की देखभाल करनी पड़ती। उनकी देखभाल से ही वो परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधेश्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। बुरा भला कैसा भी काम हो, सबकी एक सीमा होती है। राधेश्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती सो तो थी ही, किंतु उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना ना रहा। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गईं। 6 महीने की बीमार मालूम होती है। वैसे ही वो स्वभाव से सुकुमार थी। अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जी सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधेश्याम अनभिज्ञ हों सो बात न थी, उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानि और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और विशेषकर दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी। वो राधेश्याम को किस प्रकार रोक सकती थी, किंतु वो तो उनकी विवाहिता पत्नी ठहरी, क्योंकि 7 भांवरे फिर लेने के बाद राधेश्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली मिल सी चुकी थी।

इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गईं। कुंतला ने सोचा, अच्छा ही है, घंटे दो घंटे घर से बाहर रहकर अपने जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वहां गई भी। वहां जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए कुंतला ने सुने। उसने सोचा वो इन सबसे अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा। विषय था भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधेश्याम ने भी लेख देखा, बहुत प्रसन्न हुए। लेख लिए हुए वे बाहर गए, बैठक में कई मित्र थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली और सामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधेश्याम भीतर आए। कुंतला को बुलाकर बोले, कुंतला तुम्हारा लेख बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो, नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं कहीं भाषा की त्रुटियां हैं जरूर, पर ये मेरे मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तुम रोज कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर कोई बात नहीं, ये भी घर ही कैसे आदमी है। कुंतला के लेखों का भार अखिलेश्वर को सौंपकर राधेश्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब एक ऐसा साथी मिला था जिसकी आवश्यकता वो बहुत दिनों से कर रही थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत सी उपयोगी बातें बता सकता था, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखकों और कवियों की कृतियों का रसास्वादन करा के साहित्य के जगत की सैर करा सकता था। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट थी। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस मालूम न होता था। कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य की ओर देखकर उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि और लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वे उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। लाइब्रेरी में जाते, अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शैली, टेनिसन और कीट्स तथा महाकवि शेक्सपियर आदि के ऊंचे दर्जे की कविताएं उसे पढ़कर सुनाते, उसके सामने व्याख्या तथा आलोचना करते और उससे करवाते। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनाकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी। किंतु अब राधेश्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा था। कभी कभी सोचते शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझ कर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय व्यतीत करते हैं, किंतु वे प्रकट में कुछ ना कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तो उनका आपस में परिचय कराया था। कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी, इसलिए वो बहुत सतर्क रहती। किंतु फिर भी यदि भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधेश्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भभक उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या का भाव ही अधिक था। इन्हीं दिनों कुंतला ने दो चार तुकबंदियां भी की जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का बहुत सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधेश्याम को भी पढ़कर सुनाई, कुंतला की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, किंतु राधेश्याम खुश न हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी हैं। अखिलेश्वर निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे, उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन न था। कुंतला के शिक्षण से उन्हें इतना ही आत्मसंतोष था कि वे साहित्य की सेविका तैयार कर रही हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधे श्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, इसका उन्हें ध्यान भी न था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर न निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धनिया गिनते हुए अनेक बार कुंतला की उन्हें याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजें, फिर न जाने क्या आगा पीछा सोचकर वे कुंतला को बुला न सके। इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार न पाकर
कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी। वो बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना बंद क्यों कर दिया, क्या बात हो गई। किंतु वो अखिलेश्वर के विषय में राधेश्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की मां ने कुंतला को बुलवा भेजा। राधेश्याम कुंतला से यह कहकर कि जब तांगा आवे तुम टली जाना, कचहरी चले गए। कुंतला मां के घर जाकर जब वहां से 3 बजे लौट रही थी तो उसे रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार हैं, कई दिनों तक तेज बुखार रहा है, अब भी कई दिन घर से बाहर न निकल सकेंगे, कुंतला अपने को रोक न सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने उसका हृदय व्याकुल हो उठा। अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवा कर वो अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला तुम कैसे आ गई, इस बीमारी में मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधेश्याम जी ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी ना बोल पाई। राधेश्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, आओ भाई राधेश्याम, आज ही कुंतला आई तो तुम भी आए, वरना आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूं, रोज ही तुम्हारी याद करता था पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 ही बजे कचहरी से कैसे लौट आए। राधेश्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम नहीं था इसलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलती हो, मैं तो जाता हूं। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा पर वे न रुके, चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर ऐसी मार्मिक दृष्टि डाली जिसमें न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गईं। राधेश्याम के आंतरिक भावों को वे अब समझ सके। घर पहुंचकर कुंतला कुछ न बोली, वो चौके में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने लौटकर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कॉपियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेट कर किसी ने आग लगा दी। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वो प्यारा चित्र कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है और ऊपर उठती लपटें मानो ये कह रही हैं, कुंतला ये तुम्हारे साहित्य के जीवन की चिता है।

0: ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी आहुति। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपने किस्सा गो संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन,
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है, और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है, और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं, पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे, और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाऊं, गले राम की जेहणी जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहूं मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर व रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल।
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर

0: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत, और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की। और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीरदास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली, उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
0: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद, जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया, और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे, शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
0: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे, और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहां पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
0: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
0: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
0: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहां तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
0: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
0: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत। और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में अवधि, ब्रजभूमि में ब्रज, हमारे मालवा क्षेत्र में मालवी, कुरुक्षेत्र में कौरवी। श्रोताओं, ये लिस्ट काफी लंबी है जिसमें लगभग 19 बोलियां आती हैं। लेकिन इन 19 बोलियों में से साहित्य में ज्यादातर प्रयुक्त हुए अवध और ब्रज।
0: और वजह यह थी कि शुरुआती रचनाएं ज्यादातर भक्ति परक थी। राम के भक्तों ने अवधि व कृष्ण के भक्तों ने ब्रज का प्रयोग किया। आगे चलकर रीतिकाल में अवधि का जन्म भी ब्रज ने ही ले लिया, क्योंकि बिहारी धनानंद जैसे कवि श्रृंगार रचनाओं के लिए ब्रज ज्यादा उपयुक्त थी।
1: इस भाषा में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने की पुरानी परिपाटी जो थी,
0: बिल्कुल,
1: जबकि अवधि में राम जानकी के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
0: कौन सी कविता?
1: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
0: वाह,
1: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
0: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
1: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
0: जी हाँ, खैर जब बाहर तेंदू का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
1: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
0: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे, खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
1: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
0: जी हाँ, श्रोताओं आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है, लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे। सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
1: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
0: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
1: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
0: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
1: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के तीन छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
0: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
1: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
0: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढकर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
1: और आलम यह है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़ करके चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
1: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
1: बिल्कुल ठीक,
0: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
0: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही हैं जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
1: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
0: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
1: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
0: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
1: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
0: जी।
1: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
0: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
1: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे

0: नियंत्रण और समन्वय, मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोचते हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारे प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: .8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दो प्रस्तुतियां। पहले रागिनी गायन राजेश दलाल और उनके साथियों के स्वरों में, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे आल्हा गायन। पहले रागिनी गायन।
3: बहुत ही आदर और सम्माननीय सबको हमारा प्रणाम है, राम राम है। तो रागिनी गायन, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, जिंदा रहने का हुनर उसने सिखाया होगा, तेज आंधी में दिया जिसने जलाया होगा। तो मील का पत्थर बनगी प्यारे, मील का पत्थर बनगी प्यारे, इसकी आत्मनिर्भरता गिने देना मैं यू हरियाणा, होता जावे क्या से क्या, और देख पड़ोसी कहने लागे वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। ओ बल्ले ओ मेरे यारा से मारा हरियाणा, सारी दुनिया तन्यारा से मारा हरियाणा, यू किसा से मारा हरियाणा। सुनिए इस रागनी में।

ब्राह्मण में फिर और सामण में फिर पींग पढ़े न्यू लर्ज डाले दाली रे पिज्जा बर्गर ते ऊपर ये बुलगले पूरे सुहाड़ी रे अरे हर एक दिन त्योहार।

अरे सब ते अच्छी साची बात के सब ते अच्छी साची बात महकार से मारे पसीने में भागण सा खेला खेता में।

बॉर्डर के ऑर्डर होकर गिलिया बॉर्डर के ऑर्डर जवान तने हरियाणा के खेला में मेडल ल्यावे ना जावे गिने हरियाणा के पढ़े लिखे ये सखर चढ़े से बने जने हरियाणा के और बॉलीवुड में चले जठोरे देख अपने हरियाणा।

हमारी यह रिवाज है कि बच्चा होता है तब उसकी छठी मनाई जाती है, और उसके पीछे एक ये मान्यता है कि उस दिन वो बेमाता उसके भाग उसके लेख उसका भविष्य लिखने के लिए आती है। कहते हैं कि वह बेमाता आई और पूछने लगी उसकी माँ से, अब बता तेरी संतान के भाग्य में के लिख दूं। माता हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोली जी आप कौन? बोला मैं बेमाता हूं। बोले हाँ फिर तो आप जो लिखोगे वो पार जागा। हाँ बोला बोल मां क्या लिख दूं? बोला जी ये लिख दो अक मेरी औलाद ले के दे देर करके खा ले, ले के दे दे और करके खा ले उस पे कौन जबर होश है। हमारे हरियाणा का एक मुहारा है बहुत जिंदा, लेके दे दे करके खा ले उस पे कौन जबर होश है, और नुगरा मानस आंख बदल जा तो समझदार की मरोस है। सबसे बड़ा मान सम्मान हमारे इस बात में है कि हम कर्मठ हैं, अपना पसीना निचोड़ के अपनी जमीन को सींचते हैं, अपना किया हुआ खाते हैं, बेराना के नन नहीं लखा, दूसरे के लोभ नहीं तकते, दूसरे की धन माया पर लाल टपकाना हरियाणा का कर्म धर्म नहीं है। आखिर में क्या बताया कितनी मेहनत से आया है ये शिखर में हरियाणा, सुनिए।

आग लखाए से हमने खूब कमाए नुगात खपाए और फर्ज पोगाए से हमने गोरे राज के ताज को छाड़े पढ़ने बैठाए से हमने गुड़ की डली खा और घड़वे बजा के।

दे दा करके खा ला ये भाग लिखाए से हमने, खूब कमाए गाथ खपाए फर्ज भुगाए से हमने, और गोरे राज के ताज उछाड़े पढ़ने बैठाए से हमने, गोरे राज के ताज उछाड़े इतिहास बनाए से हमने, और गुड़ की डड़ी खा गढ़वे बजा के उधार का स्वर्ग नहीं सजाया हमने, जो हमारे घरा था उस समय मस्त रहे। अरे गुड़ की डली खा गढ़वे बजा मनाए हमने, गुड़ की डली खा गढ़वे बजा के त्योहार मनाए हमने। राजेश दलाल तू रहे आपे में, राजेश दलाल रहे

एक और प्रस्तुति का मेरे लिए। दोस्तों कहते कि जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाती है, जहां जहां शहीदों की रूह उकेरी जाएगी वहां वहां बिना अगरबत्ती भी महक आएगी। तो शहीदों के शहीद शहीद आजम भगत सिंह की रूह उकेरने का एक किस्सा, एक वाक्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि 24 तारीख 1931 उनकी फांसी का दिन धरा, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतना हड़बड़ा गया कि एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को वे तीनों सुखदेव भगत सिंह राजगुरु फांसी पे चढ़ा दिए। और केवल चढ़ाए ही नहीं, बिल्कुल निर्मम हत्या भी की उनकी, इतिहास बताता है। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए, जो उनके साथी बाहर थे वो नदियों के मां गला दिए। लकड़ी की जगह पर कोला था, मिट्टी के तेल में घोला था, जो अगर तगर भी बोला था वो मित्र प्यारे जला दिए। और सतलुज नदी के किनारे पर जब वो जलाए तो ये दुखदाई नजारा देख के कुदरत भी आंसू गिरने लगी और वृक्ष भी अपने पत्ते झड़काने लगे दुख में। सब फूल पाथे झड़ रहे, झड़ झड़ कीचड़ में पड़ रहे, हम झाड़ बोझड़े खड़े रहे, वे बादाम छुहारे जला दिए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु सतलुज के किनारे जला दिए। ये कवि ने कल्पना की 23 तारीख शाम को उनको फांसी हुई, किस निर्ममता से फांसी ही नहीं काटा गया। और फिर अखबारों में छपती है ये खबर, 25 मार्च 1931 को सुबह सुबह एक अखबार वाला अखबार बेचक गड़िया में रूप के मारा। सुबह सुबह अखबार बेचने से ज्यादा उसके दिल में ये संताप था कि भारत के तीन लाल मार दिए। रो रो कर अखबार बांटे गलियों में, उसकी एक आंख से आंसू थम नहीं रहा था और गुस्से में एक आंख से आंसू निकल नहीं रहा था। वो क्या कहता है, रुक के मार मार के उसका अखबार बेचना, उसका संताप अखबार बेचने के अपने लालच से 100 कोस दूर था। वो क्या कहता गलियों में फिर रहा है, सुनिए एक रचना आपके सामने, शहीदों के खून से रंगी हुई, सुनिए।

मारी लुटगी अठ मासी रे रूल तोड़ के है एक दिन पहला आ तोड़ दिए वे फांसी रे रूल तोड़ के कौन अरे तेरी मूर्ति तेरी वेणी वे तेरी देव तारे पीतू राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हिंद के दुलारे पीतू अरे रस्से से गल घोट दिए जो शेर से ललकारे पीतू रस्से से घोट दिए करे कसाई

फिर के करया और फांसी ना करे वे तो काटे डांगर ढोर से और फिर गाड़ी में भर के बोरिया मल्ला दला टोकरिया मल्ला दला गाड़ी में डाल के और लाहौर की सेंट्रल जेल से अंतिम यात्रा वहां से निकाली जहां से जेल का मल मूत्र ढोया जाता था उधर से गाड़ी गई। फिर वो हलचल मची थी जब ये फांसी पचड़ इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और उनके जवाब में कैदियों ने पूरी जेल को हिला दिया था तो ये बाहर तक गई गूंज। तो भगत सिंह की बहन अमर कौर भगत सिंह का सारा परिवार वहां पे था बोली माँ के मन के मैं होली आशा है और कदे ना इब्बत तोड़ दियो हूं फांसी। बोला ना बेटा अंग्रेज कानून के पक्के हैं तड़के ही तोड़े गरीब ना तोड़े। बोला ना ना ना देख गाड़ी जाती भी देखी है क्या नजर अगली बार।

टुकड़े कर दिए टुकड़े कर दिए बोरे भर दिए लथ पथ मास पासली हाडी मल मूत्र जा भजी सर रस्ते से कुस गेट ते काटी काटी कैदी चंगाड़े और हो गे खाड़े बाहर भी हो कार ठाटी कैदी चंगाड़े

Don't you go to

कर दिए बोरे भर दिए लथपथ मांस पासली हड्डी मल मूत्र जा जिस रस्ते से उसे गेट पे गाड़ी गाड़ी कैदी चंगाड़े हो गए रखाड़े बाहर भी होकार ठाडी फिर सरकारी गुर्गे वे डर गए रम मर गए चलो बचा लो जान जा फिरोजपुर हुसैनी वाला गड मट गेरे मूल्यवान रे आओ लाल मेरी गोदी में वह सतलुज रोई बेअनुमान सतलुज में गेर दिए वे आधे भून भान के वे आधे जलाए आधे बगाए अंधेरे को काए मोर से सुन लो जी गौर से पढ़ लो जी गौर से गाड़ी गई उधर से वो कार्रवाई रच दी उन जालिमों ने तो भगत सिंह की बहन अमर कौर और उनके साथी जयदेव गुप्ता गाड़ी जाली है कुछ हो लिया है जिसका जो साधन था उधर गाड़ी का पीछा करने के लिए भाग लिए अंधेरे में और वो मांस के टुकड़े किते किते पाए गाड़ी वाले तो भाज गए कर करा गए और वो खून की मिट्टी जहां पाई वही विरासत समझ के अपने सीने से लगा ली और फिर अपने ढंग से उनका अंतिम संस्कार करने के लिए रावी तट पे चल पड़ता है काफिला।

बढ़ी नेहरू जी भी चक्कर खा गए देख के मारा ए दुख की आंधी दिल्ली के स्टेशन पर सुबह के रोवे मालवीय गांधी दिल्ली के अरे शहादत की पर ले छिड़गी हो फिर शहादत की पर ले छिड़गी बदले बूढ़े के डोर से सुनी लो।

पांच कर लिया है, क्या होया? फिर उनकी शहादत की परले छिड़की, हिंदुस्तान में इतनी उथल पुथल माच गई, वे मार दिए रहे, तीनों जने मार दिए रहे हिंद के लाल। तो गांधी, नेहरू और मालवीय जी दिल्ली के स्टेशन पर थे, उनने खबर पहुंची तो वे भी सदमा खा गए। और भगत सिंह के गांव बंगा से खून से लिखी चिट्ठी आई, अपने लाल का एनडी बदला लेकर दिखावांगे पूरे हिंदुस्तान में, इसके विरोध में क्या क्या हलचल होने लगी, के तूफान माचा। सुनिए, धरती अंब

अरे जी कर जनू मर जाऊं मैं टक्कर मार सरकार में पड़ जासे जी चल जासे जब देखूं सू अखबार में पैसे ना होते ले जाओ।

क्यों याद करे जा रहे हैं लास्ट कली जी बस वेत अर्पित सबरी समर्पित करके अरे अर्पित सबरी समर्पित करके सच्चे संत पर

इसीलिए मारे नेता है जनता के। क्या सीखना उसे? अरे भगत सिंह से सीखना है के, अरे भगत सिंह से सीखना है के, भगत बनेंगे सी बनेंगे, राज का गुरु कहाँ छिपा है, ढूंढेंगे और चाल गिनेंगे, सुख देवन कोई देव ना आवे, और अपने मोर्चे आप तनेंगे, सुख देवन कोई देव ना आवे, अपने मोर्चे आप तने, राजेश दलाल तू काई सधार हो, राजेश दलाल तू काई सधार के, अल्लाह बोले जा जोर से।

0: जाए।
1: क्या विचार किया कि उदल को मरवा के राजा परमाल का खजाना लुटवा करके चैन लूंगा। यही विचार करके माहिल प्रस्थान कर देते हैं महोबा की ओर और जब महोबा पहुंचे तब राजा परमाल से कहते हैं, महाराज सुनो, नीके घोड़ा नाम

जइबे हम होबे का चाहे कोटिन करो मालिन ने जवाब दिया और कहा तुम्हारी मति मारी गई है, मैं रंग महल को प्रस्थान नहीं करूंगी। जवाब दिया वो दल ने मालिन से कहा कि सुनो हार गूंथ

0: आभास लेने के लिए मालन वहां से प्रस्थान कर देती है और इधर उदल क्या कर रहे हैं। रानी फुलवा के लिए हार गूथ रहे हैं, कैसे
1: हार

0: उदल ने कहा मालन से भौजी सुनो हार गूथ डलिया माँ धर दिया तुम फुलवा कर दिया पहिराए लई के डलिया मालिन चली भेज मबना राख्यो देर
1: लगाए।
0: और जब महल में पहुंची फुलवा को हार पिन्हाया तब क्या हुआ सजनों ध्यान दीजिएगा कि

0: सजनों, आज उदल ने जवाब दिया फुलवा से, कहा कि सुनो धीरज रखो, हमारे यहाँ महोबा में राजा परमाल है, चंद्रावली बेटी राजा के हर बैठे संग हुआ पर जाए, और ऊंच नीच का हम ना जाने, तुम का साच रहिन बतलाए। आज उदल जो महोबा का योद्धा है, रानी फुलवा से मिलने के लिए अपनी नाम तक छिदवा डाली। और उधर सजनों, जब एक बार किसी से गलती हो जाती है तब दोबारा सुधार हो जाता है। तभी तो कहते हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही मंदिरों में पूजा करने नहीं जाते, क्योंकि आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है।
1: क्या बात है।
0: आज की शाम आपको बहुत सारे कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। सुनिए आला गायन में क्या होता है। सजनों, कहा गया सितारों की महफिल को महफूज रखना, बड़ी दूर तक है बड़ी रात होगी, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। लेकिन तब तक के लिए आला सुनेगा होता क्या है। आज उदल ने जवाब दिया रानी फुलवा से, कहा सुनो हम महाराजा की बेटी के साथ में बैठे हैं, हमें ऊंच नीच का मालूम नहीं है। उदल की ये बातें सुन करके रानी फुलवा ने जवाब दिया और कहा कि सुनो चियारे कर रे हाथ तुम्हारे लागे, इतना हम का दियो बताए। उदल वाले वही बेरियामा फुलवा सुन लियो कान
1: लगाए,
0: कि रखीन नौकरी जाए दूसरे के, तुम का साफर है न बदलाए, हमारी जो तुम मानो तुम ते साच रहे न बदलाए। या ऐसी फलवा

0: क्या हुआ? जवाब दिया उदल ने और फुलवा से कहा कि सुनो, नाम हमारा बघबूदल है, अरे तुम का सांच रहन बतलाए, और नगर महोबा गाँव हमारा, हम हैं देश राज के
1: लाल।
0: तुम्हारे से मिलने के लिए हमने नारी का भेष बना लिया। उदल का नाम जैसे फुलवा ने सुना, सज्जनों उस समय जानते हो फुलवा ने क्या किया? जोरी गदोरिया फुलवा बोले, हरे बालम सुनो उदय चंद्राए, अब भले आए गो तुम नरवली माँ, हम ते लीजे ब्याहू
1: कराए।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम तुमसे विवाह रचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जवाब दिया फुलवा ने उदल से कहा कि सुनो, या तुम विवाह रचाने के लिए नहीं आए हो तो मुझसे वादा करो, यहाँ पर क्यों आए हो? जवाब दिया उदल ने, तुम का द्याखन कायन रहे, सुन लियो बात हमारी आए, हजोरी गदरिया बोले फुलवा, हम संग भवरी लियो
1: डराए।
0: तब जवाब में उदल कहते हैं फुलवा से।

बोले गड़म्मा भारी तो पतियो दगवाए या खबर लागी गए नरपति सिंह का या पनी भौज किया तैयार या पढ़ के चाप दिया नरपति ने वो महोबा के वीर जवान या कह कि मैया ने बर पूजा कह के पिता रहे ये दवार या कह कि दे ही है बर

0: जवाब दिया उदल ने और राजा नरपत सिंह ने कहा कि सुनो, क्या हम तुम्हारी धमकी से डर जाएंगे जो रणभूमि के क्षेत्र में मुझे धमकाने के लिए आ गए। डोला दई दोन निज बिटिया का नहीं अनमंत जोग हो जाए। ईट न रही है नरवल गढ़ मा और नरवल खोदी करा दूं
1: ताले।
0: ऐसी अबानी में राजा हवाले सुन लो बात बना फरराए। डोला दिया बहना बिटिया का चाहे कोटिन करो
1: उपाय।
0: जवाब दिया उदल ने और कहा कि सुनो, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो जिंदगी भी क्या जो दमदार नहीं होती, वो तलवार भी क्या जिसमें धार नहीं होती। जमाना लाख बने रुकावट, हिम्मत भरे लोगों की कभी
1: हार नहीं होती।
0: तुम्हारी बेटी का डोला तो हम लेके रहेंगे। चीर बातन बातन पतकर

यबानी मराजा बालय मोरण बाघ बोलवना मारी भगा।

या ऐसी बहानिया राज हवाले मान हवेंदल के सवार या लड़का दिया खाना महोबे माना फलदान चढ़ावा जाए या जदने या जो महोबे

या नरवली वाले हजीन कह बेड़ी बहाए तलवार और हालु बता दे महुबे वारिने हजीन कह गति बरनी ना किस तरह नरवल कड़ के मैदान में यो दो राय सजनों ध्यान।

0: समझाए।
1: उदल ने नरपत सिंह के दंड बंधवा लिए और उस समय उदल ने नरपत सिंह से कहा, मारा सुनो कि अरे हारी लिख दो जब ही ना पे जब ना राखो देर लगाए, हारी लिख

ना के चढ़वैया बहु हर विदा लिहो करवाए या कागत बरन हम होबे मा महलन होन मंगला जाय या जैत लड़ाजी नर

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने रागिनी गायन और आल्हा गायन सुना। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत, देवता हैं आदित्यगण और छंद है त्रिष्टुप।
1: इमा

0: इत्येभ्यो घृतस्नुः सनाद्राजभ्यो जुह्वा जुहोमि। शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तु विजातो वरुणो दक्षो अंशः। तेजस्वी आदित्यगण के लिए जुहू पात्र द्वारा घृत का सिंचन करते हुए हम स्तुतियां करते हैं। मित्रदेव, अर्यमादेव, भगदेव, सर्वव्यापी वरुणदेव, दक्ष तथा अंश आदि देवगण हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। इमं स्तोमं सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषंत आदित्यासह शुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टाः। कुटिलता से रहित अनिंदित आचार वाले, हिंसा न करने वाले व हिंसित न होने वाले यशस्वी आदित्यगण तथा मित्र वरुण और अर्यमा देवगण हमारे स्नेह युक्त स्तोत्रों का आज श्रवण करें। त आदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्संतो भूर्यक्षाः। अन्तः पश्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राजभ्यः परमा चिदन्ति। महान गंभीर दमन करने में समर्थ दुष्टों को दंड देने वाले हजारों आँखों वाले आदित्य देव समस्त प्राणियों के अंतःकरण की कुटिलता व सज्जनता को देखते हैं। इनके लिए दूर में स्थित पदार्थ भी निकट ही हैं। धारयन्त आदित्यासो जगस्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपाः। दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्य मृतावानश्च यमाना ऋणानि। स्थावर जंगम सभी को धारण करते हुए ये आदित्यगण संपूर्ण संसार की रक्षा करते हैं। विशाल बुद्धि वाले ये देवगण सत्य मार्ग पर चलने वाले स्तोताओं के ऋणों को दूर करते तथा अन्न जल और धन की रक्षा करते हैं। विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदर्य मन भय आ चिन्मयोभु। युष्माकं मित्रा वरुणा प्रणीतौ परि श्वभ्रेव दुरितानि वृज्याम। हे आदित्यगण, किसी भी प्रकार का संकट आने पर हम आपका सुखदायी संरक्षण प्राप्त करें। हे अर्यमा मित्र तथा वरुण देवों, गड्ढे वाली ऊबड़ खाबड़ जमीन की भांति हम पाप कर्मों को छोड़ दें। सुगो ही वो अर्यमन मित्र पंथा अनृक्षरो वरुण साधुरस्ति। तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म। हे अर्यमा देव, मित्र देव तथा वरुण देव, आप हमें विघ्नों से रहित सरल तथा सुगमता से जाने योग्य मार्ग से ले चलें। हे आदित्यगण, आप हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कभी नष्ट न होने वाला सुख प्रदान करें। पिपर्तु नो अदिति राजपुत्राति द्वेषांस्यर्यमा सुगेभिः बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोपस्याम पुरुवीरा अरिष्टाः। हे तेजस्वी पुत्रों वाली अदिति तथा अर्यमा देव, हमें द्वेषकारी शत्रुओं को लांघकर जाने का सुगम मार्ग दिखाएं। हम मित्र देव तथा वरुण देव के संरक्षण में शत्रुओं से पीड़ित न होते हुए सुसंतति सहित महान सुख की प्राप्ति करें। तिस्रो भूमिर्धारयन् त्रिरुत द्युन त्रीणि व्रता विदथे अंतरेशाम रिते नादित्या महिवो महित्वं तदर्य यमन वरुण मित्र चारु। हे आदित्यगण, तीन भूमियों द्युलोक पृथ्वीलोक तथा अंतरिक्षलोक को तीन प्रकाशों अग्नि विद्युत और सूर्य सहित धारण करते हैं। ये सभी यज्ञीय व्रतों के पालक हैं। हे आदित्यगण, आप लोगों की महान सामर्थ्य यज्ञ पर ही आधारित है। हे मित्र वरुण और अर्यमा देवो, आपकी महानता सर्वश्रेष्ठ है। त्रिरोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुचयो धारपूताः अस्वप्नजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा रिजवे मर्त्याय। सुवर्णालंकारों से अलंकृत तेजवान परम पवित्र निद्रा रहित आंख न झपकाने वाले यशस्वी हिंसा रहित तथा मनुष्यों के हितकारी आदित्यगण तीनों दिव्य शक्तियों को धर्म मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के लिए धारण करते हैं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 27 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग ना करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, जय जय जय जय भारत जननी, शत सहस्त्र संस्कृति संगमनी, शत श्रुति शत गंधा शत रूपा, शत रस ओ शत परस अनूपा, शत शत शत शत दल संचारिणी, विंध्य हिमाचल शिखर विहारिणी, शत शत शस्य सुशोभित धरणी, खनिज भरित त्रिभुवन मनहरणी, जय जय जय जय भारत जननी, शत सहस्र संस्कृति संगमनी। देशभक्ति की एक भावनात्मक कल्पना रचनात्मक आधार पर करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को राजस्थान में जयपुर अजमेर रेलवे लाइन पर स्थित एक छोटे से गांव धनकिया में अपने नाना के घर पर हुआ था, जो वहां स्टेशन मास्टर थे। संयोग की बात है कि दीनदयाल जी के पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय भी मथुरा जिले में जलेसर रोड स्टेशन पर स्टेशन मास्टर थे। लगभग 7 वर्ष की आयु में ही वे अपने माता पिता की वात्सल्य छाया से वंचित हो गए। यहीं से उनके जीवन का संघर्ष भी आरंभ हो गया। उनका पालन पोषण उनके मामा राधा रमण जी शुक्ल के घर पर हुआ। बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन को ध्यान और कर्म में एकाग्र कर अध्ययन की सीढ़ियां चढ़ना आरंभ किया। अजमेर बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से उत्तीर्ण की। वे संपूर्ण बोर्ड में सर्वप्रथम आए थे। उन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इसके बाद इंटर की परीक्षा भी उन्होंने पिलानी से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और बाद में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनका कानपुर प्रवास ही उनके जीवन में सबसे बड़े परिवर्तन की पीठिका सिद्ध हुआ। यही उनका परिचय भाऊराव जी देवरस से हुआ, जिन्होंने दीनदयाल जी को राष्ट्र समर्पित जीवन जीने का मंत्र दिया, जिसे अंगीकार कर वे एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। इस तरह राष्ट्र ही उनका आराध्य हुआ, राष्ट्र ही चिंतन और राष्ट्र ही स्वप्न।

बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस दृढ़ संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। बीए करने के बाद उन्होंने आगरा के सेंट जॉन कॉलेज से अंग्रेजी में एमए करने के लिए प्रवेश लिया। पहला साल उत्तीर्ण करने के बाद वे अपनी बहन की बीमारी के कारण अध्ययन जारी नहीं रख सके। 1942 में वे लखीमपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नियुक्त हुए। यहां पर वे एक हाई स्कूल में निःशुल्क अध्यापन का कार्य भी करते थे। उनकी अद्वितीय प्रतिभा और व्यवहार कुशलता से प्रभावित होकर स्कूल के प्रबंधकों ने उन्हें प्रधान अध्यापक का पद देने की इच्छा प्रकट की, किंतु दीनदयाल जी ने विनम्रता से उसे अस्वीकार कर दिया। इस बीच दीनदयाल जी ने संघ शाखाओं के विस्तार का संगठन कार्य किया और समाचार पत्र तथा पुस्तक प्रकाशन का साहित्यिक कार्य भी सफलतापूर्वक किया। उन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त और जगतगुरु शंकराचार्य नामक दो प्रमुख पुस्तकें लिखीं। इसके अलावा राष्ट्रधर्म मासिक तथा पांचजन्य साप्ताहिक का कुशल संपादन भी किया। इस बीच राजनैतिक उथल-पुथल काफी तेज हो गई थी। ऐसे समय में दीनदयाल जी ने देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गंभीर सारयुक्त विचार मंथन किया। वे बचपन से ही संघर्ष में जुटे रहने के कारण कष्ट और सहिष्णुता के बल पर प्रगति करने के लिए संकल्पित थे। परिश्रम, त्याग और लगन उनके जीवन सूत्र बने। देश ही उनका सर्वस्व हुआ।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वभाव से अत्यंत सरल थे और आंतरिक रूप से बेहद ईमानदार। उनके जीवन का एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। एक बार पंडित जी रेल से यात्रा कर रहे थे। संयोगवश उसी ट्रेन में सर संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर भी यात्रा कर रहे थे, जिन्हें लोग सम्मान से गुरुजी कहकर पुकारते थे। गुरुजी को ज्ञात हुआ कि पंडित जी भी इसी ट्रेन में हैं, तो उन्होंने संदेश देकर उन्हें अपने पास बुलवा लिया। दीनदयाल जी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में गुरुजी के पास गए तथा एक घंटे उनसे विचार विमर्श कर वापस अपने तृतीय श्रेणी के डिब्बे में आए और टीटी से बोले, श्रीमान जी, मैंने एक घंटा द्वितीय श्रेणी में यात्रा की है, जबकि मेरे पास तृतीय श्रेणी का टिकट है। अतः एक घंटे का जो नियमानुसार किराया बनता हो वो आप ले लें। टीटी ने कहा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। पर दीनदयाल जी अपनी बात पर अडिग रहे। आखिर विवश होकर उसने अतिरिक्त राशि का टिकट बना दिया। स्टेशन आने पर जब सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित दिखे, तब टीटी को जानकारी मिली कि वे कोई और नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। हमारे देश के सिद्धांत, हमारे आदर्श, भारतवर्ष के सनातन जीवन मूल्य सिर्फ उनकी वाणी और विचार में नहीं थे, वे उनके जीवन व्यवहार में थे।

दीनदयाल जी कर्मयोगी के साथ साथ समाजसेवी कार्यकर्ता के रूप में सर्वत्यागी सन्यासी बन गए। वे गंभीरता से मनुष्य और राष्ट्र से संबंधित हर चिंता पर विचार किया करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य अनेक जन्मजात प्रवृत्तियों के समान ही देशभक्ति की भावना भी स्वभावतः प्राप्त करता है। कभी परिस्थिति या वातावरण के दबाव से ये भावनाएं छुप सकती हैं। इस प्रकार विकसित देश प्रेम के भाव से भरा व्यक्ति अपने कार्यकलाप की प्रेरणा अस्पष्ट या क्षीण भावना से नहीं, वरन अपने स्वप्न, अपनी कल्पना के अनुसार देश का निर्माण करने का स्वप्न रखता है। यदि ये स्वप्न एक होगा तो सभी देशभक्तों के लिए आदर्श भारत का स्वप्न भी एक होगा। उनका विचार था कि बुराई का वास्तविक कारण व्यवस्था नहीं, मनुष्य है। बुरा व्यक्ति अच्छी से अच्छी व्यवस्था में घुसकर उसे बीमार कर सकता है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था या परंपरा किसी न किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा ही शुरू की गई है। इसलिए हमारा ध्यान व्यक्ति की कर्तव्य भावना को जगाने पर केंद्रित होना चाहिए। हम पूंजीवाद और समाजवाद के चक्कर से मुक्त होकर मानववाद पर विचार करें। मानव जीवन के सारे पहलुओं का विचार कर आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन, वितरण और उपभोग के साधन और व्यवस्था बनाएं। वे कहते थे, राष्ट्रीय आय के बढ़ने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ना। वे गांधी जी के सिद्धांत को बहुत वजन देते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं विशाल उत्पादन चाहता हूं, किंतु विशाल जन समूह द्वारा उत्पादन चाहता हूं। धर्म के बारे में उनके विचार बहुत ही व्यापक और स्पष्ट थे। वो कहते थे, धर्म एक बहुत ही व्यापक विचार है जो समाज को बनाए रखने के सभी पहलुओं से संबंधित है। दीनदयाल जी हमारी स्वतंत्रता के विषय में अक्सर कहते कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है अगर वो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। महान राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिक चिंतक और मां भारती को अकुंठित प्रेम करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को 25 सितंबर 2016 उनकी जन्म शताब्दी पर हमारा शत शत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमने सोच लिया कि हम हो गए आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, तो हमारी लाइफ की जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एज में जाएं, हम सीखेंगे, सीखते ही रहेंगे।
1: जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की है यंग आर्टिस्ट से, जो अपनी अपनी फील्ड्स में काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं।

जिन कलाकारों से हमने बात की है वो हैं नेहा शर्मा, डॉक्टर स्वाति एम जैन और नेहा सैयद।

0: अब बिना देर किए सुनते हैं कार्यक्रम आमने सामने में इन कलाकारों से इनकी बात।
1: मेरा नाम डॉक्टर नेहा शर्मा है और मैं भोपाल से हूँ।
2: पेंटिंग की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में आप कैसे आईं? ये महज एक इत्तेफाक है या बचपन से आप चाहती थी आर्टिस्ट बनना?
1: मैं बचपन से पेंटिंग करती थी और धीरे धीरे उसको अपने एक कहते ना कि अपनी हॉबी में रखा उसको मैंने। फिर उसके बाद मैंने अपना MA ग्रेजुएशन और मेरा PhD भी ड्राइंग एंड पेंटिंग में ही किया, तो मैंने अपना पूरा फील्ड, पूरी चीज़ें अपनी अपने पेंटिंग में ही करी।
2: तो ये सब आपने भोपाल में किया?
1: जी हाँ।
2: तो ये आपका सफ़र कैसा रहा?
1: देखिए, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया क्योंकि देखा उन्होंने कि हाँ काम अच्छा है। फिर मैंने पहले तो इतना नहीं था पता कि इस फील्ड में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, है ना, अपना फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं। हमारे फील्ड में बहुत सारे कैंप होते हैं, तो पहले इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। पर जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी तब मुझे पता लगा कि इसमें कैंप भी हैं जिसमें ये लोग हमें इनवाइट करते हैं, पे भी करते हैं, हमें पेंटिंग बना के देनी होती है। तो धीरे धीरे करके फिर इस चीज़ में मैं अपने आप को मैंने आगे बढ़ाया और काफ़ी सारे कैंप भी किए हैं, एग्जीबिशन भी करी हैं, ये भारत भवन में हमारा ग्रुप शो।
2: पहली पेंटिंग आपकी कौन सी थी उसको थोड़ा सा याद कीजिए। और एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर देता हूँ, सब बदल गई दुनिया, सोशल नेटवर्किंग और मार्केटिंग है ना, उसको भी थोड़ा सा बताइए कितना चेंजेस आए।
1: चेंजेस तो काफ़ी सारे हैं। एक्चुअली क्या था, पहले हमें इतना पता नहीं था कि किस, पहले तो ये होता था कि हमने कोई चीज़ देखी उसे देख के ड्रॉ करते थे, और उसके बाद पता चला कि मतलब ये होता है कि आर्टिस्ट के मन की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने पेंटिंग में निकालते हैं। फिर जब धीरे धीरे सबके काम देखे तो समझ आया कि हाँ इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने काम को चेंज किया। फिर अभी मैं अपने, मेरे जो इष्ट हैं, मेरे नारायण, मैं उनके ऊपर काम कर रही हूँ। तो उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उन पे, उनको लेके और नारायण को लेके मैं पूरे पेंटिंग में आप देखेंगे ना कि मैंने पूरा लिखा हुआ है इसमें पेन से। तो मैं ऐसा मैंने काम शुरू किया। मैं जैसे हमारे भारत भवन में ही गए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे अखिलेश सर हैं, यूसुफ सर हैं, उसके अलावा जब यहाँ कैंप हुए थे विजय आचरेकर सर हुए, मनोज सर हुए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इन सब का काम देखा। और भी भोपाल के काफ़ी लोग हैं।
2: जो कलाकार होता है, जो वो जो सोचता है वो बनाता है, है ना। और एक ऐसा भी होता है कि जैसे कोई चीज़ हम सोसाइटी से, समाज से भी लेते हैं जो घटता है, क्या ऐसा भी होता है?
1: हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ही कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो बहुत सारे लोग उस इंसिडेंट को भी अपनी पेंटिंग्स में इंक्लूड करते हैं, तो ये तो होता है।
2: कोई नया इंसान जो नहीं जानता पेंटिंग को, जैसे कि मैं ही अगर देखूंगा तो जो समझने वाले होंगे वो अलग तरह से समझे, मैं शायद ना समझ पाऊँ। एक नया इंसान जो आके चले जाता है, कोई क्या गायन का हो, या थिएटर हो, या पेंटिंग हो, आप जब बनाती हैं तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है? मैं ये नहीं पूछूंगा 8 दिन में बनती है, महीने में बनती है, वो अलग अलग शायद डिपेंड करता हो, तो प्रोसीजर उसका क्या रहता है थोड़ा सा वो ज़रूर समझाइए। और एक कलाकार में क्या भावनाएँ आती हैं?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, थोड़ा सा हम मतलब अपने दिमाग में चीज़ें वो करते हैं ना, तो सबसे पहले उसको कॉपी में हम ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बनाना है, क्या इंक्लूड करना है। मतलब एक दो दिन तो आप ये मान लीजिए कि हम काम करते भी हैं तो भी हम अपने कॉपी में ही उसको और मेमोरी में जो भी आता है उसको ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद हम कैनवस पर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद फिर उन पर कलर्स लगाते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे फिर कलर करके फिर वो कंप्लीट हो जाता है। या फिर भी लगता है मतलब काम तो ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है या कुछ ना कुछ बनाना है, तो वो चीज़ तो रहती है, पर कंप्लीट ऐसे ही करा जाता है।

0: मैं डॉक्टर स्वाति एम जैन हूँ, भोपाल से ही हूँ। एक्चुअली मैं भोपाल की हूँ और मेरा पूरा बचपन और अभी तक सारा टाइम मेरा भोपाल में ही निकला है। भोपाल में मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तब मैं हमारे स्कूल में सर थे सचिदा नागदेव सर, उनका काम देखती थी। तब से मेरा बहुत मन था इस फील्ड में आने में, बट मैं साइंस स्टूडेंट थी तो 12th तक मेरा साइंस था। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने अपने फैमिली में कहा कि मुझे आर्ट की फील्ड में ही जाना है, मुझे साइंस वगैरह नहीं चाहिए। तो वैसे मेरा स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरे कॉलेज ख़त्म किया, एमए किया पीजी करने के बाद। और उस बीच में मतलब बाहर के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती रही, अवार्ड्स वगैरह मिलने लगे, तो थोड़ा सा और वो लगा कि हाँ चलो मुझे इस फील्ड में ही जाना है। तब से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक चल रहा है।
1: तो ये सफ़र तो आपने 30 सेकंड बता दिया, लेकिन कैसा रहा? काफ़ी चेंजेस जो आ गए हैं कि आपकी साइंस की फील्ड थी, फिर आर्ट में आओ तो रोजी रोटी का वो रहता है कि इसमें तो वो क्या आपके फेवर में इतनी सारी बातें हैं क्या?
0: नहीं, फेवर में तो क्या होता है कि लाइफ तो चलती रहती है, अलग अलग सब हर एक आर्टिस्ट की एक अलग जर्नी होती है। जैसे मेरे जर्नी की बात करें तो मैंने जब एमए किया उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया। मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया वो कर ही रही थी कि मेरा जॉब, हाँ जी वो मैंने भोपाल से किया, फिर मेरा जॉब लग गया। तो मैंने 2-2.5 साल पढ़ाया, उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब मेरा थोड़ा सा गैप हुआ। पहले तो सोचा था कि अब शादी हो गई तो अब ये करेंगे वो करेंगे, बट एक लंबा, हाँ एक ठहराव समझ लीजिए लगभग 10-11 साल का एक लंबा गैप आ गया। उस बीच में मैं अपना घर में काम करती रहती थी बट बाहर नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मेरा जॉब लगा। मैंने 5 ईयर्स जॉब किया, घर से बाहर निकलना था, लोगों से मिलना था, वो सब किया जी, सब भोपाल की बात है। तो वो किया, उसके बाद मुझे कहीं लगने लगा कि अब मुझे लोग जानने लगे हैं, फिर से पहचानने लगे हैं, बट मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। एक लाइफ हो गई कि घर और स्कूल, बस उसके अलावा कोई तीसरा कुछ नहीं था। तो मैंने अपना जॉब छोड़ा और फिर मैं पूरे की पूरी तरह से आर्ट की फील्ड में जी। कहीं ना कहीं मन में एक घुटन सी होने लगी थी कि मैं जो चीज़ चाह रही हूँ वो तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने अपना स्कूल का जॉब छोड़ा और उसके बाद फ्रीलांस करना शुरू किया और कर रही हूँ अभी भी। ऐसा नहीं है कि सफलता एकदम से मिलती है, कभी होता है कि हमारे कुछ काम किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते हैं, तो वो हमारे लिए बोल के भी जाते हैं, बट ये है कि हम उससे और नई चीज़ें सीखते हैं, हमें लगता है कि हाँ ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर हमने सोच लिया कि हम हो गए आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, तो हमारी लाइफ की जर्नी यहीं ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एज में जाएँ हम सीखेंगे, सीखते ही रहेंगे।
1: आपने कहा ना, एक बात मुझे याद आई, आपने कहा कि आपका जो काम रहता है, तो कभी ऐसा भी होता होगा जो काम आपको बहुत पसंद है वो लोगों की समझ में नहीं आता होगा? हाँ, और जो आपको कमज़ोर लगता है?
0: हाँ होता है, कई बार लगता है कि मुझे लगता है ये काम तो मेरा बहुत सबसे फेवरेट काम है, सब है, लेकिन सामने वाले को लगता है यार इसमें तो ये नहीं है वो नहीं है। और जो काम मैं डर रही होती हूँ लगाने में, हाँ, उसकी लोग तारीफ करते हैं, तो वो एक अलग फ़र्क पड़ जाता है सबकी, क्योंकि हर एक का नज़रिया अलग है, उनकी सोच अलग है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है।
1: जब आप शुरुआती दौर में और फिर इतने लंबे टाइम में, वो कौन से आर्टिस्ट थे, हाँ, जिनको आप देख रही थी, उनके काम को देखती थी, उनसे आप इंस्पायर होती थी, उन लोगों के नाम ज़रूर लीजिए।
0: हाँ जी, बेसिकली जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे लाइनिंग का काम बहुत पसंद है, बारीक काम, तो मैं मधुबनी आर्टिस्टों को देखती थी। मानव संग्रहालय में उनके वर्कशॉप्स होते थे, उस समय एक यशोदा देवी जी करके आए थे, तो उनका काम मैं देखती थी, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था। और लाइनिंग वाले काम में मुझे बहुत मज़ा आता है, जितना बारीक काम होगा उतना मज़ा आता है। तो उनको देखा, मधुबनी में थोड़ा काम किया, फिर उसको करते करते धीरे धीरे मैंने अपना एक स्टाइल निकाला, फिर मैंने अपना धीरे धीरे काम निकाला और काम करना शुरू किया।
1: अच्छा, तो वहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जो आपने एक पेंटिंग बनाई तो कितने दिन का, वैसे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक अपन बीच में लेके चलते हैं, तो पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, उन आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, और जब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, मतलब आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता?
0: देखिए, जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मेरे जो काम है उनमें आपको सब कामों में टेक्सचर का ज़रूर दिखेगा, मुझे टेक्सचर्स बहुत पसंद है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई काम बहुत जल्दी करना होता है तो हम उसे 3-4 दिन में भी ख़त्म करते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम है। अगर हमें कहीं एग्जीबिशन के लिए काम करना और ऐसा है कि अभी हमें तुरंत, हाँ तो वो उसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम रहता है।
1: टाइम अगर आप लोगों को बस चले तो आप आराम से करें।
0: हाँ, मैं तो फिर सोच सोच के, क्या होता है ना, कोई काम हम जब करते हैं तो फिर हम उसको बैठ के दूर से देखते भी हैं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या ठीक लग रहा है कि और क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही। कई बार होता है हमने कुछ बनाया बट हमको वो चीज़ बाद में अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको फिर से नए सिरे से करते हैं।
1: आज भी शायद आप, हो सकता है बदल गए लोगों की सोच कि इसमें पैसा नहीं होता, तो एक हॉबी है, एक साइड में लेके चलिए, तो ये क्या आपके साथ भी हुआ था? और इसमें क्या कुछ चेंजेस आए हैं क्या, खास करके सोशल नेटवर्किंग के ज़माने में?
0: हाँ नहीं, वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। खुद को भी कई बार लगने लगता है, ये फीलिंग आती है कि यार हम मतलब काम करते जा रहे हैं बट कुछ बिक नहीं रहा है, कुछ सेल नहीं हो रहा है और पैसा नहीं आ रहा। और ये फील्ड ऐसी है जिसमें खर्चा बहुत है, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए आपको खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो होता है कई बार, बट फिर कहीं मन में लगता है कि ठीक है, हो सकता है आज हमारा टाइम नहीं है, कल हमारा टाइम आएगा, जब हमारा टाइम आएगा तो हम उस चीज़ को और अच्छे से कर पाएंगे और शायद हमारा काम भी सेल होगा। तो वो चीज़ भी होता है कई बार दिमाग में आता है, बट हाँ जी बिल्कुल। लेकिन फिर लगता है कि अगर इस तरह से सोचते रहेंगे कि खाली सेल करना है तो हम अपना वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, तो फिर वो हो जाता है कि ठीक है चलो अभी हम कर अपना काम करते जाएंगे। बोलते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
1: जो नए लोग आना चाहते हैं इसमें जी, इस पेंटिंग की फील्ड में, उनसे आप क्या कहेंगी?
0: देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी आर्टिस्ट की फील्ड में आना चाहता है तो वो कम से कम एग्जीबिशंस में जाए, लोगों का काम देखे, जितना वो देखेगा उतना उसको सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और प्रैक्टिस, मतलब आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जल्दबाजी में आप चाहोगे कि आपको फेम मिल जाए और उसके पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि आपका काम बहुत अच्छे से हो रहा है, आपको लोग पूछ रहे हैं, बट जब लोग देखेंगे कि ये तो खाली सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, इनका काम में कुछ वो नहीं है, तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, आपका खुद का मन ही ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये है कि आप जितना लोगों को मिलोगे और जितने आर्टिस्टों का काम देखोगे, आपके दिमाग में उतने आइडियाज़ आएंगे और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सबसे मेन काम है कि आप देखो, जितना देखोगे उतना सीखोगे, वो चीज़ है।
1: एक क्वेश्चन रह गया था जो मेरे दिमाग में था, आर्ट जो है, चाहे वो सिंगिंग हो, थिएटर हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका होना चाहिए एक आर्टिस्ट। तो आप ऐसा समझती हैं क्या कि पेंटिंग करने के लिए आपको थोड़ा थिएटर भी हो, सिंगिंग?
0: तो बहुत ज़रूरी, वो क्या होता है ना, जब आप किसी आर्ट से जुड़ते हो तो आप दूसरे आर्ट से अपने आप ही जुड़ जाते हो। अगर आप पेंटिंग करते हो, आप उस समय म्यूज़िक सुनते हो तो आप म्यूज़िक की फील्ड से जुड़ जाते हो, आप थिएटर देखते हो, आप जैसे हम गैलरी में आते हैं और गैलरी में हमारे जैसे एग्जीबिशन और यहाँ पे वो भी आते हैं, प्ले वगैरह भी होते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो हम धीरे धीरे उनसे जुड़ते ही चले जाते हैं। मुझे यहाँ भारत भवन, जब से मैंने आना शुरू किया तो मुझे प्ले देखने का बहुत शौक हुआ है, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स, डांस के प्रोग्राम्स, तो उन सब फील्ड से हम अपने आप ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम उनको लेके काम भी करते हैं अपने काम में, हम वो चीज़ें भी।
1: अब ये जो ज़माना इतना बदल गया तेज़ी से AI, और उससे क्या कोई आप समझती कोई ख़तरा है या टेम्प्रेरी चीज़ है?
0: देखिए, ये तो है तो टेम्प्रेरी चीज़, और ये खतरा हमारे लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए खतरा है, क्योंकि वो आज तो AI से और कॉपी वर्क करके गूगल से ढूंढ के बना लेंगे, कर लेंगे, बट कल क्या? कल लोग बाग आजकल ये सारी चीज़ों से, जैसे वो देख के बना रहे हैं तो सामने वाला जो देखने आ रहा है उसे भी कि ये चीज़ वहाँ पे है, तो उसे समझ में आएगा, एक बार देखेगा, दो बार देखेगा, तीसरी बार में उसे समझ में आ जाएगा कि ये सारा कॉपी वर्क है, तो वो चीज़ धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी।
1: अच्छा, फिर वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएंगे जैसे आपने किया जी, क्योंकि कर ही नहीं सकते।
0: वो मेरे मन के अंदर का है, उसको सोच के मैंने बनाया है,
1: नॉलेज ही नहीं है
0: जी, बिल्कुल वो तो है, वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे उस चीज़।
1: चलिए, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगी नए बच्चों से?
0: नए बच्चों को यही बोलूँगी कि AI ये सब चीज़ें ठीक है, सर्च करो, देखना बहुत अच्छी बात है, बट उसको कॉपी मत करो। आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी फेम चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, वो ही नहीं, उसमें उनकी गलती नहीं, उनके पेरेंट्स की गलती है, वो खुद अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं कि वो एकदम से फेमस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप सबकी सुनो लेकिन करो अपनी मन की, और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना देखोगे, जितना सीखोगे, उतना ही वही चीज़ काम आएगी।
1: कि पॉसिबल है कि खाली कला के क्षेत्र से कमाई हो सके और रोजी रोटी चल जाए लोगों की, या ये साइड बाय साइड ही चलेगा?
0: देखिए, कई सब हर एक आर्टिस्ट के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो सिर्फ खाली कला से ही कमा रहे हैं और खा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो ये आर्टिस्ट की के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत पे भी थोड़ा तो है। आपको बिल्कुल है कि आपको आर्ट की फील्ड में डालना जाना ही है, तो आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि खाली आप पेंटिंग बना के एग्जीबिशन करके ही आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आर्ट की फील्ड में आजकल कमर्शियल आर्टिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग में भी आपका आर्ट का काम हो सकता है, ग्राफिक्स है, बहुत ऐसे काम है जिसमें आप अपने कला को यूज़ कर सकते हैं और कैरियर बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फ्रीलांस आर्टिस्ट बन के ये आप कर सकते हैं, आप अलग अलग उसमें
2: जाते हैं। हाँ,
0: आपको पता चलता है। पहले तो ये था कि बस आर्टिस्ट हो गए तो लोग पहले मना करते थे कि नहीं नहीं आर्ट की फील्ड में नहीं जाना, इसलिए क्योंकि बस उस समय यह था कि भाई सिर्फ आप पेंटिंग बना रहे हो और बेच रहे हो। बट आजकल बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं धीरे धीरे, तो बहुत सारे ऐसी हैं कि आप उसमें अपना काम कर सकते हैं।
1: ये आपने अच्छी बात बोली मैम, चलिए थैंक यू।

0: मेरा नाम नेहा सैयद है। मैं एक सेरेमिक आर्टिस्ट हूँ और सेरेमिक में सूफीज्म पे मैं काम करती हूँ।
1: मैं थोड़ा सा सेरेमिक का आपने जिक्र किया, तो सेरेमिक की फील्ड में आप कैसे आ गई?
0: मैं सीखकर तो अपने ग्वालियर से ही आई थी। मैंने
1: अच्छा
0: यहाँ के प्रैक्टिस स्टार्ट की
1: जी,
0: और मुझे गाइडेंस जरूर मिलता रहा सबका, तो उनके गाइडेंस में फिर मैंने नए नए ग्लेजेस एक्सप्लोर करे
1: जी
0: और बहुत सारी चीज़ें मैंने नई करने की कोशिश की जो कि ग्लेज में। फिर मैं बाहर भी बहुत सारी एग्जीबिशंस मैंने कर चुकी है बाहर, और पोटस मार्केट भी मैं कई बार ट्राई कर चुकी हूँ।
1: अच्छा, तो सेरेमिक आर्टिस्ट लोग तो नहीं समझते क्या है?
0: सेरेमिक उनको ऐसे बताना पड़ता है, जैसे बहुत से लोग तो जानते हैं कि सेरेमिक क्या होता है, जैसे कई लोगों को नहीं पता होता तो उनको बताना पड़ता है। चीनी मिट्टी जो होती है उसका ही एक रूप है ये, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर है, तो इस तरह से मैं उन्हें बताती हूँ। और मेरी जो बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड, वो आर्टिस्ट का ही रहा है। तो मेरे नाना जी इंग्लैंड में रहे थे कई साल, तो उनको आर्ट फील्ड बहुत पसंद आती थी वहाँ पे, स्कल्पचर्स वगैरह जो देखते थे। तो उनका कहना था कि एक भी कोई बच्चा है वो कुछ आर्ट में करे। तो जो पहले हम लोग टेराकोटा मिट्टी से कुछ भी बनाते रहते थे, तो फिर पापा को लगा कि ये लड़की कुछ कर
1: अब
0: सकती
1: वही
0: है
1: चीज
0: आगे।
1: आपने कहा कि
0: हाँ
1: ये तो गॉड गिफ्टेड चीज है,
0: हाँ
1: कोई भी तो कर नहीं सकता।
0: तो बचपन से जब मैंने कुछ मिट्टी में बनाया तो मुझे कई अवार्ड स्कूल टाइम में लगे, और 12th में भी मुझे कई अवार्ड मिले, पेंटिंग में भी मिले। तो मैं पेंटिंग भी करती थी और स्कल्पचर भी। फिर मैंने स्कल्पचर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, तो मैंने ग्रेजुएशन स्कल्पचर से किया। उसके बाद मैंने उसमें सोचा कि मैं क्या मीडियम ले सकती हूँ, क्योंकि स्टोन पे जब मैं काम करती थी तो मेरे पूरे हाथ छिल जाते थे। फिर मैंने सेरेमिक लिया कि मैं क्ले में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ, तो मैं सेरेमिक पे और अच्छे से कर सकती हूँ। एक्चुअली क्या है कि सेरेमिक में जब मैं सूफी बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, वो अपने आप उसका जब आप फेस देखेंगे तो पूरा खुद से एक्सप्रेस हो जाए। मुझे कुछ अलग से बताने की या दिखाने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं ये चाहती हूँ। तो मैं उसके जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं पूरे इस तरह से बनाती हूँ कि लोग देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि ये पूरा ऊपर खोया हुआ है।
1: ये बनता कैसा है?
0: सेरेमिक तो देखिए एक तरह की क्ले है, तो क्ले को मैं किसी भी चीज़ का सांचा, या मैं टूल्स भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर अपनी फिंगर्स से ही पूरा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मैं फिंगर्स का ही यूज़ करती हूँ, और उसी से उसका शेप वगैरह और नीचे का जो स्कर्ट होता है उसका पूरा फॉल वगैरह मैं पेपर के थ्रू देती हूँ कि उससे उसमें अच्छे से फॉल आ जाए। और जैसे मैंने ये मोबाइल बनाया, बुक्स बनाई, तो ये भी सारी फ्री हैंड है, मैंने कोई मोल्ड वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। और बनने के बाद में हम एक फायरिंग करते हैं जो 800 टेम्परेचर तक जाती है, उसके बाद थोड़ा सा मजबूती आ जाती है उसमें। उसके बाद में फिर हम इस पर ग्लेज करते हैं जो भी कलर्स मुझे करना होता है, फिर हम दोबारा से इसको फायर करते हैं। उसमें लगते हैं 8 से 10 घंटे, तो वो 1200 टेम्परेचर तक जाता है। उसके बाद में उसमें जो चमक आती है, जो इफेक्ट आता है, उसके बाद में आता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। तो उसमें वो प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और
1: नहीं,
0: उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है।

आज के इस कार्यक्रम आमने सामने में आप सुन रहे थे युवा कलाकारों से बातचीत। हमें उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ठंडे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित भवानी प्रसाद मिश्र।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वागर्थ, और आज वागर्थ में बात होगी मुंशी प्रेमचंद जी की व्यंग रचना मोटे राम जी शास्त्री की। मुंशी प्रेमचंद के नाम और उनके साहित्य से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने भारत की जीवंत लोक संस्कृति को केंद्र में रखकर कई महत्वपूर्ण कहानियों और उपन्यासों की रचना की। उनका साहित्य हमारे जीवन के आसपास ही घूमता सा लगता है। मुंशी प्रेमचंद ने कुछ व्यंग्य भी लिखे जो बड़े ही चुटीले और विषय के ऊपर सीधे प्रहार से करते लगते थे। तो आज हम आपको वागर्थ में उनकी एक व्यंग रचना सुना रहे हैं, मोटे राम जी शास्त्री। ये व्यंग झोला छाप चिकित्सकों पर बेबाकी से टिप्पणी करता है।

0: पंडित मोटेराम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। वे अधिकारियों का रुख देखकर काम करते थे। स्वदेशी आंदोलनों के दिनों में उन्होंने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी उन्होंने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में उन्होंने एक नई तदबीर सोची। घर में जाकर धर्मपत्नी जी से बोले,
1: अरे इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है। अरे इतने दिनों विद्या दान करने का क्या फल मिला, जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं?
0: मोटेराम की धर्मपत्नी चिंतित होकर बोली, भोजनों का भी तो कोई सहारा चाहिए कि नहीं?
1: अरे तुम्हें जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है। कोई ऐसा बिरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो, और चाहे कोई निंदा करे या कुछ भी कहे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म भर पेट ही जलाया तो क्या किया। अरे भाई संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। सुनो, मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है।
0: वैद्य कैसे बनोगे? कुछ वैद्य की पढ़ी भी है तुमने?
1: अजी वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। दो चार सीधे साधे लटके हैं बस, और कुछ नहीं है। आज ही अपने नाम के आगे भिषकाचार्य बढ़ा लूंगा। अजी कौन पूछने आता है कि आप है कि नहीं, और किसी को क्या गरज पड़ी है कि जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड लगवा लूंगा, उस पे ये शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के रोगों की चिकित्सा की जाती है। दो चार पैसे का हड़ बहेड़ा आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए तो इतना सामान पर्याप्त है। हाँ, समाचार पत्र में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा, उसमें लंका मद्रास रंगून कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। वे मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे। हैं? अरे जनता को क्या पड़ी है कि वो इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते भी हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य कैसी चलती है।
0: लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी?
1: अरे फायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो मर नहीं जाते। मेरा तो कहना यह है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती, वे विकार शांत हो जाने पर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। वैद्यकों को बिना मांगे यश मिलता है। पांच रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश तो मुझे ही मिलेगा ना। शेष चार जो मर गए मेरी निंदा करने थोड़े ही आएंगे। देखो भाई, मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कभी तो बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा, उसमें जहाँ तहाँ दो चार कविता भी जोड़ दूंगा, और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने रोगी फंसते हैं। ये ना समझो कि मैं इतने दिन केवल बूढ़े तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सभी सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ, और इतने दिनों बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी, सोने से।
0: अब मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी, ना अब वो अभिलाषा ही है। पर ये तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती, फिर कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे और दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो तुम।
1: प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राखी भस्म है, रसायन है, बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियां बोतलें हों, इसके सिवा और कोई चीज दरकार नहीं। और सब कुछ बुद्धि अपने आप कर लेती है। मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है तो तुम जानती हो। आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पार पा सके। आखिर इतने दिनों तक घास नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कवि चर्चा के नाते ही मेरे आए जाए करेंगे, बस वही मेरे दलाल होंगे, उन्हीं की मार्फत मेरे पास रोगी आएंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नायिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्य की करूंगा। अरे तुम देखती तो जाओ।
2: पर मुझे तो डर लगता है कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न चले जाए, न इधर के रहोगे न उधर के। तुम्हारे भाग्य में तो बस लड़के पढ़ाना ही लिखा है, और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे।
1: तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता?
2: इसीलिए कि तुम वहां भी धूर्तता ही करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वो क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर न बन सके सिर्फ पटक पटक कर रह गए। तुम्हारी धूर्तता ही फलीभूत होती है और इसी से ही मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, निष्कपट जीवन व्यतीत करो, मगर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं।
1: आखिर मेरा नायिका ज्ञान कब काम आएगा?
2: किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 कवित्व सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मारेगा। वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो?
1: अरे मुझे ऐसे ऐसे गुर मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादाओं को भी नहीं पता होंगे।
2: अच्छा?
1: हाँ, और सभी वैद्य एक एक 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूंगा, 5 रुपए, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे ये कोई बहुत बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती?
2: इतनी देर में तुमने एक बात तो मतलब की कही।
1: क्या?
2: मगर एक बात समझ लो, यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा, किसी दूसरे शहर चलना पड़ेगा हमें।
1: अरे क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना, साल भर में वो धाक बांध दूंगा कि सारे वैद्य गर्द हो जाएंगे। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं, मैं रोगी को जांचे बिना उसकी चिकित्सा करूंगा ही नहीं। कहूंगा मैं जब तक रोग को भली भांति पहचान न लूं उसकी दवा नहीं कर सकता, नहीं तो दवा बेअसर रहेगी।
2: अब मैं तुम्हें मान गई, अब चलेगी तुम्हारी वैद्य की, और अब मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं रहा। साथ ही ये मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। और इसी तरह साल भर गुजर गया। भिष्काचार्य पंडित मोटेराम जी शास्त्री की लेखनी चल गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी गीत सुनाते, हंसाते और बल कारक औषधियां खिलाते, और जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह रहती उनकी तारीफ के वो पुल बांधते। साल भर में ही वैद्य जी का वो रंग जमा कि लखनऊ में वो ही एकमात्र विशेष चिकित्सक थे। विलासिनी विधवा रानियों और शौकीन रईसों में उनकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने वो समझते ही नहीं थे, मगर उनकी पत्नी उन्हें बराबर समझाया करती थी कि रानियों के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे। लेकिन भावी तो होकर ही रहता है, कोई लाख समझाए, पर पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस जीर्ण रोग से पीड़ित थीं। पंडित जी उनके यहां दिन में 5-5 बार जाते। रानी क्षण भर के लिए भी उन्हें अपने पास से हटने नहीं देना चाहती थीं। पंडित जी के पहुंचने में जरा भी देर हो जाती तो वो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य ही उनके दर पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब केंचुल बदली थी, तंजेब की अचकन पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता पहनते। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दन दनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर भी रखवा दिया। भला रानी साहिबा अपने मसीहा की बात कैसे टाल सकती थी। मगर चरखे जफाकार और ही षड्यंत्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे। कितने में कई आदमी सोटे हाथ में लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ले ली और किवाड़ अंदर से बंद कर लिया। पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगी। यूं तो पंडित जी भी दमखम वाले आदमी थे, एक गुप्ती हमेशा ही अपने साथ रखते थे, पर जब धोखे से कई आदमियों ने धर दबोचा तो भला वो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते तो कभी उसका। हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था, पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया नहीं आई। एक आदमी ने एक लात जमा कर कहा,
1: हाय हाय मर गए,
3: अरे इस दुष्ट की नाक काट दो,
4: इसके मुंह में काली और चूना लगा कर छोड़ दो।
1: अरे सरकार,
5: क्यों वैद्य जी, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओगे या मुंह में कालिख लगवाओगे?
1: हाय हाय मर गया, और चाहे जो कुछ करो नाक न काटो भाई।
4: अब तो फिर इधर नहीं आएगा।
1: बोल किर भी नहीं सरकार, हाय मर गया।
5: आज ही लखनऊ से रफूरेट हो जाओ, नहीं तो बुरा होगा।
1: सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की शपथ खाकर कहता हूँ, आप यहाँ मेरी सूरत न देखेंगे।
4: अच्छा भाई, सब कोई से पांच पांच लात लगाकर छोड़ दो।
1: अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो।
5: तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू हो जाओ।
2: पंच लत्ती पड़ने लगी, धमाधम की आवाजें आने लगी। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। पंचलत्ती पूजा समाप्त होने पर लोगों ने मोटे राम जी को घसीट कर बाहर निकाला और मोटर पर बैठा कर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दे दी गई कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते करहाते लकड़ी टेकते हुए घर में घुसे और धम्म से चार पाई पर गिर पड़े। तभी उनकी पत्नी ने उनसे पूछा,
6: क्या हुआ जी, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? हाय हाय, ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया?
1: हाय भगवान, मर गया।
6: कहाँ दर्द है? इसी मारे मैं कहती थी कि बहुत रबड़ी न खाओ, लवण भास कर ले आऊं तुम्हारे लिए।
1: हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी दुष्टा के कारण तो ये मेरी दुर्गति हुई। मारते मारते सबों ने भुरकुस निकाल दिया।
6: तुम ये कहो ना कि पिट कर आए हो। पिटे तो हो, अच्छा हुआ, हो तो तुम लातों के ही देवता। कहती थी कि रानी के हम मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते थे मेरी।
1: हाय हाय, अरे तुझे भी इसी दम कोसने की सूझी है। मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। हाय किसी से क्या कह, किसी से कह दे ठेला वेला ले आवे, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण नहीं बचेंगे।
6: नहीं नहीं, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी कुछ दिन और यहाँ की हवा खाओ। कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे तुम वहां पर। हाँ नहीं तो वैद्य बनने की सूझ गई, वैद्य बनूंगा मैं। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर नहीं भूलोगे तुम ये बात। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें मार पड़ रही थी तब रानी कहाँ थी? तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा भी नहीं की।
1: हाय हाय, अरे वो दुष्टा तो भाग गई, उसी के कारण क्या जानता था ये हाल होगा, नहीं तो उसका इलाज ही क्यों करता मैं।
6: वो तो तुम तकदीर के खोटे, कितनी अच्छी वैद्य की चल गई थी तुम्हारी, मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश मार दिया, सत्यानाश। आखिर फिर वही पढ़ोनी करनी पड़ेगी ना, तकदीर के खोटे हो तुम।
2: और प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर नहीं आता था। पंडित जी पड़े हुए कराह रहे थे।
1: भगवान मर गया।
2: और उनकी पत्नी सामान लदवा रही थी। अभी आप मुंशी प्रेमचंद जी की एक व्यंग रचना मोटे राम जी शास्त्री का वाचन सुन रहे थे। वाचन स्वर थे इलाशंकर गुहा, कंचन राजानी, जवाहरलाल शाह और अमित कुंदानी के। साउंड इंजीनियर अमित कुंदानी। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: ये इस कार्यक्रम का दूसरा भाग है।
1: मैं दरखास्त करूंगी कि हमारे जो नौजवान सिंगर हैं जान, उनको स्टेज में आने के लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इसको आशीर्वाद कीजिए।

मजा आ रहा है आप लोगों को, 90s के दीवाने सब यहाँ पे। कैसी सब हैंड्स?

साथ में गाएंगे। अब आप लोग गाइए साथ में। हाँ

थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 90s की बात ही अलग थी राइट। आप लोगों को 90s का कुछ और सुनना है, कुछ सुनाए? आवाज नहीं आ रही, ऊपर वालों की आवाज नहीं आ रही, कुछ सुनना है 90s का? अब नीचे वालों की बोलते, कुछ सुनना है 90s का? ओके लेट्स गो। और जिन जिन को ये गाना आता है प्लीज साथ में गाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर सामने काफी लोगों को देख रहा हूँ, ऐसे होठ हिला रहे, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है।

थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, इस नेक्स्ट गाने के लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं गाने में? हाँ, क्योंकि ये गाना मैं अकेले गाऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मैं आप सबके साथ गाऊंगा तो मज़ा आएगा, और मुझे चाहिए कि आप लोग भी इन्जॉय करें। तो सब अपने फ़ोन के टॉर्च लाइट पहले ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये माहौल हम बनाने वाले हैं कैसा। और ये गाना आप सब जानते हैं तो साथ में गाएंगे।

0: thank you so much. Thank you so much. And again, a huge round of applause because Kavita ma'am is back.
1: अभी अच्छा ये गीत गाने से पहले मैं अपने बहुत बहुत अच्छे में हमारे बॉम्बे के उम्दा आर्टिस्ट जो बहुत बढ़िया बहुत सालों से सबसे पहला जिनको मैं इंट्रोड्यूस करूँगी वो कम से कम 40-50 साल से तो लक्ष्मीकांत प्यारलाल के साथ हैं हमारे सुरेश यादव जी हवा हवाई हो खुदा गवाह हो सारे जो ओरिजिनल पीसेस इन्होंने बजाए हैं और हमारे यहाँ पे हैं चिराग पंचाल जी जो बहुत सालों से ये भी ये लोग सब आशा जी पता नहीं बहुत छोटे लता जी के साथ नहीं शायद बजाए होंगे बहुत कम उम्र सुरेश यू हैव प्लेड विद लता जी तो बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ बजाए हैं चिराग जी आप चिराग जी आशा जी के साथ बजा चुके हैं नहीं लता जी के साथ नहीं बहुत छोटे हैं आप है ना बहुत बाद में आए कोई बात नहीं उस और अमित भंवर जी हैं बहुत अच्छा ये भी बॉम्बे से और बहुत सालों से मेरे रिचर्ड मित्रा जी को जो गिटार में है इनको जानती हूँ मैं ये इतने छोटे थे जब मन्ना दा के साथ इन्होंने बजाना मतलब शुरू किया और तब मैं मन्ना दा के साथ ड्यूएट्स गाती थी हम लोग पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं मन्ना दा का ब्लेसिंग मिला और फिर जतिन ललित जी के असिस्टेंट रहे हैं और जतिन ललित के जो पीसेस सुनते हैं गिटार के पीसेस सब इन्होंने बजाए हैं और जो पीछे छुपे हुए हैं सुरेश अय्यर जी ये बहुत अच्छा बेस गिटार बजाते हैं प्रसाद कुलकर्णी राजा कुलकर्णी राजू जी सबके साथ और आजकल के नौजवान आर्टिस्ट सुनिधि चौहान सबके साथ बजा चुके हैं तो ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं मेरे साथ और उसके बाद हैं हमारे संतोष भुटाल जी और इनको कौन नहीं पहचानता आप बताइए गिरीश विश्वा जी को ये तो अभी वर्ल्ड फेमस हैं और ढोलक में क्या हाथ है इनका आप सुनेंगे आज भोले चूड़िया में आप इनका ढोलक में हाथ सुनेंगे बहुत अच्छा बजाते हैं और इनके जो अंकल थे इनके अंकल विजय इंदौरकर जी इंदौर के विजय इंदौरकर जी वो इनके अंकल हैं और वो विजय इंदौरकर जी रिचर्ड हम लोग सब मन्ना दा के साथ घूमते थे हाँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द यंग संकेत हम साथ प्रोग्राम्स करते रहे सो नाइस टू हैव यू ऑल थैंक यू साउंड में हमारे बॉम्बे के परीक्षित जी हैं तो ये जो आप गाना सुन रहे हैं म्यूजिशियंस को सुन रहे हैं हमको सुन रहे हैं इनकी मेहनत होती है और हम इनको तंग करते रहते हैं कि मॉनिटर्स में ये बढ़ाओ कीबोर्ड बढ़ाओ इसकी आवाज़ बढ़ाओ पर वो सुनते रहते हैं बेचारे हमारा काम करते रहते हैं और आपको भी खुश करते रहते हैं थैंक यू परीक्षित एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग

0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति और साथियों का गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं अध्ययन भवन में, जहां रंग फुलकारी नाट्य महोत्सव के तहत मंचन हुआ नाटक सावित्री बाई फूले का।
1: इसलिए हम औरतों से कह सकते हैं, औरतों बाहर आ जाओ और पढ़ना लिखना सीखो।
0: इस नाटक में एकल अभिनय और निर्देशन किया रेणुका बरमैया ने।
1: ऐसे ही हमारी पढ़ाई शुरू हो गई। अब तो सुगना ताई और मेरे बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी कि सबसे पहले कौन अच्छे से पाठ याद करेगा और सही तरीके से याद करेगा।
0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए अध्ययन भवन में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।
1: तभी अचानक मेरी पैंट की डाल टूट गई

तो दौड़ी आई, लेकिन साथ में पिताजी को भी बुला लिया और मेरी लटकती हुई मूरत दिखा के कहने लगी, गुण तो देखो तुम्हारी लाड़ी के, बिल्कुल कहना नहीं मानती है। पर मुझे लटकता देख के पिताजी जोर जोर से हंसने लगे और उन्होंने मुझे हंसते हुए उतार लिया। माँ का तो तारा सातवें आसमान पे चढ़ चुका था। मैंने कहा, पिताजी बचाओ। माँ कहती, सावित्री आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कितनी बार कहा है। माँ, नहीं माँ, अब नहीं करूंगी। सावित्री रुक जा, कहाँ जा रही है? आज तू पकड़ी गई ना तो बहुत मारूंगी तुझे। नहीं माँ, नहीं। आपकी माँ भी ऐसी डांटती रही होगी ना। सावित्री, सावित्री जी, पिताजी आई जी। पिताजी, बिस्किट के पैकेट तूने उठाए? नहीं पिताजी, मैंने नहीं उठाए। किताब उठाई? नहीं, मैंने नहीं उठाई। सच बोल रही है? तो कहाँ गए? सावित्री का ब्याह करेंगे। तो पुणे के गोविंद राव जी के सुपुत्र से ज्योतिबा राव से मेरा ब्याह पक्का हो गया। पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था मेरा ब्याह। बराती घराती कपड़ा लत्ता खरीदारी सब कुछ के लिए हलवाई कितने आएंगे। इन सब के साथ साथ मेरी सहेलियां मेरे साथ हंसी चिटोली करती थी। सावित्री, तेरा दूल्हा कैसा दिखता है? तूने अपने दूल्हे को देखा क्या? तूने कैसे देख लिया दूल्हा? तूने दूल्हे को देखते हैं क्या? मैं तो ये सोच रही हूँ मेरे दूल्हे को पेड़ पर छोड़ना आता होगा कि नहीं।
इंसान के लिए न्याय ही श्रेष्ठ है। ये कार्य मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर तुम दोनों ने पाठशाला नहीं छोड़ी तो घर छोड़ दो। सावित्री सामान बांध लो, हम अभी जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? ये घर परिवार, ये सुख संपत्ति, ये सुख सुविधा छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? अगर ये सब छोड़कर गए तो लोग हमसे मुंह मोड़ लेंगे, कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई हमसे बात नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। पिताजी देखिए, धैर्य से काम लीजिए, ऐसा निर्णय मत लीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, तुम्हें पाठशाला छोड़नी ही होगी। पिताजी पिताजी, समाज की एकता कम लोगों के अशिक्षित रहने से और ज्यादा लोगों के शिक्षित होने से नहीं टूटती। सावित्री सामान बांध लो,

तुम्हारी सेवा करते रहे, सलाह देते रहे, मदद करते रहे। मौत से सामना करने की हिम्मत भी उन्होंने ही दी थी मुझे। लेकिन अभी कुछ रोज से वो कुछ ज्यादा ही बीमार हो गए। वो भी सबकी तरफ ऐसे ही देखते हैं, कहते हैं मेरा अंतिम समय आ गया है। बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसीलिए तभी तभी कोई डॉक्टर को बुलाने बाहर गया। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके देखूं। डॉक्टर आए और अंदर चले गए। मेरी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे जिसपे छुट्टी के बाद मेरे साथ में संघर्ष में थे। पढ़ाने लिखाने से लेके सफल इंसान बनाने तक, पर ऐसे उनको देखने की हिम्मत नहीं थी।

खोना होगा। ये हाथ सबल बनने ही चाहिए। आपकी वजह से ही तो मैं आज सफल इंसान हूँ ज्योतिबा। उजाले के पीछे से देखते हुए दिखाई देते हैं आप। मैं आपके सारे कार्य करूंगी। हाँ, जैसा चाहते थे ना, जैसा कहते थे, मैं समस्त कार्य करूंगी आपके। हाँ,

0: 18वीं शताब्दी हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। पलासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके थे कि अवध, अयोध्या और नागपुर से लेकर कर्नाटक तक वे छल और बल के सहारे बहुत गहरे तक अपनी जड़ें जमाने की हर संभव कोशिश में जुट गए। उनकी ललचाई नजरें समृद्ध और शक्तिशाली मराठा शासन पर भी गड़ी हुई थी, लेकिन लगभग 3 दशकों तक फिरंगियों की हर चाल को अपनी चतुराई से जिस महान राजनीतिक कुशल प्रशासक और प्रखर नेता ने कदम कदम पर नाकाम किया, उसका नाम था बालाजी जनार्दन भानु, जिसे इतिहास नाना फडणवीस के नाम से जानता है। आज से लगभग 269 वर्ष पूर्व सन 1772 ईस्वी को नाना का जन्म हुआ। उनके पिता जनार्दन पंत मराठा शासन में फडणवीस के अत्यंत शक्तिशाली पद पर नियुक्त थे। 30 मार्च सन 1756 ईस्वी पेशवा बालाजी बाजीराव ने कोंकण पर चढ़ाई कर दी। अपनी विशाल सेना के साथ वे 14 वर्षीय बालाजी जनार्दन भानु को भी अपने साथ ले गए। इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध का ये प्रत्यक्ष अनुभव आगे चलकर नाना के बहुत काम आने वाला था। इन्हीं दिनों अचानक नाना के पिता जनार्दन पंत का निधन हो गया। फडणवीस का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता था। पेशवा ने फैसला किया,
1: हमारे फडणवीस जनार्दन पंत का निधन हो गया है और उसका एकमात्र पुत्र बालाजी जनार्दन भानु यानी हमारा प्यारा नाना अभी अल्प वयस्क है।
2: किंतु नियम के अनुसार फडणवीस का पद वंशानुगत होता है और नाना अभी कच्ची उम्र का बालक है।
1: लेकिन समझदारी और अपना दायित्व तो भली भांति निभाने में वो किसी वयस्क से कम नहीं है। कोंकण के युद्ध में हम उसके साहस और बुद्धि चातुर्य को स्वयं परख चुके हैं।
2: वैसे तो हम भी उसके हौसले के कायल हैं, उसकी होशियारी के कायल हैं, किंतु परंतु
1: में समय व्यर्थ करने से बेहतर है दिवंगत जनार्दन पंत के स्थान पर उनके पुत्र बालाजी जनार्दन भानु को पेशवाई के फडणवीस पद पर आसीन किया जाए। नाना
2: जी। श्रीमंत।
1: बेटे, कभी इस आसन पर तुम्हारे पिता बैठा करते थे, आज से फडणवीस के इस आसन पर उनके इस स्थान पर तुम बैठा करोगे। आज से तुम नाना फडणवीस के नाम से जाने जाओगे। हमें विश्वास है नाना, तुम ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाओगे।
0: पेशवा के विश्वास का मान रखते हुए नाना फडणवीस ने मराठा शासन की समृद्धि में अपना जबरदस्त योगदान देना आरंभ किया। साथ ही अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में भी नाना ने गहन रुचि लेना आरंभ कर दिया। यही कारण था कि पेशवा ने श्रीरंगपट्टम की ऐतिहासिक यात्रा में नाना को विशेष रूप से अपने साथ ले जाना आवश्यक समझा। श्रीरंगपट्टम से लौटे एक वर्ष भी ना बीता था कि नाना को गहरे संताप से गुजरना पड़ा। उनके इकलौते बेटे का अल्प अवस्था में निधन हो गया। विषम दुख से पार पाने के लिए नाना अपनी शोक संतप्त पत्नी और माता के साथ गोदावरी तट पर बसे पुण्य क्षेत्रों की यात्रा पर निकल पड़े।
3: नाना साहब, पेशवा ने मुझे आपके पास भेजा है। वे जानना चाहते हैं आपकी तीर्थ यात्रा कब तक पूर्ण हो जाएगी।
4: हमारी इच्छा यहाँ से गंगा जी की ओर जाने की है।
3: क्या यहाँ से गंगा जी? लेकिन पेशवा तो
4: क्या? पेशवा कुशल से तो है।
3: जी, पेशवा कुशल पूर्वक है नाना साहब, पर शायद आपको सूचना नहीं मिली, ईरान से अहमद शाह अब्दाली भारी फौज लेकर देश की उत्तरी सीमा तक आ पहुंचा है।
4: ओह!
3: और दिल्ली के मुगल बादशाह ने पेशवा से फौजी मदद मांगी। पेशवा अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के साथ आपको उस हमलावर से मोर्चा लेने पानीपत भेजना चाहते हैं। बताइए उन्हें क्या उत्तर दूं?
4: यही कि पेशवा की आज्ञा सरमाथे है, मातृभूमि की रक्षा का पुण्य किसी तीर्थ यात्रा के पुण्य से कम नहीं। मैं इसी घड़ी पेशवा से मिलने चल रहा हूँ, चलो।
0: सन 1761 के पानीपत युद्ध में सदाशिवराव भाऊ की मराठा सेना को भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसी वर्ष पेशवा बालाजी राव 24 जून को स्वर्ग सिधार गए। सतारा के राजा छत्रपति ने दिवंगत बालाजी के पुत्र माधव राव को विधिवत पेशवा घोषित किया और बालाजी राव के भाई रघुनाथ राव उर्फ
3: राघोबा को अव्यस्क माधव जी का संरक्षक बना दिया। राघोबा बेहद महत्वाकांक्षी था, वह स्वयं पेशवा की गद्दी पर आसीन होना चाह रहा था। वो तुरंत ही अपने इस अभियान में जुट गया।
5: पेशवा का पद संभालने वाले में योग्यता होनी चाहिए, राजकाज और सेना संचालन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। बोलो, मुझसे ज्यादा युद्ध का अनुभव माधवराव में है क्या? क्या सोचकर सतारा के छत्रपति ने माधवराव को पेशवा की गद्दी सौंप दी? क्या आप इतने विशाल मराठा साम्राज्य की बागडोर एक नौसिखिए नादान नासमझ बच्चे के हाथ में सौंपना उचित समझते हैं, जबकि ना उसे शासन के कामकाज की समझ है और ना युद्ध का रत्ती भर अनुभव? वाह, क्या खूब! इतनी विशाल, इतनी महान पेशवाई और उसका संचालन किसके हाथों में? एक 17 साल के मासूम माधवराव पेशवा और दूसरे कुल जमा 19 बरस के नाना फडणवीस के हाथों में। मराठा साम्राज्य ना हुआ, बच्चों का खेल हो गया।
3: रघुनाथ राव किसी भी कीमत पर पूना की गद्दी हथियारा चाहते थे, लेकिन उनकी इस इच्छा के आगे एक बड़ी रुकावट थे पेशवा माधवराव के बाल सखा और अत्यंत विश्वास पात्र नाना फडणवीस। दांव पेश भिड़ाकर नाना को फडणवीस के पद से हटा दिया गया, किंतु नए पेशवा माधवराव को जैसे ये सूचना मिली, उन्होंने पूरी सख्ती के साथ इस कार्रवाई को निरस्त करते हुए नाना को फिर से फडणवीस के पद पर नियुक्त कर दिया। इससे रघुनाथ राव तिलमिलाकर रह गए।
5: देखो, इसे कहते हैं लड़कपन। माधवराव ने बिना आगे पीछे सोचे केवल अपनी बचपन की दोस्ती निभाने के लिए हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उस कल के छोकरे नाना को फिर से फडणवीस बनाकर हमारे सर पे लाद दिया। बोलो, अब इसे क्या कहोगे? हाँ,
6: बचपना, जिद, बालहट और क्या।
5: मान गए हम तुमको नाना, ऊपर से मासूम और भीतर से इस कदर सयाना। यकीनन अपने बचपन की दोस्ती का वास्ता दे देकर, वफादारी और हमदर्दी का दम भर भर कर, और उससे भी ज्यादा मेरे उचित विरोध को बगावत का अनुचित रंग देकर इस नाना ने फिर से फडणवीसी हासिल कर ली है। और यही नहीं, पहले से कहीं ज्यादा अख्तियारात भी हासिल करने में कामयाब हो गया। ये चतुर चालाक नाना।
6: ज्यादा अख्तियारात मतलब?
5: पेशवा राज अब से सब आमदनी और खर्च की पूरी जांच पड़ताल वही करेगा।
6: बाप रे,
5: जितने घपले हुए हैं, जितने घोटाले हुए हैं, उन सब की नए सिरे से जांच करेगा, वो भी बहुत सख्ती से।
6: ये क्या हो रहा है राव साहब, इस तरह तो हम कहीं के ना रहेंगे।
5: कच्ची गोलियां नहीं खेली है हमने, बहुत भारी पड़ेगा नाना को हमारे मामले में टांग अड़ाना। छक्के ना छुड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी रघुनाथ राव नहीं।
7: अरे पेशवा बना है तो पेशवा की तरह व्यवहार भी तो करना सीखना चाहिए माधवराव को। इस तरह आंखें बंद कर कर पूरा पूरा विश्वास कर बैठना ना समझी है, नादानी, मूर्खता, बेवकूफी। अरे मैं कहता हूँ अब्बल दर्जे का गधा बना ही है।
6: क्या गजब करते हो राव साहेब, पेशवा को गधा कह रहे हो?
7: इस नाना फडणवीस के मारे आजकल दिमाग बहुत गड़बड़ाया रहता है। बताए हमारे भतीजे साहब माधवराव पेशवा उस नाना को फडणवीसी से ऊंचा ओहदा देने की फिक्र में है।
6: तो क्या उठाकर पंत प्रधान बना देंगे? हैं?
7: मत मारी गई है माधवराव की, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी। बताओ, हमारे सामने वो कल का छोकरा, वो हमारे देखते देखते फडणवीस बना दिया गया और हम मर गए थे क्या?
6: बताओ भाई, अब उसी नाना फडणवीस को पंत प्रधान बनाए दे रहे हैं। अरे आप क्या मर गए हो?
7: फिर बकवास।
3: और वास्तव में रघुनाथ राव की आशंका सही निकली। नाना फडणवीस के दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और अद्भुत कार्य कुशलता ने पेशवा माधव राव को पहले ही प्रभावित कर लिया था, और बाद में जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई, नाना फडणवीस ने उसे जिस कर्मठता से निभाया, इसे देखते हुए 10 वर्ष की अवधि में पेशवा ने उन्हें फडणवीस से पंत प्रधान यानी प्रधानमंत्री बना दिया। तो अंग्रेजों ने इसे अपने विस्तारवाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा।
0: मराठा साम्राज्य को किसी भी तरह कमजोर करने की तरकीबें अमल में लाने का सिलसिला शुरू हो गया।
8: एक तरीका तो वही है जो हम हमेशा यूज करता है। साउथ में हैदर अली भी हमारा दुश्मन होता, उधर में निजाम आपको हमारा साथ देता है। आई थिंक इन मराठास को कमजोर करने के लिए इन तीनों को आपस में लड़ा देते हैं।
9: हाँ, गुड आइडिया। ये तीनों का झगड़ा हो गया, वो इस पे अटैक करेगा और वो उस पे अटैक करेगा। और हम तीनों में से जो भी हमारा हेल्प मांगेगा उसका टेरिटरी में अपना फौज खुसेड़ेगा। मदद का बदला में हम ट्रीटी करेगा। एक बार हम जिसका टेरिटरी में घुस गया तो वहां से बाहर नहीं जाएगा, वहीं जम जाएगा।
8: हमारा मैन पॉलिसी यही होता। यू सी दोज मराठास, निजाम एंड हैदर अली, ऑल दीज थ्री आर बिग पावर्स। अगर ये तीनों कभी यूनाइट हो गया तो साउथ से हमको उकार फेंकेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टिक टू दिस पॉलिसी। तीनों को आपस में बिड़ाते रहो, एक को दूसरा का खेला बड़काते रहो। कभी इसका कंडा पे हाथ रखो, कभी उसके कंडा पे।
9: यस,
8: तीनों आपस में फाइट काटा काटा एक दिन जरूर कमजोर हो जाएगा। हम उसका कमजोरी का फायदा उठाएगा और तीनों पर कब्जा कर लेगा।
9: यस, वेरी गुड आइडिया। और हमको वेस्टर्न कोस्ट में अपना अड्डा मजबूत करने को मांगता है।
8: यस,
9: मराठास के पास में शास्ती का आइलैंड है, वो सही का एरिया है एंड गुजरात का बहुत बड़ा एरिया है। कोई बहाना से हम मराठास को फंसाना मांगता, उनको कोई ट्रीटी में उलझाना मांगता, फिर बदला में 18 एरिया कैसा भी तरीका से अपने कब्जे में करने को।
8: आई अग्री। एक और बात, ये मराठा बहुत एम्बिशियस लोग हैं। दे वांट टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी। ये लोग अपने टेरिटरी को बढ़ाना मांगता है।
9: Oh yes, earlier they attacked Bengal, and only few years back, they captured the whole Punjab region by defeating the Afghans. I think इसको अब दूसरा रीजन की तरफ बढ़ने से रोकना मांगता, इसको अपने ही रीजन में फंसा देना मांगता।
8: Yes, उसका वास्ते हमको मराठास में फूट डालना मांगता, मराठास को आपस में लड़वाना मांगता।
9: Oh, don't worry. I have an idea. Madhurao Peshwa ka ek uncle hai, Raghuba. Raghuba is damn ambitious to become Peshwa himself. I am sure we can use this Raghuba as our secret agent in Maratha's stronghold. This Raghuba is the man who chased the Afghans from Indian territories.
8: I see. Bahadur hai.
9: और दगाबाज भी है। His lust for power knows no end.
8: Good, very good. हमारा वास्ते बहुत सही आदमी है।
0: और अंग्रेज अपने इरादों में कामयाब रहे। राघोबा से उनकी सांठगांठ हो गई। योजना के मुताबिक राघोबा ने अपना पांसा फेंका।
5: मुझे इस बात की पक्की खबर मिली है कि निजामुल मुल्क हम पर जोरदार हमले की तैयारी कर रहा है।
10: निजामुल मुल्क? नाना, राघोबा काका क्या कह रहे हैं? सुना तुमने?
4: हमले की मुझे तो कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। हो सकता है राघोबा को किसी ने गलत सूचना दे दी हो।
5: गलत सूचना? और मुझे देगा? मेरा अपना विश्वास पात्र आदमी, मुझे तो इसकी कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। और तुम क्या समझते हो नाना, मैं हर किसी की बातों में आ जाऊंगा? बेबुनियाद बातों पर पेशवा से चर्चा करने बैठ जाऊंगा? देखो नाना, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मोर्चों पर पेशवा राज के दुश्मनों को शिकस्त दे चुका हूं मैं। और जितनी आप दोनों की उम्र है, कुल मिलाकर उससे कहीं ज्यादा बरस बिता चुका हूं पेशवा सेना में, और वो भी एक सेनापति की हैसियत से। स्वर्गवासी बालाजी बाजीराव पेशवा ने बड़े विश्वास के साथ मुझे पंजाब फतह करने भेजा था। इसलिए नहीं कि मैं उनका सगा भाई था, बल्कि इसलिए कि उन्हें मेरी उस क्षमता पर पूरा भरोसा था जो दुश्मन की हर हलचल को हवा के रुख देखकर ही भाप लेता था। मैंने भी उनके भरोसे को कभी झुटलाया नहीं, हर बार सच करके दिखाया। खूंखार अफगानों की तूफानी चाल से बढ़ती बेशुमार फौज को अपनी उसी क्षमताओं के बल पर पंजाब की धरती से उखाड़ कर फेंक दिया। पंजाब को इस महान पेशवा राज का एक हिस्सा भी बना दिया। कितने दुख की बात है कि जिस पेशवाई की खातिर मैंने कभी अपनी जान को जान ना समझा, आज उसी पेशवाई के हाथों मेरी सारी क्षमताओं, अनुभवों, वफादारियों को इस कदर सरसरी तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है और सिरे से खारिज भी किया जा रहा है।
1: राघोबा काका, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है।
5: तो फिर कैसा है आखिर? क्या मैं अकारण ही निजाम पर हमले का आरोप लगा रहा हूं? क्या बिना किसी ठोस वजह से पेशवा राज को युद्ध की आग में धकेलना चाहता हूं मैं?
1: नहीं, ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा काका साहेब। हमें आपकी निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है।
5: है ना? तो फिर जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुंबई में अंग्रेज गवर्नर जनरल से तुरंत संधि कर लो।
4: संधि? कैसी संधि और भला क्यों?
5: इसलिए कि निजाम की ताकत बहुत बड़ी है। संधि करने पर अंग्रेजों से हमें पूरी फौजी मदद मिल जाएगी।
4: और बदले में क्या देना होगा उन्हें?
5: कुछ ज्यादा नहीं, केवल वसई और शास्त्री के इलाके।
3: और राघोबा के इस तरह जोर देने पर पेशवा माधवराव को अंग्रेजों से संधि करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ना तो निजाम हमला करने वाला था और ना संधि की शर्तें पूरी होने वाली थी। बहरहाल इस बिला वजह की संधि का एक बुरा नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को पेशवा के दरबार में घुसपैठ करने का मौका मिल गया। पेशवा दरबार की एक एक खामी और खूबी से वे भली भांति परिचित हो गए। राघोबा के रूप में उन्हें घर का एक भेदी मिल ही चुका था। इसी मोहरे को आगे कर राजनीति की बिसात पर अगली चाल चली गई। पेशवा दरबार में फूट के बीच बोने में अंग्रेज इस हद तक कामयाब हो गए कि पेशवा माधुराव अपने काका राघोबा की हरकतों से बेहद तंग आ गया। मजबूर होकर उसने राघोबा को कैद करवा डाला, लेकिन जल्द ही राघोबा फिर मुक्त कर दिया गया। 18 नवंबर सन 1772। रहस्यमय परिस्थितियों में 28 वर्षीय पेशवा माधोराव की मृत्यु हो गई। विशाल वटवृक्ष की भांति फैले हुए पेशवा साम्राज्य की जड़ें मानो हिल गई। माधोराव की कोई संतान नहीं थी। मृत्यु से पहले उसने अपने छोटे भाई नारायण राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और राघोबा से प्रार्थना की कि नए पेशवा के रूप में नारायण राव की हर संभव सहायता करे।
9: वेल राघोबा, अब तुम नारायण राव का घरचन बन गया। पहले माधोराव रूल किया, अब नारायण राव रूल करेगा और तुम एक के बाद एक इन लोगों का खिदमत करेगा। इट्स सो सैड।
7: आपने सही फरमाया। कल के छोकरे जो मेरे सामने नंगे घूमते थे, एक के बाद एक पेशवा की गद्दी पर बैठे जा रहे हैं और मैं वो राघोबा जिसकी बदौलत पेशवा सल्तनत पूना से पंजाब तक फैल गई और मैं हर बार महज इन छोकरों का सरपरस्त बनकर रह गया। नहीं, यह अपमान अब मैं और नहीं सहूंगा। पेशवा की गद्दी पर अब मैं ही बैठूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हर कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूं।
9: ओह यस, तुम सरीका बहादुर, तुम सरीका क्लेवर होशियार आदमी। पेशवा का गद्दी पर सबसे ज्यादा तुम्हारा हक बनता है राघोबा।
7: और अपना वो हक मैं लेकर रहूंगा। बस आप लोग मेरी मदद करते रहिए, फिर देखिए ये रघुनाथ राव क्या गुल खिलाता है।
3: और वाकई पेशवा पद की हवस में राघोबा ने बड़ा भयानक गुल खिला डाला। मासूम नारायण राव के खिलाफ साजिश रचकर एक दिन उसे भी मौत की नींद सुला दिया और साथ ही साथ राजधानी पुणे में भयंकर अराजकता फैला दी। लूट खसोट और आगजनी का दौर चल पड़ा। इस अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए राघोबा ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में नाना फडणवीस साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए परिस्थिति पर काबू पाने में सफल रहे। पेशवा साम्राज्य के 12 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक संगठन आनंद फानन में खड़ा कर दिया गया, जिसे 12 भाई के नाम से जाना गया। नाना ने इसके जरिए सतारा में बैठे छत्रपति पर जबरदस्त दबाव बनाकर राघोबा का पेशवा पद पर आरूढ़ होना निरस्त कराया और साथ ही दिवंगत नारायण राव के बेटे सवई माधवराव को पेशवा घोषित करा दिया। बौखलाए हुए अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनवाने के लिए मराठा राज्य पर हमला बोल दिया, लेकिन नाना ने बड़ी वीरता से मुकाबला करते हुए उन्हें करारी शिकस्त दी अंग्रेजों को मजबूर होकर नाना से सुलह करना पड़ी, जिसे इतिहास में पुरंदर संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बार फिर इस संधि का उल्लंघन करते हुए अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने के लिए सर उठाया। इस बार नाना ने उन्हें बड़गांव में बुरी तरह पराजित करते हुए उनके सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिए।
11: नाना फड़नवीस हमको दो दो बार बुरी तरह शिकस्त दिया है, एंड यू नो अब वो फ्रेंच एम्बेसडर सेंट ल्यूबिन को पुनः इनवाइट किया है, हमारा खिलाफ फ्रेंच फौजों का मदद लेने को मांगता है। नो नो नो नो, हम ये टॉलरेट नहीं करने को सकता। राघोबा, व्हाई यू आर साइलेंट, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं हो?
5: क्या बोलूं सर, इस सारे फसाद की जड़ वही नाना फड़नवीस है। जब तक वो मौजूद है, आप लोगों के कदम मराठा राज पे जम पाना एकदम नामुमकिन है सर।
11: तो हम उस फसाद का जड़ को उखाड़ के फेंक देगा।
3: अंग्रेज नाना फड़नवीस को किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से हटाने की जी जान से कोशिश करते रहे, और उधर नाना फड़नवीस राजनीति की इस बिसात पर एक से बढ़कर एक अनूठी चाल चलते हुए अंग्रेजों की हर कोशिशों को नाकाम करते चले। अंग्रेजों को पूरी तरह अलग थलग करते हुए उन्हें एकदम लाचार बना देने की जबरदस्त योजना के तहत नाना ने निजाम, हैदर अली, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और जंजीरा के सिद्धि नवाब को अपने साथ मिला लिया। मुगल बादशाह की रजामंदी से एक भव्य और शक्तिशाली राज्य संघ कायम कर डाला। आखिरकार अंग्रेजों ने हार मानकर सालबाई की प्रसिद्ध संधि पर दस्तखत कर दिए।
11: हमने साल बाय का ट्रीटी पे दस्तखत कर दिया, बट नो, उसको मानने को नहीं सकता। हम मौका देखकर फिर कोई नया चाल चलेगा। As you know, मराठा एम्पायर का चार लोग बहुत मजबूत है। Understood? ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, नागपुर का भोसले एंड गुजरात का गायकवाड़, ब्लैडी, ये चारों पूना का पेशवा का वफादार लोग है। एक बार इनको अपना साइड में मिला लिया तो समझो पेशवा का पावर मिट्टी में मिल जाएगा।
3: अंग्रेजों का यह सोचना एक तरह से सही भी था। जिन चार मजबूत खंभों पर पेशवा साम्राज्य टिका हुआ था, उनमें से किसी एक का भी कमजोर होने का सीधा अर्थ था मराठा साम्राज्य का पराजय। अंग्रेजों ने किसी तरह माधोराव सिंधिया को अपने पक्ष में कर लिया। उसकी महत्वाकांक्षाओं को इस कदर जगाया कि वह मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय पर हमला कर बैठा। नाना से भी उसका मनमुटाव हुआ, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों से ही मिले एक के बाद एक धोखों ने उसकी आंखें खोल दी। इसी दौरान निजाम ने मराठों के खिलाफ हथियार उठा लिया। नाना के नेतृत्व में मराठा फौजों ने उसे करारी शिकस्त दी। सन 1795 में खरडा की लड़ाई के बाद शांति स्थापित हुई, लेकिन तभी पेशवा माधोराव ने आत्महत्या कर ली। एक बार फिर पेशवा की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया। साथ ही अंग्रेजों के बहकावे में आकर इंदौर का होलकर माधवजी सिंधिया से भिड़ गया। कभी अपनी एकता और संगठित शक्ति के लिए जाने जाने वाला मराठा मंडल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। गायकवाड़ और भोसले अंग्रेजों के इशारों पर मराठा मंडल से अलग हो चुके थे। नाना ने आने वाली विपत्ति का अंदाजा लगाते हुए माधवजी सिंधिया से कहा,
4: माधवजी
12: जी,
4: अंग्रेजों को इस साम्राज्य में पैर रखने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्हें पैर रखने की जगह मिल गई तो सारा देश खतरे में पड़ जाएगा।
12: मैं आपकी बात से सहमत हूं नाना साहेब, लेकिन क्या किया जाए। मराठा मंडल के जिन चार स्तंभों पर देवा की रक्षा का दारोमदार था, अंग्रेज उसमें सेंध लगा चुके हैं। दूसरों की क्या कहूं, खुद मैंने भी उनके बहकावे में आकर सम्राट शाह आलम पर हमला कर डाला। एक तरह से उन्हें बंदी बनाकर वारन हेस्टिंग्स के हौसले बढ़ा दिए। कल तक जो अंग्रेज मुगल सम्राट के आगे सिर झुकाते थे, उन्हें खिराज देते थे, आज सम्राट की खुलेआम अवहेलना करते हैं, उन्हें खिराज देना बंद कर चुके हैं।
4: मुगल सम्राट भारत की एकता का प्रतीक है। इन बुरी परिस्थितियों में हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। तुम मेरा संदेश लेकर जाओ, मुगल सम्राट को हर सहायता का आश्वासन दो। यही नहीं, बल्कि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर जोर डालकर सम्राट को पहले की तरह खिराज अदा करने पर मजबूर करो।
3: लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले ही हालात ने तेजी से करवट बदली। पूना में राघोजी का बेटा बाजीराव छलकपट से पेशवा की गद्दी पर आसीन हो गया। उधर माधवजी सिंधिया रहस्यमय परिस्थितियों में मौत का शिकार हुए। नाना फडणवीस को अंग्रेज पहले ही अपना जबरदस्त शत्रु मानते थे और इन बदले हुए हालात में उन्हें सुनहरी मौका मिल गया कि अपने रास्ते के इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर डाले। निकम्मा और घोर विलासी बाजीराव पेशवा तो पहले ही उनके हाथों कठपुतली बना हुआ था। अंग्रेजों के शह पाकर खुलेआम नाना को तरह तरह से अपमानित और प्रताड़ित करने पर आमादा हो गया। उसके आदेश पर नाना को कैद कर लिया गया। हर ओर से हताश और निराश नाना फडणवीस ने आखिर 13 मार्च सन 1800 में अपनी आंखें हमेशा

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: कला कल्लोलनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के बारे में, जिन्होंने संगीत को स्वर से शास्त्र और परंपरा से पाठशाला तक पहुंचाया। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं रत्नेश सोनी।
0: हमारे खास कार्यक्रम कला कल्लोलनी में जहां हम आपको भारतीय कला और संस्कृति की उन विलक्षण विभूतियों से रूबरू कराते हैं जिनकी साधना ने हमारी विरासत को समृद्ध किया।
1: आज का ये सफर हमें लेकर चलेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत की उस दुनिया में जहां स्वर केवल सुनाई नहीं देते बल्कि परंपरा, साधना और ज्ञान की एक पूरी कहानी कहते हैं।
0: और आज हम आपको परिचित करवाएंगे संगीत की एक ऐसी विलक्षण विभूति से जिनकी वजह से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनेक परंपराएं केवल मंचों तक सीमित नहीं रही बल्कि

0: शास्त्र, स्वर लिपि और व्यवस्थित शिक्षा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती नहीं।
1: एक ऐसे संगीत मनीषी जिन्होंने संगीत को केवल सुना नहीं, उसे समझा, खोजा, लिखा और व्यवस्थित किया। आज की हमारी कहानी है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की, उस महान संगीत शास्त्री की जिन्होंने भारतीय संगीत की विशाल और विविध परंपरा को एक व्यवस्थित स्वरूप देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।
0: तो आइए संगीत की इसी ज्ञान यात्रा पर हमारे साथ चलिए और जानिए उस साधक की कहानी जिसने स्वरों को केवल आवाज नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें शास्त्र और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर बना दिया।

0: आज हम किसी राग का नाम लेते हैं, उसके आरोह अवरोह की बात करते हैं, किसी बंदिश को स्वर लिपि में देखते हैं, किसी संगीत विद्यालय में व्यवस्थित पाठ्यक्रम के माध्यम से संगीत सीखते हैं, या 10 थाटों के आधार पर रागों की दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, तो इन सब के पीछे हमें एक ऐसे व्यक्ति की अथक साधना दिखाई देती है जिसने अपना जीवन संगीत को समझने, खोजने, लिखने, व्यवस्थित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने में लगा दिया।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को बंबई के वालकेश्वर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित और संस्कारवान था। उनके पिता स्वयं संगीत के प्रति अनुराग रखते थे और अपने बच्चों को संगीत सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बचपन में संगीत उनके जीवन में आया, लेकिन ये उस समय उनका पेशा नहीं था।
0: उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, कानून की पढ़ाई की और वकालत के क्षेत्र में भी गए। उनके सामने एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशेवर जीवन था, लेकिन मन का रास्ता अक्सर जीवन की तय राह से अलग होता है। भातखंडे जी के भीतर संगीत के लिए जो जिज्ञासा थी, वह धीरे धीरे इतनी गहरी होती गई कि कानून उनके जीवन का केंद्र नहीं रह गया।
1: सन 1884 में वे गायन उत्तेजक मंडली से जुड़े। ये जुड़ाव उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ उन्होंने केवल संगीत सुना नहीं, बल्कि संगीत की शिक्षा, प्रस्तुति और विभिन्न परंपराओं को निकट से समझा। उन्होंने ध्रुपद और ख्याल जैसी परंपराओं की बंदिशें सीखी और अलग अलग संगीतज्ञों के संपर्क में आए। यहीं से उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न आकार लेने लगा, आखिर भारतीय शास्त्रीय संगीत का इतना विशाल संसार व्यवस्थित रूप में लिखा क्यों नहीं गया? राग इतने हैं, घराने इतने हैं, बंदिशें इतनी हैं, गायकी की इतनी शैलियां हैं, तालों की इतनी विविधता है, लेकिन इन सब का व्यवस्थित दस्तावेज कहाँ है?
0: संगीत का अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप में पहुंचता था। गुरु गाते थे, शिष्य सुनता था। गुरु बजाते थे, शिष्य दोहराता था। गुरु सिखाते थे, शिष्य स्मृति में उसे संजोता था। ये परंपरा अपने आप में अत्यंत समृद्ध थी। उसमें केवल स्वर नहीं, बल्कि अनुभव, भाव, उच्चारण, नींद, कमक, लय और प्रस्तुति की सूक्ष्मता भी पीढ़ी दर पीढ़ी जाती थी। लेकिन इसकी एक सीमा भी थी। यदि किसी बंदिश को जानने वाला अंतिम व्यक्ति उसे आगे ना पहुंचा पाए, तो वह रचना उसके साथ ही समाप्त हो सकती थी। यदि किसी घराने की कोई विशिष्ट परंपरा अगली पीढ़ी तक ना पहुंच पाए, तो उसके साथ संगीत का एक पूरा अंश खो सकता था।
1: भातखंडे ने इसी खतरे को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने तय किया कि भारतीय संगीत को केवल सुना और याद नहीं किया जाना चाहिए, उसे लिखा भी जाना चाहिए। और यही विचार आगे चलकर भारतीय संगीत के इतिहास में एक बड़े परिवर्तन का कारण बना। भातखंडे जी ने भारत की यात्रा की। वे अलग अलग क्षेत्रों में गए, संगीतज्ञों से मिले, घरानों के कलाकारों से मिले, गायकों और वादकों से बंदिशें सुनी, संगीत के पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने केवल एक परंपरा को अंतिम सत्य मानकर काम नहीं किया, वे सुनते थे, प्रश्न करते थे, तुलना करते थे और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते थे। उनकी यात्राएं वास्तव में भारत की संगीत यात्राएं थी।
0: वैसे समय में यह काम कर रहे थे जब न रिकॉर्डिंग की आधुनिक सुविधा थी और न आज की तरह किसी रचना को तुरंत ऑडियो या वीडियो में सुरक्षित कर लेने की तकनीक। किसी कलाकार से कोई बंदिश सुनना और उसे उसी समय ध्यानपूर्वक लिख लेना, यह अपने आप में असाधारण धैर्य और स्मरण शक्ति का काम था। उन्होंने अनेक घरानों से प्राप्त पारंपरिक रचनाओं को संकलित किया और अपनी विकसित की हुई स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से उन्हें लिखित रूप दिया।
1: यहीं से भातखंडे जी के काम का दूसरा बड़ा पक्ष सामने आता है। उन्होंने संगीत के लिए एक ऐसी स्वरलिपि विकसित की जिसके माध्यम से राग, बंदिश और ताल को लिखित रूप में समझना संभव हुआ। आज किसी विद्यार्थी के सामने जब किसी बंदिश की स्वरलिपि रखी जाती है तो वो उसे देखकर अभ्यास कर सकता है। वो केवल ये नहीं कहता कि मेरे गुरु ने मुझे ये बंदिश सिखाई थी। अब उसके पास उसे देखने, पढ़ने और दोहराने का एक लिखित आधार भी होता है। ये परिवर्तन बहुत बड़ा था क्योंकि स्वर लिपि ने संगीत की स्मृति को कागज पर स्थान दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, स्वर लिपि संगीत का पूरा शरीर नहीं होती।
0: कागज पर स्वर लिखे जा सकते हैं, लेकिन आवाज की पूरी मिठास, स्वर का कंपन, मींड की गहराई, किसी कलाकार की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति या राग के भाव का पूरा अनुभव केवल लिखे हुए अक्षरों से नहीं मिल सकता। भातखंडे जी स्वयं संगीत की जीवंत परंपरा को जानते थे, इसलिए उनकी स्वरलिपि का महत्व इस बात में है कि उसने संगीत को संरक्षित करने और सिखाने का एक मजबूत आधार दिया।
1: इसी के साथ उन्होंने एक और बड़ी समस्या को संबोधित किया, रागों का वर्गीकरण। रागों का वर्गीकरण भारतीय संगीत परंपरा में रागों का संसार अत्यंत विशाल था। अलग अलग कालखंडों और परंपराओं में रागों को समझाने और वर्गीकृत करने के अलग अलग तरीके रहे।
0: भातखंडे जी ने जटिलता को सरल बनाने के लिए 10 थाटों की व्यवस्था प्रस्तुत की। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, आसावरी, भैरवी और तोड़ी, इन 10 थाटों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में रागों को समझने का एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया गया।
1: ध्यान देने वाली बात यह है कि हर राग को किसी एक थाट में पूरी तरह बांध देना हमेशा संभव नहीं है। राग केवल स्वरों का गणित नहीं है, राग का अपना चलन है, उसकी अपनी पकड़ है, उसका आरोह अवरोह है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसका समय है, उसका भाव है, उसकी विशिष्टता है। लेकिन अध्ययन के लिए एक व्यवस्थित आधार आवश्यक था।
0: भातखंडे जी का थाट प्रणाली का योगदान इसी अर्थ में महत्वपूर्ण है। उन्होंने संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों के सामने एक ऐसा नक्शा रख दिया जिसके सहारे वे रागों की विशाल दुनिया में प्रवेश कर सके। जैसे किसी विशाल शहर को समझने के लिए पहले उसके मुख्य मार्गों का नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही रागों की विशाल दुनिया को समझने के लिए थाट एक व्यवस्थित आधार बन गए।
1: लेकिन भातखंडे जी का काम केवल वर्गीकरण तक सीमित नहीं था, उन्होंने संगीत के सिद्धांत और व्यवहार के बीच पुल बनाने का काम किया। भारतीय संगीत के प्राचीन ग्रंथों में संगीत का विशाल शास्त्रीय साहित्य मौजूद था। दूसरी ओर अपने समय के संगीतज्ञ व्यवहार में संगीत की अलग अलग परंपराएं निभा रहे थे। भातखंडे जी ने दोनों संसारों को साथ रख कर देखा।
0: उन्होंने पुराने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने प्राचीन संगीत परंपराओं को समझने का प्रयास किया, साथ ही उन्होंने जीवित संगीतज्ञों से सीखा कि वास्तव में उनके समय में राग कैसे गाए जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि वे केवल पुस्तकालय के विद्वान नहीं बने और न केवल मंच के संगीतज्ञ,
1: वे शोधकर्ता भी थे, संगीत शास्त्री भी थे, शिक्षक भी थे और संगीत के दस्तावेजीकरण के अग्रदूत भी। उनका काम हमें ये बताता है कि परंपरा को बचाने का अर्थ उसे केवल अतीत में रख देना नहीं है, परंपरा को बचाने का अर्थ है उसे समझना, उसके मूल तत्वों को पहचानना और उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचने योग्य बनाना। भातखंडे जी ने यही किया।
0: उन्होंने अपने अध्ययन और यात्राओं के आधार पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए। उनकी प्रमुख कृतियों में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और क्रमिक पुस्तक मालिका का विशेष महत्व है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति 4 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि क्रमिक पुस्तक मालिका 6 भागों में विस्तृत हुई। इन ग्रंथों में रागों के सिद्धांत के साथ साथ अनेक रचनाओं को स्वरलिपि में दर्ज किया गया।
1: आज भी ये पुस्तकें हिंदुस्तानी संगीत के अध्ययन में महत्वपूर्ण संदर्भ मानी जाती हैं। यहाँ एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर गुरु अपने शिष्य को बंदिश सिखा रहा है और दूसरी ओर कोई व्यक्ति उसी परंपरा को ध्यान पूर्वक सुनकर कागज पर दर्ज कर रहा है। एक व्यक्ति संगीत को अगली पीढ़ी तक आवाज के माध्यम से पहुंचा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी संगीत की स्मृति को शब्द और स्वर के माध्यम से स्थायी बना रहा है। भातखंडे जी की भूमिका कुछ ऐसी ही थी।
0: उन्होंने कलाकारों के अनुभव को विद्वानों के अध्ययन से जोड़ा, उन्होंने परंपरा को पुस्तक से जोड़ा, उन्होंने मौखिक ज्ञान को लिखित ज्ञान से जोड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने संगीत को केवल कुछ परिवारों या घरानों तक सीमित रहने के बजाय व्यापक शिक्षा व्यवस्था में पहुंचाने की दिशा में काम किया।
1: यहीं से उनकी दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है, संगीत शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। उनके समय में शास्त्रीय संगीत सीखना मुख्यतः गुरु शिष्य परंपरा और संगीतज्ञ परिवारों तक सीमित था। ये व्यवस्था अपनी जगह अत्यंत प्रभावशाली थी, लेकिन समाज के हर व्यक्ति को उसमें प्रवेश मिलना आसान नहीं था। भातखंडे जी चाहते थे कि संगीत की शिक्षा व्यवस्थित संस्थानों में उपलब्ध हो। इसी विचार ने संगीत महाविद्यालयों और पाठ्यक्रमों की दिशा को प्रभावित किया।
0: लखनऊ में 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना हुई। इसमें राय उमानाथ बली और राय राजेश्वर बली जैसे सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और भातखंडे ने संगीत के पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक व्यवस्था को आकार देने में निर्णायक योगदान दिया। बाद में यही संस्था भातखंडे के नाम से जानी गई और आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो चुकी है।
1: लखनऊ का ये संस्थान केवल एक इमारत नहीं था, ये उस विचार का प्रतीक था कि संगीत को भी गंभीर शैक्षणिक अनुशासन के रूप में पढ़ाया जा सकता है, कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, संगीत अध्ययन का विषय है, संगीत शोध का विषय है, संगीत में व्याकरण है, संगीत में इतिहास है, संगीत में सौंदर्य शास्त्र है और संगीत में ज्ञान की एक पूरी परंपरा है।
0: भातखंडे जी ने इसी सोच को संस्थागत रूप दिया। उन्होंने ग्वालियर और बड़ौदा जैसे केंद्रों में भी व्यवस्थित संगीत शिक्षा के विकास में योगदान दिया। उनकी दृष्टि में विद्यार्थियों को केवल राग गाना नहीं चाहिए, उसे यह भी समझना चाहिए कि राग की संरचना क्या है, ताल क्या है, स्वर का संबंध क्या है, रचना की प्रकृति क्या है, परंपरा का इतिहास क्या है और सबसे महत्वपूर्ण जो वह गा रहा है उसके पीछे का ज्ञान क्या है। यही वह दृष्टि थी जिसने संगीत शिक्षा को एक नए आयाम तक पहुंचाया।
1: भातखंडे का एक और महत्वपूर्ण योगदान था संगीत के अलग अलग प्रवाहों के बीच संवाद। भारत में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों महान शास्त्रीय संगीत परंपराएं हैं। दोनों की अपनी भाषा है, अपनी संरचना है, अपनी परंपराएं हैं और अपना सौंदर्य है।
0: भातखंडे जी ने इन परंपराओं को एक दूसरे से समझने और संवाद करने की दिशा में भी प्रयास किए। उन्होंने संगीत सम्मेलनों की परंपरा को बढ़ावा दिया जिससे अलग अलग क्षेत्रों और संगीत प्रणालियों के कलाकारों को संवाद का अवसर मिला। ये विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण लगता है,
1: क्योंकि किसी कला को मजबूत बनाने का एक रास्ता ये नहीं है कि वो स्वयं को बंद कर ले, बल्कि ये है कि वो अपनी पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे अनुभवों से संवाद करे। भातखंडे की दृष्टि में शोध का अर्थ केवल पुराने ग्रंथ पढ़ना नहीं था, शोध का अर्थ था सुनना, प्रश्न करना, तुलना करना, यात्रा करना, कलाकारों से मिलना, परंपराओं को समझना और फिर निष्कर्ष निकालना। इस दृष्टि से वे अपने समय से आगे दिखाई देते हैं।
0: आज हम जिस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेजीकरण, भारत खंडे जी ने उस काम को एक सदी से भी पहले गंभीरता से किया। आज हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, डिजिटल आर्काइव है, क्लाउड स्टोरेज है।
1: लेकिन उस समय कागज, कलम और कान और उनका असाधारण धैर्य ही उनके सबसे बड़े साधन थे। उन्होंने संगीत को सुनकर लिखा, लिखकर व्यवस्थित किया, व्यवस्थित करके प्रकाशित किया और प्रकाशित करके विद्यार्थियों तक पहुंचाया। ये यात्रा भातखंडे जी की सबसे बड़ी विरासतों में से एक है।
0: उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सन 1900 में उनकी पत्नी का निधन हुआ और 1903 में उनकी बेटी भी नहीं रही। इन निजी आघातों के बाद उन्होंने अपने जीवन को लगभग पूरी तरह संगीत अध्ययन और संगीत सेवा के लिए समर्पित कर दिया। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े दुख मनुष्य को उस काम की ओर धकेल देते हैं जिसे वह भीतर से अपना मानता है।
1: अब वो समय आ गया था जब भातखंडे जी के लिए स्वयं के लिए संगीत से इतर कोई दृष्टि नजर नहीं आ रही थी। संगीत और सिर्फ संगीत जीवन का उद्देश्य बन गया और इसके बाद उनके जीवन का बड़ा हिस्सा यात्रा, अध्ययन, लेखन और संगीत के पुनर्गठन में बीता। उन्होंने अनेक बंदिशें एकत्र की, अलग अलग घरानों की परंपराओं को समझा, पुराने ग्रंथों का अध्ययन किया। तब एक नई चुनौती उनको महसूस हुई।
0: अलग अलग घरानों में एक ही राग के रूप, बंदिश और प्रस्तुति में भी अंतर मिल सकता था। भातखंडे जी को इन विविधताओं के बीच से संगीत का एक व्यवस्थित व्याकरण निकालना था। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, ये दशकों की साधना थी और यही कारण है कि उनके योगदान को केवल 10 थाट देने वाले व्यक्ति के रूप में देखना उनके काम को छोटा कर देना होगा।
1: थाट उनकी विरासत का केवल एक हिस्सा है, उनकी असली विरासत है एक विशाल, जीवंत और विविध संगीत परंपरा को व्यवस्थित ढंग से समझने का प्रयास। उनकी असली विरासत है स्वर लिपि, उनकी असली विरासत है रचनाओं का संकलन, उनकी असली विरासत है संगीत शिक्षा की संस्थागत व्यवस्था, उनकी असली विरासत है संगीत शास्त्र को आधुनिक अध्ययन की भाषा देना।
0: और उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह है कि उन्होंने हमें सिखाया कि किसी परंपरा से प्रेम करना केवल उसकी प्रशंसा करना नहीं है, उसे सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने के लिए अथक प्रयास भी जरूरी है।
1: हम अक्सर इतिहास को महान कलाकारों के नाम से याद करते हैं, तानसेन का नाम लेते हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को याद करते हैं, पंडित भीमसेन जोशी को याद करते हैं, पंडित रविशंकर को याद करते हैं, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व, उस्ताद अमीर खां, ऐसे असंख्य कलाकारों की आवाजें हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं।
0: लेकिन कलाकारों की उपलब्धियों के पीछे एक पूरी ज्ञान परंपरा भी होती है, उसे लिखने वाले लोग होते हैं, उसे संकलित करने वाले लोग होते हैं, उसे पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उसे संस्थागत रूप देने वाले लोग होते हैं।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी उसी परंपरा के महान व्यक्तित्व थे। वे मंच पर खड़े होकर अपने नाम की लोकप्रियता के पीछे नहीं भागे, उन्होंने उस संगीत की नींव मजबूत करने का काम किया जिसे आने वाली पीढ़ियां मंच पर प्रस्तुत करेंगी। इसीलिए उन्हें संगीत का वास्तुकार कहना असंगत नहीं होगा।
0: एक वास्तुकार स्वयं हमेशा उस भवन के भीतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भवन की संरचना उसके विचारों को व्यक्त करती है। भातखंडे जी भी कुछ ऐसे ही थे।
1: आज यदि संगीत का विद्यार्थी रागों को एक व्यवस्थित प्रणाली में पढ़ता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि विद्यार्थी बंदिश को स्वर लिपि में पढ़कर अभ्यास करता है तो उसमें भातखंडे की छाप है। यदि संगीत के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यवहार दोनों साथ पढ़ाए जाते हैं तो उसमें भातखंडे की दृष्टि दिखाई देती है।
0: यदि संगीत के पुराने ज्ञान को पुस्तकों में सुरक्षित देखकर हम आज उसका अध्ययन कर पा रहे हैं तो उसमें भातखंडे की तपस्या का अंश है, और शायद इसी कारण उनके योगदान को समझना आज भी जरूरी है। क्योंकि हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं उसमें सूचना को सुरक्षित करना पहले से आसान है, लेकिन ज्ञान को सही रूप में सुरक्षित करना अभी भी उतना ही कठिन है। एक वीडियो बना लेना दस्तावेजीकरण नहीं है, एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना भी पर्याप्त नहीं है।
1: दस्तावेजीकरण का अर्थ है संदर्भ को समझना, कलाकार को समझना, परंपरा को समझना, उसके स्रोत को दर्ज करना, उसकी विविधताओं को सुरक्षित रखना और उसे ऐसी व्यवस्था में रखना कि भविष्य का विद्यार्थी उसे समझ सके। भातखंडे जी का काम हमें इस गंभीर दस्तावेजीकरण की प्रेरणा देता है।
0: अगर आप संगीत के विद्यार्थी नहीं हैं, सिर्फ शौकिया तौर पर भी जब आप भातखंडे जी की लिखी संगीत की किताबें पढ़ते हैं तो आप संगीत को समझने में मुश्किलों का सामना नहीं करते। बस यही समझ आती है भातखंडे जी की अथक लगन और मेहनत।
1: क्या केवल ये कह देना पर्याप्त है कि हमारी संस्कृति महान है? नहीं, महान संस्कृति को महान बनाए रखने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने यही किया।
0: उनकी कहानी हमें एक और बात सिखाती है, कला केवल कलाकार की नहीं होती, कला के पीछे समाज होता है। गुरु होते हैं, शिष्य होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, और वे लोग भी होते हैं जो चुपचाप अपना पूरा जीवन इस बात में लगा देते हैं कि कला का ज्ञान नष्ट ना हो। भातखंडे जी ऐसे ही व्यक्ति थे।
1: उनका जीवन हमें ये बताता है कि किसी विरासत को बचाने के लिए केवल भावुक होना पर्याप्त नहीं, उसके लिए अनुशासन चाहिए, अध्ययन चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और सबसे बढ़कर धैर्य चाहिए।
0: यही कारण है कि उनका नाम भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाई देता है जहां परंपरा ने आधुनिक शैक्षणिक संरचना से संवाद शुरू किया। हमें उस विचार को भी याद करना चाहिए जो उनके जीवन के केंद्र में था, ज्ञान को सुरक्षित करना, परंपरा को समझना और उसे सबके लिए उपलब्ध कराना। क्योंकि संगीत केवल सुनने की चीज नहीं है, संगीत एक ज्ञान परंपरा है, संगीत स्मृति है, संगीत इतिहास है, संगीत अनुभव है, संगीत साधना है। और जब कोई व्यक्ति इस पूरी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यवस्थित करके छोड़ जाता है तो वह केवल अपने समय की सेवा नहीं करता, वह भविष्य की सेवा करता है।
1: पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने भविष्य की सेवा की। एक वकील से संगीत शास्त्री बनने की उनकी यात्रा केवल पेशा बदलने की कहानी नहीं है, ये उस आंतरिक पुकार की कहानी है जिसे उन्होंने पहचाना।
0: इसलिए जब अगली बार किसी राग की चर्चा हो, जब कोई विद्यार्थी सारे गामा लिखकर किसी बंदिश को सीखने का प्रयास करे, कोई बच्चा छोटा ख्याल गुनगुनाए या कोई संगीतज्ञ बड़ी तान लगाए, तब मन ही मन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को प्रणाम जरूर करिएगा।

0: इसी विचार के साथ कला कल्लोलिनी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना है अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक है मनीषा चतुर्वेदी, और मैं हूँ आपके साथ आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी,
0: और मैं हूँ वर्षा सिंह। लेते हैं इजाजत, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: दार्जिलिंग और अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने पर स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। इधर मुर्शिदाबाद के अकाल पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए अखंडानंद जी की अथक कोशिश का समाचार पाकर स्वामी जी ने बड़े हर्ष पूर्वक अपने शिष्य स्वामी नित्यानंद व ब्रह्मचारी सुरेश्वरानंद जी को उनकी सहायता के लिए भेज दिया। स्वामी जी अल्मोड़ा से प्रोत्साहन देकर पत्र लिखने लगे, यहाँ तक कि वे खुद वहाँ जाने के लिए अधीर उठे, परंतु चिकित्सक गण तथा उनके शिष्यों के निषेध के कारण वे वहाँ न जा सके।
1: इसी समय एक घटना घटी। मुर्शिदाबाद में राहत कार्य के लिए धन की कमी हो गई। कलकत्ते की महाबोधि सोसाइटी ने उस कार्य के लिए किंचित धन 150 रुपए दिया, पर बाद में उन लोगों ने दावा किया कि ये कार्य सोसाइटी के नाम पर परिचालित हो। इस विषय में दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद हुआ और स्वामी जी को इसकी सूचना दी गई। तब इसके समाधान के रूप में स्वामी जी ने लिख भेजा,
2: हुजूर लोगों के नाम की ज्वाला में क्या गरीब जन सूख कर मरते रहेंगे। सारा नाम महाबोधि लेना चाहती है तो लेने दो, गरीबों का उपकार होने दो। कार्य भली भांति चल रहा है, उत्तम बात है।
0: ऐसे आखिरकार महाबोधि के नाम पर उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी रामकृष्णानंद तथा दक्षिण भारत के कुछ भक्तों ने पर्याप्त धन एकत्र करके भेज दिया। अन्य स्थानों से भी पैसे आ गए, अतः रामकृष्ण मिशन के नाम से ही कार्य परिचालित हुआ।
1: कलकत्ता रामकृष्ण मिशन का कार्य भली भांति चल रहा था। स्वामी रामकृष्णानंद जी भी मद्रास में प्रचार कार्य में काफी सफलता प्राप्त कर रहे थे। स्वामी अभेदानंद जी और शारदानंद जी का इंग्लैंड और अमेरिका में वेदांत प्रचार का कार्य भली भांति चल रहा था। ये सब समाचार पाकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर से नवीन उत्साह के साथ कार्यारंभ करने के लिए व्यग्र हो उठे।
0: क्रमशः उनका अल्मोड़ा से विदा होने का दिन निकट आ पहुंचा। उनकी विदाई का समय आसन्न जानकर स्थानीय नागरिकों ने उनका व्याख्यान सुनने का आग्रह किया। इधर अल्मोड़ा में रहने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इंग्लिश क्लब में उन्हें व्याख्यान देने का अनुरोध किया, परंतु छोटे से क्लब भवन में 100 से भी अधिक श्रोताओं के लिए स्थान बना पाना असंभव जानकर ऐसा ठीक हुआ कि सामान्य जनता के लिए स्थानीय जिला स्कूल के प्रांगण में एक हिंदी तथा दो अंग्रेजी में भाषण हो और क्लब में एक अलग व्याख्यान अंग्रेजी भाषा में हो।
1: हिंदी का व्याख्यान सुनने के लिए नगर के अनेक गणमान्य और सुशिक्षित लोग उपस्थित हुए थे। स्वामी जी को हिंदी में भाषण देने का अभ्यास नहीं था और ऐसी शंका भी उठी थी कि सामान्यतः वे जिन गंभीर विषयों पर आवेगपूर्ण पर मर्म स्पर्शी व्याख्यान दिया करते थे, हिंदी भाषा के माध्यम से भी क्या ऐसा करना संभव हो सकेगा। परंतु स्वामी जी ने मंथर गति से व्याख्यान देना आरंभ किया और शीघ्र ही विषय के गुरुत्व के आकर्षण से भाषा के अक्षमता के ऊपर उठ गए और अपनी सुललित ओजस्विनी शैली में सहज ही बोलते गए।
0: ये व्याख्यान 27 जुलाई को हुआ और विषय था वैदिक उपदेश, तात्विक और व्यवहारिक। जिन लोगों के मन में ये धारणा थी कि स्वामी जी शायद इस नवीन परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सकेंगे, उन्होंने भी उनका ये प्रांजल तथा धारा प्रवाह भाषण सुनकर ये स्वीकार किया कि शक्तिमान पुरुष असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों के मन में संदेह था कि हिंदी भाषा गंभीर विषयों की व्याख्या करने के लिए उपयोगी नहीं है, उनका संदेह भी दूर हुआ। इतना ही नहीं, किसी किसी ने तो ऐसा भी कहा था, उन्होंने अपने व्याख्यान के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया है कि हिंदी भाषा में भी ऐसी शक्ति है जिनके आधार पर इस भाषा की और उन्नति करके उसे ओजपूर्ण व्याख्यान देने के उपयुक्त बनाया जा सकता है।
1: 28 जुलाई को इंग्लिश क्लब में होने वाले व्याख्यान में वहां के समस्त अंग्रेज उपस्थित थे। गोरखा रेजिमेंट के प्रमुख कर्नल पुली ने सभापति का आसन अलंकृत किया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर हैमिल्टन, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर क्रेसी, उनकी पत्नी, कर्नल हैरिसन की पत्नी श्री और श्रीमती हिर्शा, श्री और श्रीमती लार्किन, श्री और श्रीमती मैकफर्सन, मिस्टर स्प्राई, लाला बद्री शाह, चिरंजी लाल शाह, ज्वाला दत्त जोशी तथा स्वामी जी के अन्य अनेक मित्र एवं अल्मोड़ा के प्रमुख नागरिक भी वहां पर उपस्थित थे।
0: इस व्याख्यान के प्रारंभ में स्वामी जी ने बताया कि किस प्रकार विभिन्न जनजातियों में अपने अपने कबीले के देवता की उपासना का प्रचलन हुआ उन देवताओं की पूजा से आरंभ कर वे लोग कैसे वेदों की उपासना तक जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वेदों के रूप और शिक्षाओं का संक्षिप्त परिचय दिया और फिर वे आत्म तत्व पर विचार व्यक्त करने लगे। फिर उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पाश्चात्य प्रणाली किस प्रकार ब्रह्म जगत से जीवन के समस्त महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान ढूंढती है, जबकि प्राच्य के लोग ब्रह्म जगत में अपनी समस्याओं का समाधान न पाकर अंतर जगत में उनकी खोज करते हैं।
1: उन्होंने कहा कि हम ही यानी भारत ही इस अंतर जगत की खोज प्रणाली की आविष्कारक है। यही इस जाति की विशेष संपत्ति है और एकमात्र इसी प्रणाली की सहायता से धर्म और आध्यात्मिकता का हमने आविष्कार कर उसे समग्र जगत को सौंप दिया है। और भी अग्रसर होकर स्वामी जी आत्मा के साथ परमात्मा का संबंध और स्वरूपतः दोनों का एकत्व समझाने लगे। कुमारी हेनरिएटा मूलर उक्त सभा में उपस्थित थीं। उन्होंने बताया था,
3: तब थोड़ी देर के लिए ऐसा बोध हुआ मानो भाषणकर्ता उनकी वाणी श्रोता खान एवं उनमें व्याप भाव राशि सब मिलकर एक हो गए हों। मानो मैं तुम वह यह आदि का भेद लुप्त हो गया था। जो विभिन्न लोग वहां एकत्र हुए थे मानो उन कुछ क्षणों के दौरान आचार्य देव के शरीर से निकलने वाली आत्मज्योति के प्रभाव में डूबकर मंत्र मुक्त बैठ रहे। उस समय क्षण भर के लिए मानो समस्त भेद फर्दे तथा व्यक्तिगत वैशिष्ट लुप्त हो गया। नाम रूप लुप्त हो गया, एकमात्र चेतना सत्य का ही अस्तित्व रह गया जिसमें वक्ता वाक्य श्रोता मिलकर एक हो गए।
0: तीसरा व्याख्यान 31 जुलाई को हुआ जिसमें लगभग 400 शिक्षित लोग उपस्थित थे और सभी लोग स्वामी जी के भाषण पर मुग्ध हो गए। दार्जिलिंग तथा अल्मोड़ा में वहां के जलवायु के स्वाभाविक गुण, मित्रों की देखभाल और विश्राम के फलस्वरूप स्वामी जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। संभव है और भी विश्राम करने से उसका कुछ स्थायी फल होता, परंतु जिन स्वामी जी ने लोक कल्याण को अपना प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य बना लिया था उनके लिए लंबे समय तक चुप बैठना संभव न था। अल्मोड़ा से नीचे उतरने के काफी काल पूर्व ही उन्होंने 14 जून के पत्र में स्वामी अखंडानंद को लिखा था,
2: मैं शीघ्र ही पहाड़ से समतल पर उतर रहा हूं। मैं वीर हूं, रण क्षेत्र में ही मरूंगा। यहां पर्दा नशीन औरत के समान बैठे रहना क्या मुझे शोभा देता है?
1: वैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना तो कभी भी उनके लिए संभव नहीं था। हमने देखा है कि इस काल में भी वे नव प्रतिष्ठित केंद्रों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखते थे। इन दिनों कौन कौन से कार्य चल रहे थे इसका आभास देते हुए उन्होंने 23 जुलाई को मिस नोबल भगिनी निवेदिता को सूचित किया था,
2: कार्य प्रारंभ हो गया है। इस समय अकाल निवारण ही हमारे लिए प्रधान कर्तव्य है। कई केंद्र स्थापित हो गए हैं और अकाल सेवा प्रचार तथा सामान्य शिक्षा का काम चल रहा है। कार्य यद्यपि अभी तक छोटे स्वरूप में ही चल रहा है, तथापि जिन युवकों को शिक्षा दी जा रही है उन्हें आवश्यकतानुसार काम में लगाया जा रहा है। इस समय मद्रास तथा कलकत्ता ही हमारे कार्य क्षेत्र हैं। एक जन को कोलंबो भी भेजा गया है।
0: उसी पत्र के अंत में उन्होंने लिखा था,
2: कुछ दिनों बाद ही मैं नीचे मैदानों की ओर जा रहा हूँ और वहां से इसी पर्वत के पश्चिमी खंड की ओर जाऊंगा। जब मैदानी इलाकों में थोड़ी ठंडक पड़ने लगेगी तब मैं देश भर में व्याख्यान देते हुए दौरा करूंगा, देखूंगा कि कितना काम किया जा सकता है।
0: स्वयं प्रचार कार्य में व्यस्त रहकर भी वे चाहते थे कि साथ में संगठन का कार्य भी चलता रहे, इसलिए 30 जुलाई को अल्मोड़ा से उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी को लिखा था कि वे अनाथ बालकों की सेवा में लग जाएं। इसी पत्र में उन्होंने यह भी सूचित किया था कि आगामी सोमवार 2 अगस्त को वे अल्मोड़ा से चल पड़ेंगे।
2: यहाँ पर साहबों के बीच मैंने अंग्रेजी में एक भाषण तथा स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी में मेरा ये प्रथम व्याख्यान था परंतु सबको बड़ा अच्छा लगा। आगामी शनिवार 31 जुलाई को स्थानीय लोगों के लिए एक और भाषण अंग्रेजी में होगा। यहाँ पर एक बड़ी सभा स्थापित की गई है। भविष्य में कितना कार्य होता है ये देखना है। सभा का उद्देश्य है विद्या तथा धर्म की शिक्षा देना। सोमवार को बरेली के लिए प्रस्थान करना है, उसके बाद सहारनपुर, फिर अंबाला, वहां से संभवतः कैप्टन सेवियर के साथ मसूरी जाऊंगा। तदुपरांत थोड़ी ठंड पड़ते ही वापस लौटकर राजपूताना आदि स्थानों को जाना है।
1: देवलधारा और अल्मोड़ा से विदा लेने के पूर्व और भी दो एक घटनाओं का वर्णन करना यहाँ आवश्यक है। सर्वप्रथम हम स्वामी जी द्वारा स्वयं कथित एक प्रेत अथवा दैवी घटना का विवरण देते हैं। इसका स्थान काल ज्ञात न होने पर भी ये अनुमान है कि ये घटना देवलधारा के ही निकट कहीं घटित हुई है। घटना यूं है, स्वामी जी एक बार हिमालय में भ्रमण करते हुए रात बिताने को एक गांव में ठहरे हुए थे। संध्या के बाद खूब ढोल बजने की आवाज सुनकर गृह स्वामी से पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गांव के किसी आदमी पर देवता चढ़ा है।
0: कौतूहलवश वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुल्हाड़ी को आग में तपाकर लाल करने के बाद उसे उस व्यक्ति के अंगों से लगा रहे हैं तथा उसके बालों से भी छुआ रहे हैं, परंतु उसका कोई अंग या बाल जलता न था और न ही चेहरे से किसी पीड़ा का भाव व्यक्त होता था। उसी समय गांव का मुखिया स्वामी जी के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप कृपया इसका भूत उतार दीजिए। सबके अनुरोध पर स्वामी जी को उस प्रेताविष्ट व्यक्ति के पास जाना पड़ा। जाते ही उनके मन में उस कुल्हाड़ी की जांच करने की इच्छा हुई। कुल्हाड़ी उस समय तक काली हो चुकी थी, तो भी छूते ही उनका हाथ झुलस गया और असहाय पीड़ा होने लगी। इस पर उनकी तर्क युक्ति सब लुप्त हो गई। उस पीड़ा के साथ ही उन्होंने अपना हाथ उस व्यक्ति के सिर पर रखकर थोड़ी देर जाप किया।
1: आश्चर्य की बात है कि इसके 10-12 मिनट के भीतर ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों का मन स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो गया। परंतु स्वामी जी स्वयं इस घटना की मीमांसा नहीं कर सके। वे अपने गृह स्वामी के साथ वापस लौटे और रात के 12 बजे बिस्तर पर लेट गए, परंतु हाथ की जलन और इस अद्भुत घटना की कोई व्याख्या न सोच पाने के कारण उन्हें उस रात नींद नहीं आई।
0: अल्मोड़ा की एक अन्य प्रमुख घटना थी सुप्रसिद्ध देशभक्त नेता श्रीयुत अश्विनी कुमार दत्त के साथ उनकी भेंट। काफी काल पूर्व एक बार श्री रामकृष्ण के आदेश पर अश्विनी बाबू श्री रामचंद्र दत्त के घर पर ठाकुर के समक्ष ही नरेंद्र नाथ से बातें की थी, परंतु उस दिन नरेंद्र के सिर में दर्द होने के कारण ज्यादा बातचीत न हो सकी थी। इस पर अश्विनी बाबू ने कहा था, रहने दीजिए, फिर किसी दिन बात होगी। श्री ठाकुर की इच्छा थी कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध जुड़े और वो पूरी हुई 12 वर्ष बाद 1897 ईस्वी के मई या जून अल्मोड़ा में। अश्विनी बाबू ने लिखा है,
4: श्री राम कृष्ण की इच्छा पूरी तो होनी थी, इसलिए 12 साल बाद वो पूरी हुई। स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वो दिन कैसे आनंद से कटे थे, कभी उनके यहां, कभी मेरे यहां, और कभी निर्जन पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद फिर उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई।
0: अश्विनी बाबू उन दिनों अल्मोड़ा में ही ठहरे हुए थे। उन्होंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि स्वामी जी भी वही निवास कर रहे हैं, परंतु उनका पता किसी को ज्ञात न था। अश्विनी बाबू के रसोइये ने एक दिन बताया कि नगर में एक अद्भुत साधु आए हुए हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं और घुड़सवारी करते हैं, अतः वे उनकी खोज में बाहर निकल पड़े। वे मकान के पास पहुंचकर भी समझ नहीं सके कि स्वामी जी ठीक किस मकान में रहते हैं, और लोगों से पूछने पर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में बंगाली साधु के बारे में पूछने पर एक राहगीर ने बताया, तो आप घुड़सवार साधु के बारे में पूछ रहे हैं, वो देखिए वे घोड़े पर चले आ रहे हैं, उधर के मकान में रहते हैं। अश्विनी बाबू ने दूर से ही देखा कि गैरिकधारी सन्यासी के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक अंग्रेज द्वार खोलकर बाहर आए और घोड़े की नकेल पकड़कर भीतर चले गए। इसके बाद स्वामी जी घोड़े की पीठ पर से उतरे।
1: थोड़ी देर बाद अश्विनी बाबू ने वहां पहुंचकर एक युवा साधु से पूछा,
4: नरेंद्र दत्त है क्या, उनसे मिलना है।
5: नहीं, यहाँ नरेंद्रनाथ नाम का कोई नहीं रहता।
6: हाँ हाँ आइए, मैं यहाँ हूँ।
4: नमस्कार, आपको शायद याद नहीं, श्री राम कृष्ण देव के आदेश पर मैं आपसे कलकत्ते में मिलने गया था, पर बात नहीं हो पाई थी आपसे।
6: आओ आओ आओ, पहले गले तो मिलो, मुझे सब याद है।
2: उस दिन मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था, इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाया था।
4: स्वामी जी, इतनी सालों पुरानी बात।
2: ये क्या, आपके लिए मैं स्वामी जी कब से हो गया? मैं तो अब भी वही नरेन हूँ। ठाकुर मुझे जिस नाम से पुकारते थे वही मेरे लिए परम संपदा है, आप भी मुझे उसी नाम से पुकारिए।
0: उस मुलाकात के बाद दोनों में कई विषयों पर बातचीत हुई। धर्म, वेदांत, राजनीति, समाज, सभी विषयों पर दोनों ने चर्चा की।
4: आपने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके लाखों लोगों के प्राणों में आध्यात्मिक चेतना जगाई है। क्या आप मुझे बताएंगे कि भारत की मुक्ति कैसे होगी?
2: आपने ठाकुर से जो कुछ सुना है उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है। धर्म ही हमारे जीवन का सार सर्वस्व है, और सभी प्रकार के सुधारों को साधारण जन तक पहुंचाने के लिए उन्हें धर्म के माध्यम से ही लाना होगा। इसके विपरीत कुछ करने का प्रयास मानो गंगा को गोमुख की दिशा में पुनः धक्का देकर एक नवीन मार्ग से प्रवाहित करने के समान अव्यवहारिक होगा।
4: परंतु दूसरे राजनैतिक दल जो कर रहे हैं, क्या उसमें आपकी आस्था नहीं है?
2: नहीं, मेरी आस्था नहीं है, पर हाँ, बिल्कुल नहीं से थोड़ा अच्छा है। फिर सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए उसे हर तरफ से धक्के देना अच्छा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने अब तक आम जनता के लिए क्या किया है? आप लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि मात्र दो चार प्रस्ताव पास कर देने से ही स्वतंत्रता मिल जाएगी? नहीं, मेरी इसमें आस्था नहीं है। पहले जनसाधारण को जगाना होगा, उन्हें पेट भर भोजन मिले तो वे स्वयं ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ लेंगे। यदि राजनीतिक दल उनके लिए कुछ करते हैं तो उनको मेरी सहानुभूति प्राप्त होगी। इसके साथ ही अंग्रेजों में जो गुण हैं उन्हें भी हमें अपनाना होगा।
4: धर्म से आपका तात्पर्य क्या किसी मत विशेष से है?
2: ठाकुर ने क्या किसी सांप्रदायिक मतवाद का प्रचार किया था? बल्कि उन्होंने वेदांत को ही सर्वांगीण धर्म बताया है, इसीलिए मैं भी उसी का प्रचार करता हूं। परंतु मेरी दृष्टि में धर्म की सार बात है शक्ति। ऐसा धर्म जो हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वो चाहे उपनिषद का हो या गीता का अथवा भगवत का, मैं उसे धर्म ही नहीं मानता। शक्ति ही धर्म है, तथा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं है।
4: अच्छा बताइए, मेरे लिए क्या करना उचित रहेगा?
2: सुना है कि आप शैक्षणिक कार्यों में लगे हुए हैं, वही सच्चा कार्य है। आपके भीतर एक महान शक्ति कार्य कर रही है, और जो ज्ञान दान हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कार्य है। परंतु ध्यान रखिएगा कि जन साधारण में मनुष्य निर्माण करने वाली शिक्षा का ही प्रसार हो, उसके बाद चाहिए चरित्र निर्माण। वज्र के समान दृढ़ बना डालिए, बंगाली युवकों की अस्थियों से ही वो वज्र तैयार होगा जो भारतीय दास्तां की बेड़ियों को चूर कर डालेगा। क्या आप मुझे कुछ योग्य लड़के दे सकेंगे? तभी तो मैं पृथ्वी को अच्छी तरह हिलाकर जा सकूंगा।
0: उन्हें वज्र के समान युवा शक्ति की तलाश थी, तभी तो वे बोले।
2: और जहां कहीं भी राधा कृष्ण के कीर्तन सुनने को मिले, वहां दाएं बाएं अच्छा चाबुक चलाइए। पूरा राष्ट्र सड़कर ध्वंस हुआ जा रहा है, जिनमें जरा सा भी आत्मसंयम नहीं, ऐसे लोग इन सब गानों में मतवाले हो रहे हैं। थोड़ी सी भी अपवित्रता रहते इन सब में निहित उच्च आदर्शों की धारणा नहीं की जा सकती। ये क्या बच्चों का खेल है? हम लोग काफी काल से नाचते कूदते रहे हैं, अब इसे थोड़ा विराम देने में हर्ज नहीं। इसी बीच देश थोड़ा शक्तिशाली बन जाए, और फिर सर्वहारा तथा उसी तरह के लोगों के पास जाकर कहिए, तुम ही लोग तो राष्ट्र के प्राण हो, तुम्हारे भीतर ऐसी असीम शक्ति विद्यमान है जो दुनिया को उलट सकती है। उठो, बंधन को तोड़ फेंको, और सारा संसार तुम्हें देखकर विस्मित रह जाएगा। उनके बीच जाकर स्कूल खोलिए और उनके गले में जनेऊ डाल दीजिए।
4: नरेन, आपके जलपान का समय बीत रहा है, मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये सच है कि जब मद्रास के ब्राह्मणों ने वेद प्रचार का अनाधिकारी बताया था, तब आपने कहा, तो हे मद्रास के ब्राह्मणों, आप लोग भी अधम हैं?
2: हाँ।
4: आपके समान एक धर्म प्रचारक तथा संयमी व्यक्ति द्वारा ऐसा कहा जाना क्या उचित था?
2: ऐसा कौन कहता है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने उचित किया था। उन लोगों की अभद्रता देखकर मैं अपना आपा खो बैठा था, इसलिए ऐसी बातें निकल पड़ी। उसके बाद मैं भला कर ही कह सकता था, परंतु अपने पक्ष का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं।
4: नरेंद्र एक बार गले लग जाओ भाई, आज आपका मान मेरी दृष्टि में सर्वोच्च हो गया। आज मैं समझ गया कि क्यों आप विश्व विजय हुए हैं और क्यों ठाकुर आपको इतना स्नेह करते थे।
0: अल्मोड़ा से चलकर स्वामी जी भीमताल आए। वहां एक दो दिन रुककर वे 9 अगस्त को बरेली पहुंचे। वहां वे श्री प्रियनाथ बाबू के बंगले पर रुके थे। वहां वे अधिकतर युवकों और छात्र समुदाय के साथ संपर्क स्थापन करते रहते थे।
1: शरीर अस्वस्थ रहने के कारण स्वामी जी को भय था कि वे इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं, अतः उन्हें अपने अपूर्ण कार्यों को पूरा करने की जल्दी हो रही थी।
0: बरेली का कार्य समाप्त करने के बाद 12 अगस्त को रात 11 बजे के ट्रेन से वे अंबाला गए। वहां उनके एक सप्ताह निवास के दौरान श्री तथा श्रीमती सेवियर शिमला से आकर उनसे मिले। यहां पर उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा रहने के कारण सभी लोग खुश थे और स्वामी जी भी नगर के संभ्रांत लोगों के साथ आनंद पूर्वक विविध विषयों पर चर्चा किया करते थे। आगंतुकों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, आर्य समाजी आदि विविध समुदायों के लोग होते और बातचीत भी अध्यात्म तत्व, सामाजिक समस्या, प्राच्य एवं पाश्चात्य की सांस्कृतिक तुलना, स्वदेश की सच्ची उन्नति के उपाय आदि विभिन्न विषयों पर होती थी।
1: आर्य समाजी लोगों के साथ चर्चा के दौरान शास्त्रों के विषय में उनके समक्ष अनेक कूट तर्क उपस्थित किए जाते और स्वामी जी उनके युक्ति युक्त उत्तर देकर उन लोगों को शांत कर देते। ऐसी बैठकों और चर्चाओं में उन्हें स्वयं भी इतना उत्साह मिलता कि 17 अगस्त को दोपहर में भोजन के बाद पेट में दर्द होने के बावजूद संध्या के बाद उन्होंने एक छोटी सी सभा में उपस्थित होकर वहां 1.5 घंटे तक हृदयग्राही भाषण दिए थे। तदुपरांत रात को वे निराहार ही रहे। 16 अगस्त को लाहौर कॉलेज के एक प्राध्यापक ने एक फोनोग्राफ लाकर स्वामी जी से उसमें व्याख्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने वैसा ही किया।
0: इस व्यस्तता के बीच भी 19 अगस्त को सुबह वे हिंदू मुसलमान सौहार्द के प्रतीक हिंदू मोमेडन स्कूल का परिदर्शन करने गए थे। फिर भोजन उपरांत उन्होंने श्यामाचरण मुखोपाध्याय आदि सज्जनों तथा संध्या के बाद आर्य समाजी वकील द्वारकानाथ के साथ वार्तालाप किया। कुल मिलाकर उनके अंबाला के दिन बड़े ही आनंदमय तथा व्यस्तता से परिपूर्ण थे। वहीं से अंतिम दिन 19 को उन्होंने स्वामी रामकृष्णानंद को लिखा था।
2: इस समय मैं धर्मशाला के पहाड़ पर जा रहा हूँ। निरंजन, दीनू, कृष्णलाल, लाटू तथा अच्युत अमृतसर में रहेंगे।
1: श्रीमती ओलीबुल की भारत आने की इच्छा को जानकर स्वामी जी ने उसी दिन उन्हें भी एक पत्र लिखा। जैसा कि कुमारी मैकलाउड के सम्मुख उन्होंने भारतीय जीवन का वास्तविक रेखांकन करते हुए उन्हें सावधान कर दिया था, तथापि आगमन के लिए सादर आमंत्रण भी भेजा था। यहाँ भी उन्होंने वही करते हुए लिखा,
2: सोच लीजिएगा कि आप लोग मानो अफ्रीका के आंतरिक प्रदेशों में जाने के लिए निकली हैं। उसके बाद यदि देव योग से कुछ उत्कृष्ट मिल जाए तो उसे आशा से अधिक उपलब्धि समझिएगा।
0: 20 अगस्त को सुबह उन्होंने सेवियर दंपत्ति के साथ धर्मशाला की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में अमृतसर में 4-5 घंटे ठहरकर उन्होंने टोडरमल नामक एक बैरिस्टर के यहाँ विश्राम किया। धर्मशाला में वे सेवियर दंपत्ति के साथ मात्र 7-8 दिन रहे। बाद में वहां से लौटकर उन्होंने अमृतसर में 2 दिन बिताए और 31 अगस्त को मेल ट्रेन से रावलपिंडी की यात्रा की। अमृतसर में 2 दिन निवास के दौरान उन्होंने सिखों के मंदिर देखे और मूल राज आदि प्रमुख आर्य समाजी नेताओं के साथ विविध विषयों पर चर्चा की। रावलपिंडी स्टेशन पर डॉक्टर भक्तराम के भाई बग्घी आदि लेकर उनका स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु रावलपिंडी में उनका रहना न हो सका। शारीरिक अस्वस्थता बढ़ जाने के कारण वे तत्काल ही सेवियर दंपत्ति के साथ तांगे में मरी के लिए रवाना हो गए। उनके अन्य संगी भी इक्के में सवार होकर यथासमय वहां पहुंचे और वे सभी लोग वकील हंसराज के मकान पर ठहरे। यहाँ के बंगाली निवासियों ने एक दिन उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया, जिसे स्वीकार करके स्वामी जी उन लोगों के घर गए और भजन एवं उपदेश सुनाकर सबको कृतार्थ किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।